मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी बीकानेर का ये धोला मारू चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 8 जून सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। प्रस्तुत है मंगल ध्वनि।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं प्रस्तुत हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के

0: जहित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ. एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है आज का विचार, साहस का दामन ना छोड़े शीर्षक पर। आलेख और वाचक स्वर हैं श्री प्रमोद कुमार शर्मा के।
2: मनुष्य साहस की प्रतिमूर्ति है। वो साहस के द्वारा विश्व विजेता बन सकता है और बना है। साहस की महिमा अपरंपार है। बिना साहस के मनुष्य मात्र मिट्टी का ढेला बनकर रह जाता है। हालांकि लोग उसकी तरफ करुणा, दया और कृपा भाव से देखते हैं, लेकिन ये करुणा, ये दया उसके लिए अभिशाप बन जाती है और वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसी अनेक कहानियां हैं जिनमें मनुष्य ने साहस के माध्यम से अपनी मंजिल को प्राप्त किया है। अमेरिकन कथाकार जैक लंदन की कहानी आग का नायक बर्फीली घाटियों में भूखा प्यासा रहकर भी अंततः

न केवल मृत्यु से बच जाता है बल्कि वो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। टॉलस्टॉय की एक कहानी में दो सैनिकों का शत्रु सेना अपहरण कर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और एक गहरे गड्ढे में कैद कर देती है। उनमें से एक तो हिम्मत हार जाता है जबकि दूसरा वहां से मुक्ति का उपाय सोचता खोजता हुआ न केवल फरार हो जाता है बल्कि अपने साहस के चलते तमाम तरह की गोलीबारी के बीच अपनी रशियन सेना के कैंप तक पहुंच जाता है। तात्पर्य ये है कि मनुष्य जीवन की ये गति है कि उसमें कठिनाइयां, विपदाएं और संकट आते ही रहते हैं, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारता वो एक दिन जाकर विजयी होता है। जो मनुष्य हिम्मत हार कर बीच मार्ग में ही बैठ जाता है वो कहीं का नहीं रहता, न घर का न घाट का, जबकि हिम्मत रखने वालों का दुनिया अनुसरण करती है और उसकी जय जयकार करती है। आज मनुष्य अपने साहस के बल बूते पर चलकर अंतरिक्ष के अंधकार को चीर कर चांद तक अपने कदम रख चुका है, ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियों को बांध चुका है, उन्हें काट चुका है। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने साहस के चलते हुए वो अपने लक्ष्य तक पहुंचा है। मनुष्य ने अनेक बाधाएं पार कर इस धरती को न केवल रहने योग्य बनाया बल्कि नदियों पर पुल बांधे, पहाड़ों को चीर कर आवागमन के रास्ते बनाए और असाध्य बीमारियों के इलाज खोजे। अगर उसमें साहस न होता तो वो अब तक कुछ भी नहीं कर पाता। मानव जगत को ईश्वर की ओर से गीता जी के रूप में अप्रतिम उपहार मिला है जिसमें भगवान अर्जुन को युद्ध के मैदान में ज्ञान देते हैं। जब अर्जुन युद्ध स्थल को और अपनी सेनाओं को आमने सामने देखकर हिम्मत हार जाता है तो भगवान उसे ये कहते हुए साहस का संचार करते हैं, क्लेब्य मा समागमः पार्थ, अर्थात हे पृथापुत्र इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और इतिहास गवाह है, अर्जुन ने न केवल अपनी दुर्बलता का त्याग किया बल्कि युद्ध के मैदान में शत्रु सेना का दमन करते हुए विजयश्री का वरण भी किया। तो फिर हम और आप युद्ध रूपी जीवन या जीवन रूपी युद्ध से पलायन क्यों करें।

साहस का दामन ना छोड़े शीर्षक पर आपने सुना आज का विचार, आलेख और वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा के। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान कार्यक्रम के आज के अंक में आप सुनेंगे बाल कांड के दोहा संख्या 136 से दोहा संख्या 138 की अंतिम चौपाई तक का पाठ। संगीतकार सतीश भाटिया।
1: एपिसोड 53 5 3।

विश्व मोहिनी के स्वयंवर में अपने को कपि के रूप में पाकर नारद मुनि के क्रोध की सीमा ना रही। वो उपहास के पात्र बन गए थे। ब्राह्मणों के वेश में वहां उपस्थित शिव के गणों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। नारद मुनि का आक्रोश श्री हरि के प्रति उमड़ा, जिन्होंने सुंदर रूप का वरदान मांगने पर उन्हें बंदर का समूह और भयंकर शरीर दे दिया। अतः मुनिवर ने उन्हें जी भरकर कोसा, कहा, जो शरीर धारण कर तुमने मुझे ठगा है तुम्हें वही शरीर मिलेगा, ये मेरा शाप है। तुमने मेरा रूप बंदर का सा बना दिया, अतः बंदरों की ही सहायता से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। प्रभु ने नारद जी का शाप शिरोधार्य किया और अपनी माया लीला वापस ले ली। नारद मुनि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़कर आक्रोश में शाप देने के लिए क्षमा मांगी। प्रभु ने उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए शिवजी का शतनाम जपने का परामर्श दिया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

शाम 6:40 पर आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी और खेल जगत कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि 10 बजे हमारे जयपुर केंद्र से। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम, विषय वंचितों को वरीयता। दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे ई शॉपिंग करते समय सावधानियां, गर्मी में खानपान का ध्यान, विश्व महासागर दिवस, समुद्री जीवन का परिचय, योग तकनीक, आसन और लाभ। कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ताकार जय श्री पारिक की वार्ता, विषय सौंदर्य के क्षेत्र में रोजगार। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान। लघु जानकारी के विषय रहेंगे राष्ट्र निर्माण और युवा, अनुच्छेद 249, लोकटक झील, जीडीपी। कार्यक्रम में आप सुनेंगे भुवनेश कुमार पुरोहित की वार्ता, विषय योग जागे रोग भागे।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे केंद्र सरकार का खेत बचाओ अभियान, खेत की गहरी जुताई करने के लिए टॉप 4 कृषि यंत्र, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पशुओं की मींगनी है उत्तम कार्बनिक खादें।

सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे सौरभ कार्यक्रम में राजस्थानी कहानी रीस रो रातो रंग शीर्षक पर कहानीकार डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। सुबह 10:00 हमारी इसी सभा में, दिन के 11:35 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। दिन के 12:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। और सुबह शाम 6:05 पर और रात्रि 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। बीजों का टीकाकरण, बीजोपचार विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा।
1: किसान भाया राम राम। आज बात करा बीजारे टीकाकरण रे बारे में, यानी कि बीजोपचार रे बारे में। बीज जो को है एक पौधे रे जीवन रो मुख्य आधार है, जो को एक संतान से दूसरे संतान तक जीवन वाहक संदेश पहुंचाने रो काम करे। पौधे रो जीवन चक्र जो को है बीज शुरू हुए बीज रे माथे खत्म हो जावे। इस वास्ते बीज रो स्वस्थ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर बीज रोग से ग्रसित हो जावे तो आने वाला पौधा भी अस्वस्थ होसी, कमजोर होसी, रोग ग्रस्त होसी और इसको किसान रे वास्ते नुकसानकारी भी रहसी। बीज माथे अगर रोगाणु या कीटाणु बहुत ज्यादा आक्रमण कर देवे तो

0: पोषक तत्व है वे भी कमजोर हो जावे और विश्व कई बार फसल भी नष्ट हो जावे। इस वास्ते जरूरी है कि बीजा ने आपा सुरक्षित रखा और बीजा ने पहले सु टीको लगा ला ताकि बीमारियां सु बचा सका। जी हाँ, टावरा रे टीको लग्या करे है ताकि आउन नाला भगत रे महीने बियाने बीमारियां नहीं आवे। बियाई बीजा रो जको टीको है वो बीजोपचार है। फसला में जको बीजोपचार है, पहले तो बात करा कि इमें काई काई शामिल है। बीजोपचार एक प्रक्रिया है जकर मैंने बीज ने बीज सु मिट्टी सु और कीटा सु जकी बीमारियां हो सके है बिसु बचावनो। और इरे वास्ते भौतिक रासायनिक कवकनाशी कीटनाशी और बायो एजेंट जको है इरे माध्यम सु बीज रो शोधन करीजे। इसु बीज री अंकुरण क्षमता रे माथे कोई असर कोनी पड़े पण बीमारियां जकी है बे पन्ना पने सु पहली खत्म हो जावे। अबे बात करा बीजोपचारी विधि रे बारे में। सबसे पहले बात करा भौतिक विधि। आ प्राचीन काल रे मैंने अनायास से शुरू हुई जी। सन 1617 रे मैंने गऊ सु भरियोडो एक जहाज हो और बीर मैंने कोई कारण सु खारो पानी जको समुद्र वो भरी जियो। अबे इता गऊ नाखी जे किया ओ सोचर बे खारे पानी भिजुड़ा गऊ हां बाने सुखा लिया और पाछा नए बीज रूप में भी बुआई कर दी। विशु कही है के बदबूदार जको कंडवा रोग पौधा रे मैंने लाग्या करतो वो लग्यो ही कोनी। जने ध्यान पड़ियो के नमक भी बीजोपचार रूप रे मैंने काम आ सके। यही सूरज रे ताप द्वारा भी बीजोपचार हो सके। सूरज रे गर्मी रे मैंने 3-4 घटा तक तावड़े रे मैंने अगर बीज ने नाक दा तो बीज रे मैंने लागुड़ा जका जीवाणु और रोगाणु है वे खत्म हो जावे। गर्म पानी रे माध्यम से बीजोपचार करियो जा सके है पण इस वास्ते जरूरी है कि पानी ज्यादा गर्म न रहे। पानी 53-54 डिग्री तक गर्म रहे। 53-54 डिग्री माथे 15 मिनट तक बिना गर्म करनिया सु रोग जनक जका जीवाणु हुए वे खत्म हो जावे और बिसु अंकुरण पर असर पड़े कोनी। जिया की गाजर बीज ने अगर 15 मिनट तक गर्म पानी मैंने राख ला या 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी राख ला तो बिर मैंने अल्टरनेरिया जकी बीमारी होया करे बा खत्म हो जावे। ये गर्म हवा रे द्वारा भी बीजोपचार करियो जा सके। गर्म हवा सु बीजोपचार करने रो एक उदाहरण है टमाटर। टमाटर रे बीज ने 6 घंटा तक अगर 29-37 डिग्री तापमान जो को सामान्यतः रिया करे तावड़ेर मैंने अगर राख दा तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस रो असर खत्म हो जावे। और यही अगर तेज तावड़ो तपरियो है ज्या की अबार ई दिनर मैंने तपिया करे है 46 डिग्री तक हुए तो बिर मैंने तो कुछ मिनट ही तावड़ेर मैंने राखनो पर्याप्त हुए और बीमू टमाटर मैंने मोजेक रोग को है लागे को नहीं। यही बीजा ने विकिरण रे द्वारा भी उपचार करियो जा सके है। इर मैंने अल्ट्रावायलेट और एक्सरे किरण आवे जकर माध्यम से बीजा ने गुजारियो जावे। रासायनिक उपचार की बात करा तो इर मैंने शामिल है सा थायरम कैप्टान एग्रोसान डाइथेम और डाइफोलेटोन यही कार्बेंडेजियम विटावैक्स वेनवेट बेनोमिल और दूसरा जका रासायनिक कीटनाशी है। रासायनिक कीटनाशक ने काम में लेते वक्त जरूरी है कि जकी इर मैंने सावधानी देवड़ी है और जकी मात्रा बताउड़ी है भी मात्रा में ही और भी सावधानी ने ध्यान में रखता वही काम में लेना है। फफुंद नाशक हुए ये दवाओं से भी बीजोपचार हो सके है। इन्हें सूखो उपचार भी करियो जा सके है ज्या की मिट्टी रे घड़ेर मैंने ज्वार मूंगफली उड़द अरहर सूर्यमुखी गेहूं चना सरसों इन्हें सूखे घड़ेर मैंने डाल और पच्चे फफुंद नाशक दवा थोड़ी मिलार 10 मिनट तक वो घड़ो घुमाते रहा तो उपचार हो जावे। ये गीलो उपचार हो सके कि 10 मिनट तक रसायन रो घोल जको है फिर मैंने डुबो दो इर मैंने गन्ना आलू अदरक हल्दी लहसुन इन्हें काम में लेकर जकरा कंद या तना आपा बीज रूप में काम में लेवा बामा विशेष उपयोगी है। ये स्लरी विधि होया करे कि इरो एक पेस्ट बना लेवे कवक नासिरो और भी पेस्ट रे मैंने बीजा ने चोखित रे मिलार पछे सुखा ले और भी रो पैक तैयार कर भी काम में लीजिए। यही धुआं लगाया करे है सोयाबीन रे बीजा वाये विशेष तौर पर उपयोगी है। फार्मल डेड ने 2 घंटा तक अगर धुआं लगाया जावे तो भी जीवाणु खत्म हो जावे। दीमक से बचने वास्ते क्लोरोपाइरीफॉस रो धूम्रीकरण करियो जा सके। कोई भी बीजोपचार कराया बीर मैंने असावधानी रखनी है कि फसला में जगह बीज री मात्रा देवड़ी है बीती मात्रा ही काम में लेनी है। रसायन कोई भी काम में लो और देखनो है कि बीरी अंतिम तिथि यानी कि एक्सपायरी तिथि तो कोनी निकल गई है और रसायन जगह भी है बिना टाबर सु और मवेशिया सु अलगो राखनो है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में बीजों का टीकाकरण बीजो उपचार विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, गर्मियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में हम खान पान, पहनने ओढ़ने संबंधित और धूप में निकलने के समय का प्रबंधन करके चलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है

तो अत्यधिक गर्मी लगने की वजह से हम लू के शिकार हो सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है। जीवन में हमारी हर एक एक्टिविटी हमने कुछ इस तरीके से संयोजित कर रखी है, व्यवस्थित कर रखी है कि हम स्वस्थ रहने के साथ साथ पूर्ण रूप से सक्रिय भी रह सकें। ईश्वर ने भी ऐसी बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बॉडी में बनाकर रखी है, जिसकी वजह से तय समय पर हमें भूख का एहसास होता है, तय समय पर हमें नींद का एहसास होता है और तय समय पर हम अपने आप को अत्यधिक सक्रिय भी महसूस करते हैं। अगर हम बात करें अर्ली मॉर्निंग की, तो हम उस समय शांत तो रहते हैं लेकिन हमारा दिमाग अत्यधिक सक्रिय रहता है, और जैसे जैसे दिन चढ़ता है हमारी एक्टिविटी जो है बढ़ने लग जाती है और कार्य को संपन्न करने की एनर्जी भी बढ़ने लगती है, और जैसे ही दिन ढलने लगता है हमारी एनर्जी कम होने लग जाती है और हमें ऐसा लगता है कि अब हमें नींद लेनी चाहिए या हमें आराम करना चाहिए। इस तरह की बायोलॉजिकल क्लॉक ईश्वर ने न सिर्फ हम इंसानों में, जानवरों में, ऐसे जानवर हैं जो निशाचर होते हैं, जो रात को जागते हैं वे दिन में सोते हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको सिर्फ रात को दिखाई देता दिन में नहीं दिखाई देता, सब कुछ मदर नेचर ने व्यवस्थित कर रखा है, फिक्स कर रखा है। बावजूद इसके भी हम में से अधिकांश लोग अनिद्रा के शिकार होते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। नींद नहीं आने की वजह से वे डॉक्टर से सलाह लेते हैं, चिकित्सक से सलाह लेते हैं और नींद की दवाइयों का सेवन भी करते हैं ताकि उन्हें अच्छी नींद आ सके। कहने को तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हमें 8 घंटे की साउंड स्लीप, व्यवस्थित नींद बिना किसी डिस्टरबेंस के आनी ही चाहिए, और अगर हम वैसे बात करें कि अगर हमें 8 घंटे सोना है तो दिन की 24 घंटे का 1/3 हिस्सा तो हम सोने में लगा देते हैं और हमारे टोटल जीवन का, संपूर्ण जीवन का 1/3 हिस्सा हमारे नींद में ही चला जाता है। तो अगर हम वैसे देखें तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन अगर हम इसका साइंटिफिक महत्व देखें, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक की इंपॉर्टेंस का महत्व देखें, तो नींद का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक व्यवस्थित, एक शांत नींद, स्वस्थ नींद आना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अगर हम हैं हमें नींद नहीं आती, अगर हम अनिद्रा के शिकार है, तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता, हम डिसीजन नहीं ले पाते, हमारे निर्णय की क्षमता को प्रभावित करता है, हमारे अनुशासन को प्रभावित करता है, हमारी जो एक्टिविटीज़ है उनको प्रभावित करता है। नींद ले लेने के बाद में जिस तरीके से हम कार्यों का निष्पादन करते हैं, उन्हें संपन्न करते हैं, और जो हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है वो पूर्ण रूप से बढ़ जाता है। नींद का होना हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, हमें 8 घंटे की नींद लेना ही चाहिए। हम हर वो कोशिश करें जिसकी वजह से हमें एक स्वस्थ और एक संपूर्ण नींद आ सके बिना किसी डिस्टर्बेंसेस के। अगर आपको रात को बार बार यूरिन करने के लिए उठना पड़ता है तब भी आपको चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। अगर सोते वक्त आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक हो जाता है, और अगर आपको नींद देर रात तक नहीं आ रही है तब भी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कुछ छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपना कर भी हम स्वस्थ नींद ले सकते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल पर स्क्रीन टाइम या लैपटॉप पर स्क्रीन टाइम 6 घंटे से 7 घंटे से कम होना चाहिए, 6 से 7 घंटे से भी कम होना चाहिए। और दूसरी बात कि हम अपनी अपने बेड पर जाने से 1 घंटा पहले ही मोबाइल का इस्तेमाल जो है बिल्कुल बंद कर दें। रात्रि का जो भोजन है वह हम समय से करें, मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक की आदत जरूर डालें, प्रातःकाल जल्दी उठकर योग को अपनाएं, क्योंकि योग हमारे मन मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, और जो अनकंट्रोल्ड थॉट्स आते हैं

ऐसे विचार जिनका हमारे जीवन में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, जो विचारों की बाढ़ हमारे दिमाग में आती है, उन्हें नियंत्रित करता है योग। तो हम योग अपना सकते हैं, हम मॉर्निंग या इवनिंग वॉक कर सकते हैं, खाने का जो समय है चाहे दोपहर का हो या फिर शाम का हो, उसको भी हम फिक्स कर सकते हैं, या फिर सूर्य के ढलने से पहले अगर हम रात्रिकालीन भोजन कर लें, तब हमारा पाचन जो है वह हेल्दी होने के साथ साथ हमारी नींद भी हेल्दी हो सकती है। इन छोटी छोटी सी बातों को अपनाकर हम एक स्वस्थ नींद ले सकते हैं, और अगर हम स्वस्थ नींद लेंगे तो हमारा जीवन स्वस्थ होगा, हमारे काम जो हैं जो भी हैं, चाहे हम ऑफिस में जाते हैं, चाहे हमारा जो भी प्रोफेशन है, उसको पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ पूर्ण करते हैं अगर हमारी नींद स्वस्थ होती है। चर्चाओं को देते हैं विराम, कार्यक्रम में सुनते हैं ये गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम नींद की बात कर रहे थे और नींद हमें तभी अच्छी आ सकती है जब हम किसी स्वच्छ जगह पर, स्वच्छ बिस्तर पर सो रहे होते हैं। अगर हमारे आसपास स्वच्छता नहीं होती है, अगर जो प्लेस है, जो जगह है, वह साफ सुथरी नहीं है,

तो फिर हमें नींद अच्छी नहीं आ सकती। तो सबसे बड़ी जो शर्त है जीवन में अच्छी नींद की, अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छे खुशनुमा अच्छे विचारों वाले वातावरण की, तो उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि स्वच्छता अपनाई जाए। स्वच्छता न सिर्फ शरीर से जुड़ी हो, स्वच्छता हमारे आसपास के माहौल से जुड़ी होनी चाहिए। हमारे घर, हमारे ऑफिस, हमारे गली मोहल्ले, हमारा शहर, हमारा राष्ट्र भी साफ सुथरा होना चाहिए। बार बार अगर यह कहकर सिखाना पड़े कि हमें कचरा डस्टबिन में फेंकना चाहिए तो हमारी डिग्रियों का कोई महत्व नहीं है। हम चाहे मास्टर डिग्री या पीएचडी डिग्री होल्डर भी क्यों ना हो, लेकिन हमें यह सिखाना पड़े कि हमें कचरा जो है डस्टबिन में फेंकना चाहिए तो हम अनपढ़ से भी बदतर हैं। कहने का सीधा मतलब यह है कि हमें इस चीज का पता होना चाहिए, इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कचरा हमेशा डस्टबिन में फेंका जाए, कचरे का हमेशा उचित निस्तारण हो। हम किसी भी चीज के रैपर, कागज, पॉलिथीन ऐसे ही गली मोहल्लों में नहीं फेंकेंगे। दूसरी बात कचरे के निस्तारण के साथ वह यह कि हमें प्रतिदिन नहाना है, प्रतिदिन स्नान करना है। अगर हमें छोटा मोटा बुखार भी है, अगर हमें जुखाम, सर्दी जुखाम भी है, तो भी हमें स्नान करना है। छोटों से लेके बड़े बुजुर्गों तक रोज प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। तीसरी बात, हमारा खाना अच्छी तरह धुला हुआ और अच्छी तरह पका हुआ होना चाहिए। जितने भी फ्रूट्स आज बाजार में आ रहे हैं वो केमिकली पकाए हुए होते हैं, विभिन्न तरह के रसायन का उपयोग किया जाता है उनको पकाने में, उनके उत्पादन में और उनके स्टोरेज में भी। अगर हम उनको सही तरीके से धोकर खाते हैं तो वो केमिकल हमारी बॉडी में नहीं पहुंचते हैं। कुछ घातक केमिकल तो ऐसे भी हैं सूक्ष्म मात्रा में हमारी बॉडी में एंटर तो करते हैं लेकिन हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलते, वे हमारी बॉडी में स्टोर होते रहते हैं। और जब इनकी स्टोर होते होते लिमिट घातक स्तर पर पहुंच जाती है तो वे हमारे बॉडी के किसी भी सॉफ्ट ऑर्गन को, इंपॉर्टेंट ऑर्गन को हानि पहुंचाते हैं और हम असाध्य बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें हमारे खान पान के स्वच्छ होने का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि अगर हम प्रतिदिन स्वच्छ रहते हैं, हमारा खान पान स्वच्छ है, तो हमारा घर और हमारा गली मोहल्ला भी स्वच्छ होना चाहिए। प्रतिदिन हमारा जो घर है वह साफ होना चाहिए, उसकी सफाई होनी चाहिए। घर में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है, जिसका साफ सफाई से और हेल्थ से बहुत बड़ा कनेक्शन है, वह है हमारी किचन, हमारा रसोई। अगर हमारी किचन स्वच्छ नहीं है तो फिर हमें बीमारियों से कोई नहीं बचा सकता। जीवन जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो आप स्वच्छ रह लो और या फिर स्वच्छ ना रहकर हॉस्पिटल में भर्ती होकर रह लो। तो अब हमें यह तय करना है कि हमें स्वच्छ रहकर हमारे वर्क प्लेस पर हमारी उपस्थिति दर्ज करवानी है या फिर हमें अस्वच्छ रहकर हमारी उपस्थिति हॉस्पिटल के वार्ड रूम में दर्ज करवानी है। कहने का सीधा सीधा मतलब यह कि हमें हमारे जीवन में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बार बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यह कहना पड़ता है, यह सिखाना पड़ता है देश के नागरिकों को कि हमें स्वच्छ रहना चाहिए। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तभी हम हमारे जीवन के हर एक पटल पर हिट रहेंगे, फिट रहेंगे। अब दूसरी बात यह कि स्वच्छता न सिर्फ शरीर की हो, आपके घर गली मोहल्लों की हो, स्वच्छता आपके विचारों की भी होनी चाहिए। अगर आपके विचार स्वच्छ नहीं है, स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो भी आप बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। और उन विचारों में स्वच्छता लाने का छोटा सा प्रयास यह है कि आप अपने जीवन में किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी को अपने से छोटा दिखाने का प्रयास नहीं।

करेंगे। अगर आप कितने भी बड़े पद पर क्यों न हो, किसी को यह नहीं दिखलाएंगे कि हाँ मैं इतने बड़े पद पर हूं, और किसी की लेग पुलिंग नहीं करेंगे, किसी से ईर्ष्या का भाव नहीं रखेंगे। जीवन में अगर आपके पास में पर्याप्त है, तो जिनके पास में जीवन जीने को सीमित संसाधन नहीं है, उनको आप डोनेशन कीजिए, दान कीजिए। हमारे धर्मशास्त्रों में तो यह तक बतलाया गया है कि स्वच्छ रहने से और दान धर्म करने से आपके प्लैनेट्स स्ट्रांग होते हैं, और जीवन में आपको उन प्लैनेट्स की ब्लेसिंग्स मिलती है, और आपको सफलताएं कम प्रयासों से भी मिल सकती हैं। तो श्रोताओं, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम न सिर्फ शरीर की बल्कि हमारे विचारों की भी स्वच्छता को अपनाएंगे, और हमारे हेल्दी एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए इस पर्यावरण के जो रक्षक हैं पेड़, उनकी भी रक्षा करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ पिता के नाम, और एक पेड़ स्वयं के नाम से भी लगाएंगे, और न सिर्फ उसका पौधारोपण करके खाना पूर्ति कर लेंगे, उसके बड़े होने तक उसका पूर्ण ध्यान रखेंगे। एक पेड़ 24 घंटे में 3 लोगों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन का निर्माण करता है, और वो 3 लोग कौन? आपकी माँ, आपके पिता, और तीसरे आप स्वयं। इसलिए एक पेड़ माँ के नाम तो लगाना ही है, एक पेड़ पिता के नाम, और एक पेड़ स्वयं के नाम लगाना है, ताकि आप अपनी आने वाली संततियों के लिए भी ऑक्सीजन का जो भंडारण है वो इस एनवायरनमेंट में बनाए रखें। जीवन जीने के लिए भी और जीवन के खत्म होने के बाद में भी एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी एक पेड़ से ही प्राप्त होती है। एक पेड़ में जितनी लकड़ी होती है, वह लकड़ी उसके अंतिम संस्कार में आवश्यक होती है। ऐसा सब कुछ करके हम हमारे जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, और इस मदर नेचर को भी स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। स्वस्थता, स्वच्छता की इस बात के बाद कार्यक्रम में एंटरटेनमेंट का हम समावेश करते हैं इस गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, राहत फतेह अली खान के स्वर में। फिल्म का नाम है हीरो।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

मोहित चौहान का गाया ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म का नाम एक पहेली लीला। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल पर। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, हीरोपंती फिल्म से, स्वर है मोहित चौहान का।

रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल पर। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, हीरोपंती फिल्म से, स्वर है मोहित चौहान का।

ये गीत अभी आपने सुना सलमान खान के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए अमित मिश्रा शिल्पा राव की आवाजों में। फिल्म का नाम है ए दिल है मुश्किल।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ोरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
3: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा।

0: हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव

0: विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
2: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
4: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

0: जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ुरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 8:30 PM, we will bring an insightful discussion on Khet Bachao Abhiyan, restricting fertilizer use and promoting soil health with Dr. J.P.S. Dabas, former principal scientist, ICAR, Indian Agricultural Research Institute. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2371-7106 and 011-2331-4444 from 9:30 PM onwards tonight. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Anuja. Top front page headline in the Statesman writes, Nepal signals pragmatic reset in ties with India during foreign minister's visit, backing bilateral route on border issue. Ministry of Home Affairs approves deployment of 670 companies of CAPFs, marking one of the largest ever multi-layered security arrangements for Amarnath Yatra, reports the Asian Age. An editorial in Hindustan Times states how SAARC offers India what other forums cannot. It empowers Delhi amidst global turmoil with no guarantee needed from any external actor in setting the terms of the organization. In an extraordinary arrangement, NEET paper setters to be in lockdown till re-exam, no phone, net, team housed at secret location, says the Times of India. The Economic Times states, lay old town to get heritage makeover to enhance infrastructure and improved public amenities. The Indian Express quoting, the government says, despite second price revision of LPG gas cylinder since crisis in West Asia, oil marketing companies are still losing 700 rupees. And finally, in a historic first for Punjab, celebrated music composer and singer A.R. Rahman delivered a live performance at the Attari border on Sunday, paying tribute to the border security force through a stirring rendition of his patriotic song, Jai Ho, notes the Tribune. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. West Bengal set to become 36th state or union territory to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. National Testing Agency releases exam city intimation slip for NEET UG 2026 re-examination scheduled to be held on the 21st of June. Lok Sabha Speaker Om Birla to inaugurate Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 2 conference in Chandigarh today. New Delhi says Indonesia is a key pillar of India's Act East policy. Iran fires waves of missiles at Israel for first time since April ceasefire. And in tennis, Germany's Alexander Zverev secures his maiden Grand Slam title. And with that, we end the morning news. Have
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है सौरभ कार्यक्रम में राजस्थानी कहानी शीर्षक रीस रो रातो रंग कहानीकार डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा।
3: जद मारी आंख खुली त देवी जी तैयार होई चुक्या हा। लीलाड़ माते टीको बतावे हो कबे मिंदर देवराई कर लिया। चाय रो कप मारे हाथ में सूंपता जद बा गुड मॉर्निंग के हो तद मारे उणिया रही नींद री ठोड़ मुड़क सांचरगी। मैं मन में करी भली लुगाई री आई सेनानी हुए मोट्यार छू पहला जागणो चोको चूलो सामणो अर घर गवाड़ी टंडवाड़नो। चाय सुड़कता बण ब्रेकिंग न्यूज बताई पड़ोसी पटवारी जी री लुगाई घर छोड़ गई परी। बोरान बोर ए समाचार थने कुण दिया मैकअप राखता पूछो। गली में कोई बात हुए तो लुक्योड़ी रवे है कहीं। पार्क में घूमण गई जद पूजा मैडम बतावे आ बारे ऊपरले मकान में ही तो पटवारी जी बाड़े रेवे। एड़ी बात काई हुईगी के पटवारण घर छोड़गी। पटवारी आदमी तो भलो दिशे। मैं कहो दिशे तो सह भला ही है पण हुए कोनी। मैडम बतावे ही उनरो चक्कर हो कोई आपरे दफ्तरी एक अकाउंटेंट ने लिया घूम तो उनरी जोड़ा इतने ठा पड़ गयो तो महाभारत मनणो ही हो। कई दिना शू कांस चाले ही आज बाधा पेड़ी घर छोड़गी बन पूरी राम कहानी मान रखी। अब छोड़ आपा राम रे भगत।

बीजारी राड़ ने गोखा करशी सो भरशी मैं कहो अर फारी गुण शारू लार ने कानी चाल पड़ो गर्रे लार ने पाखा नो नानगर बनाया ने तो बिया बरस खंडू गयो पण पानी सारू पाइप लगावण रो जोग कोनी बण्यो जोगरी थोड़ जे आलस केहूं तो बेसी ठीक रे वेला घर में आगले पासे पाखा ने नाण गरशूं सांगो पांग काम चाले तो 30 पाउंडा लारे जावणो कुण चावे आने बनावण रो असल कारण किरायो कमावण री मनशाई जूने घर ने फोड़ जद नवो घर बनायो तद लारले पासे एक कमरो अर रसोई कायम राख लिया जोड़ाए त्रो केवणो हो के लार ने पाखा नो नाण घर बन जावे तो किरायोदार राख्यो जा सके इणशू भाड़ो आवेला जको आवेला लारले पासे सुनेड़ी कोनी रेवेला मैं उनरे क्या मुजब चिणाई तो करवा दी पण आखती पाखती भाड़ेती अर मालिका बिचाले खटपट देखर लारला आसरा भाड़े देवण रो मत्तो टाल दियो जरूरत बिना बाने त्यार कुण करवावे हो खासा दिना ताई चिड़कल्या अर कबूतरा बठे तद्दी मचाई लारले अदीतवार ने जीसा गांव शू आया तो मां में पानी बिजली रे बंदोबस्त री सलाह दीवी इन शू आया गया ने सुबी तो होई जासी बात सोड़े आना खरी एक पाखा ने शू सगड़ा ने बारी उड़ीकनी पड़े जय मारे मोटोड़ो लाडेसर जेड़ो कोई पहला मोर्चो मार लेवे तो बैठा देवी बजो बलाई आधी घंटा तो जाम्या ही कोनी समझो मजाक में उनने धीमी गति रो समाचार के वहाँ में बासरा बीजा टाबर ना धोयर स्कूल सारू टूर जावे तत्ताई कवर साबरा कुरला दातनी कोनी निवड़े लार ने नानगर पाखानो त्यार करावन रो मतलब सगड़ा रे सोरप हुणो हो आया गया रे अर घरवाला रही बिया आया गया रो तो ना भी हो इन जुग में कुण कठे आवे जावे जै कोई भाई बेली मिलन आई जावे तो ही रात बासो तो उठ ही गयो आजकल वो जुन्नो भगत हो जद गिनायत मिलन आमता अर मिलाप 2-4 दिन ताई पूरो कोनी हूँ तो अब तो मिलन री ठोड़ फेसबुक है का व्हाट्सएप जै कठे जावण ही हुए तो मिला जुली सारू 2-4 घंटा ही कोनी निकले साची बात आई है कि इनशू बेसी जल्ले ही कोनी बिजारी छोड़ो मारे पण किणी रे आवण री खबर शू डांग सी लागे माथे में केड़ो भगत आए गयो सोचू तो खोपड़ फूटन लाग जावे पाछी सागण बात डूकू पानी री बिद बैठ ताई मारे मौज हुईगी अबे जोड़ायत टाबरिया आगे रेवे अर लारनो मारे जोगो मैं नावा धोई लारे ही करण लाग गयो बठे साबण तेल कांगसियो आदि राख दिया दाढ़ी सारू वास बेसिन रे ऊपरले पासे भींत माथे 2 हाथ लांबो गोल काच ही लगा दियो काच रे कारण इन कहानी में 2 नवा जीव दाखिल होया एक चिड़ी और एक चिड़ो पहला चिड़ी आई बन काच ने सावल जोयो काच में प्रतिबिंब दिसे ही दिसे चिड़ी नहीं दिसो वेला मिनख आपरो प्रतिबिंब देख र मुड़के देखता कोनी दापे पण पखेरूरी मनगत न्यारी हुए बा कई ताल काच ने तकावती रही उन रे तो आग बली तो सो लाग गयो बण आपरी चूंच शू काच माथे ठोकणो शुरू कर दियो 1-2 बार नहीं 1000 बार बा जक्की कोनी लियो इकलंग ठोक्या जावे हाँपी जावे तो एक घड़ी थमर सांस लेवे और फेर रीस में ठोकणो शुरू मैं दांत माथे ब्रश रगड़ता थका चिड़ी ने तकायो मारो हाथ थम गयो मन में सवाल उठ्यो एड़ो काई दिस गयो इनने काच में आ रीस क्यों चाणचके दर्शाव बदल गयो चिड़ो उन ठोड़ आए पुग्यो सात चिड़ी ने सोध तो आयो है वो गड़ीक नानगर्री मंडेरी माथे बैठ्यो रहो अर पछे काचरी कूट माथे आए गयो मैं ब्रश जाल्या दीदा फाड़े हो सोचो सात अबे चिड़ी डब जावेला चिड़ो समझावेला चिड़ी ने इं क्यों करे बावड़ी काई हो गयो थारे पण ओ मारो भरम हो चिड़ो ही चिड़ी बेड़ो जुट गयो दूणी रीस सागे दो काच माथे टूट पड़या दे चूंच माथे चूंच रीस में राता पीड़ा होयड़ा एक घड़ी बिसाई लिया बिना धड़ाधड़ ठोक्या जावे बारा बचीड़ दूर ताई सुनी जे जाने इन काच का उन पणबिम रात टोटा करया ही थमसी मारे अचंबेरो छेड़।

तो नी मैं जोड़ाए तने हेलो करो तीजे हेले मैं देवी जी पदार्था दिशा। असल में दिनु गए उनने काम बेसी रवे, घर में झाड़ू मसो तो टाबरा ने स्कूल भेजनो मारो टिप्पण, इन भगत कोई बतला लेवे तो गड़े पड़ता जेज नहीं लागे। काई बात है, क्यों खोटी करो बनावता ही गयो। आ चिड़ी चिड़ा ने देख कड़ा शू काच माथे चूंच ठोकन लाग रहा है, काई दिस गयो आने। मैं मारी चिंता उनने बताई तो मैं काई करूं। मैं ही बेली लागी आपने कितो काम पड़ियो है, थे ही देख बो करो आने। बनरीश में कहो अर माई पगा पाछी मुड़गी। उनरो सुभाव मारे शू काई छानू है, नौ बरस हुई गया सागे रेता, सो की जानू मैं। मने ठा है के सफाई रो फोबियो है उनरे। सरकार तो स्वच्छता अभियान अब चलायो है, पण मारे घरे तो नौ बरसाशू इकलंग चाले। बा हरेक चीज ने जगह सरचावे, मारो राम इनशू एन उल्टो। मने चीज अठे बठे राखण री जूनी बाण, मारो कमरो देख र आप अंदाज लगा सको। कठई पोथ्या तो कठई लैपटॉप, कठई गाबा तो कठई फाइला। निजू जीवनदाई खिंडियोड़ो सो रेवणो सुभाव है मारो। अब रोला तो लाजमी है, ये अखबार कुण खिंडाया, अठे कागद मती फेंको, आ किताबा ने आलमारी में राखो, अठे मारी साफी दियोड़ी है पग कोनी मांडना। शुरू में तो एड़ी बाता माथे पेणा मंड जाऊता, कई बार तो बाता इतनी बद जाऊती के दो दो दिन ताई अणबोलो रेव तो। फिर मैं ही राजी पे रिपेल कर दो, अब बिया कोनी वे मारो खिंडावणो चालू रवे। अर उनरा गीत घर में पंखेरुआरा घूसड़ा तो उनने जाबक ही नहीं सुवावे। एक बांस रे झाड़ू बांध रे एक आंतरे दूसरे रोशन दाना शू तिणकला बुआर बोकरे। पंखेरुआरी बीठा साफ करण सारू सातवे दिन फिनाइल रो जरीकन खपा देवे। बा पाछी रसोई में पूगगी, पण जाऊती बेलाई उनरो रेडियो शुरू रहो, मारो ध्यान उनका नी दरी कोनी हो। मैं तो चिड़ी चिड़ेरी अड़ोच माई सूक्या जावे हो। आ पखेरुआरे काई हुई गयो, क्यों करे इया इया तो आरी चूंच घायल हुई जासी। फेरे दाणा की कर खासी चाणचके मने एक तजबीज सूझी। मैं भीतर शू पेचकस लायो अर काच ने उतार अर पाछो मायने ले गयो। जद मैं काच उतारे हो चिड़ी अर चिड़ो नान गर्री मंडेरी माथे बैठा मुआइनो करया। दफ्तर में ही मारे मन में ताला मेली रही, चिड़ी अर चिड़ारा काई हाल वेला। अब बताई तो उड़ गया वेला, एकर जीव में आई के जोड़ा इतने फोन कर पूछूं, पण फेर टाल कर दी। आथन घरे बावड़ ताई मैं सीधो लारने गयो, चिड़ी अर चिड़ो अजय ही जगह कोनी छोड़ी। बा अबे नान गर्रे रोशनदान में डेरो जमा लियो, शात बारी रीस अजय ही नीवड़ी कोनी। नी जना बे बठे काई उड़ी के आ। रोटी जीमता देवी जी नवा समाचार भुगताया, दोपारा पटवारन रे पीर लाया। कई ताल रोलो मचो, पटवारी हो काई घरे मैं सवाल करियो। पहला तो कोनी हो पण पछे आ गयो। बा पटवारी ने खासा आवड़ कावड़ सुनाई, जावता पटवारन री चीज बस्ती ले गया। बण बतायो पाछो जाचो जचे कोनी काई। मैं पूछो बीगडुड़ा का था जचा करे है काई। पटवारन तलाक री अर्जी लगाई है। बण कहो माड़ी बात है, पटवारी धाप तो मिनख है, मोकली उरलाई है उनरे आंगणे, क्यों माड़ी सी बात सारू घर खिंडावे। मैं आपरी दीठ राखी, आ माड़ी सी बात लागी आपने। लुगाई भूखती से सहन कर सके, पण बस पड़ता आपरी ठोड़ दूजी लगाई लुगाई कदी कोनी स्वीकारे। उनरी बोली में रीसरा सुर पड़थक सुनी जया। उनरे पंडूतर में मने ही चिड़ी री रीसरो नितार लाद गयो।

सौरभ कार्यक्रम में अभी आपने सुनी राजस्थानी कहानी रीस रो रातो रंग शीर्षक पर कहानीकार डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित समाचार तरंग।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है समाचार तरंग।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति समाचार तरंग में आप सभी श्रोताओं का स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो पूरे विश्व में 21 जून को मनाया जाता है और इसके काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। साल 2026 में इस दिन की थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, अर्थात योग के माध्यम से स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली की ओर बढ़ना। इस तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव का कैसे प्रबंधन किया जाए और कैसे संतुलित जीवन शैली अपनाई जाए, ये हम सभी के लिए एक बड़ा सवाल रहता है। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रसिद्ध कार्डिक सर्जन और योग गुरु डॉक्टर मोहित शर्मा। सर नमस्कार।
2: नमस्ते।
1: सर सबसे पहले, आज के दौर में तनाव जो है जिंदगी का हिस्सा ही हो गया है, ऐसे में योग जो है हमारी सेहत को कैसे प्रभावित कर सकता है?
2: देखो, दो इसमें सब्जेक्ट है, पहले है तनाव और दूसरा सब्जेक्ट है योग। पहले हम तनाव को समझ लेते हैं, उसके बाद हम योग को समझ लेते हैं।
1: जी,
2: तनाव बेसिकली एक सिंपल सा फिनोमिना है। तनाव का सामान्य से अर्थ अगर माना जाए तो एक लिमिटेड टाइम में एग्जीक्यूटिंग द कंप्लीट वर्क इज बेसिकली तनाव। जैसे मैं आपको कहूं कि हमारे बच्चे जब एग्जाम देते हैं, उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि आप उनसे पूछो बेटा पेपर कैसा हुआ, कि मैं 90% मार्क्स आएंगे, और जब मार्क्स आते तो कितने आए साहब, 70%। तो ये 20% क्या है, तनाव। और स्ट्रेस को थोड़ा डिफाइन करें कि आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन आपको 24 घंटे में जो टास्क दिए जा रहे हैं आप उनको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो कहलाता है तनाव, कि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, अब जो मनस्थिति होगी वो तनाव। तो ये बात समझ में आ गई कि हम तनाव को कैसे अपने हिसाब से परसेप्ट कर रहे हैं। नाउ इसका प्रबंधन कैसे हो और इसका हमारे पर क्या इम्पैक्ट है। देखो, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन से बीमार पड़ते हैं। मैं उनको एक ही चीज कहता हूं कि भोजन की तुलना में तनाव एक ऐसा बिंदु है जिससे हम बीमार पड़ते हैं। जैसे अगर आप तनाव में भोजन करेंगे तो भोजन विष है, लेकिन अगर आपका मन मस्त है, आनंदित है, तो आप विष भी खाएंगे तो वो बिल्कुल अमृत है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि ये बात मैंने ओवर एग्जेगरेटेड होकर के कही है, तो कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
1: जी।
2: आज का युवा, 25-30 साल का युवा हार्ट अटैक को सफरर हो चुका है। हम सब जानते हैं कि अभी यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। बीइंग ए कार्डियक सर्जन, वी आर ऑपरेटिंग सो मेनी कार्डियक सर्जरीज, इवन बाईपास सर्जरीज इन द यंग एज। आप अगर कभी जगन्नाथपुरी गए हों, और बहुत सारी ऐसी जगह

0: भारत में जहां पर लोग 100-100 साल की एज अटेन करते हैं और वो मजे से घी और चूरमा खाते हैं। देखे हैं आपने ऐसे बहुत सारे पुजारी होते हैं जो घी चूरमा खाते हैं और आराम से उनका एज आप पूछोगे तो क्लेम करेंगे 92 है साहब, 95 है, और ये और बताएंगे हमको तो याद भी नहीं है कितना है। हाउ इट्स पॉसिबल? आंसर है वो तनाव मुक्त जीवन में है। अब वो घी खाएं कुछ भी खाएं, उनके लिए कोई कोलेस्ट्रॉल कभी उन्होंने ना तो लेबोरेटरी का फेस देखा ना कभी उनको जाने की आवश्यकता। रिसेंटली ऐसा एक NIA ने अपने जयपुर में उन्होंने एक रिसर्च भी किया इस बात को लेके कि क्या वास्तव में घी या तेल का हमारे शरीर पे इम्पैक्ट है। अगर मैं एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे बात करूं तो डेफिनेटली दो प्रकार के जो फैट्स हम जानते हैं, अनसैचुरेट फैट, सैचुरेट फैट, जिनका इम्पैक्ट भी हम जानते हैं, लेकिन इस इम्पैक्ट के बावजूद अगर आप वही फैट दो अलग अलग व्यक्तियों को खिलाओ, एक व्यक्ति जो तनावग्रस्त है और एक व्यक्ति जो मस्त है, आप देखोगे जो तनावग्रस्त व्यक्ति है वो केवल घी सूंघ के ही उसको हार्ट अटैक आ जाएगा और एक मस्त व्यक्ति को घी का चूरमा खा के भी अरेस्ट नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ? स्ट्रेस। अब इसमें एड ऑन कर देते हैं, जैसे आपने कहा कि योग का क्या इसमें महत्व है।
1: जी,
0: योग बेसिकली जीवन जीने की उत्तम पद्धति है। पहली बात तो ये कोई ऐसा चिकित्सा विधा नहीं है हम ये माने कि अब किसी व्यक्ति को हार्ट की बीमारी हो गई और वो योग करने लगा है तो अब उसमें कुछ इंप्रूवमेंट तो आएगा, लेकिन क्या मेडिसिन का ये सब्स्टिट्यूट है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो योग को पहले जानते हैं समग्रता, नंबर वन, इट्स अ कंप्लीटनेस, होलनेस। और इस बार की जो थीम भी है कि एजिंग के ऊपर है, इस बार का जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाने वाला है उसके अंदर हम कह रहे हैं कि अच्छा आपका आयुष्य हो इसके लिए योग का क्या इम्पैक्ट है। तनाव जुड़ा हुआ है मन के साथ और योग का सायुज्य या जोड़ है हमारे मन और श्वास के साथ। अगर मैं आपसे कहूं आपको क्रोध आ रहा है, क्रोध किसमें आएगा? आपकी मनस्थिति है क्रोधी अवस्था, या ईर्ष्या, वो क्या है? आपकी मनस्थिति। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, लालच, मस्ती, आनंद, सुख, दुख, ये सब इमोशंस हैं और इन इमोशनल डाइवर्सिटी को जो ओरिजिन दे रहा है दैट इज योर माइंड या मन, और इसके पीछे है आपकी बुद्धि जो इनको कंट्रोल करती है कि ये सही है या ये गलत है। योग के माध्यम से, जैसे हम कहते हैं योग की अगर हम पहली परिभाषा लेते हैं, महर्षि पतंजलि योग सूत्र में लिखा गया है अथ योगानुशासनम, डिसिप्लिन इज इक्वल टू योग। अगर आपका एक डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ है देन आपको ये सारा जिसको हमने कहा कि आपकी मनस्थिति को भी आप बड़े अच्छे से हैंडल कर पाते हो। योगी का तात्पर्य और एक जिम्नास्टिक के बीच का भेद, जैसे है ना, आपने अभी देखा होगा बहुत सारे लोग आजकल आसन में थोड़ा सा शारीरिक प्रदर्शन करके उसको योग का नाम दे लेते हैं, बट ऐसा एग्जैक्टली है नहीं। अगर ऐसा होता तो एक जिम्नास्टिक को हम योगी क्यों नहीं कह लेते? तो योग का संबंध है मन के अवस्था के साथ में। अगर मन के साथ में उसका कनेक्शन ना हो तो फिर वो जिम्नास्टिक भी है और वो जिम करने जैसा भी है, फिर तो आप अपना शारीरिक कसरत करो। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक डेड बॉडी को, एक लाश को आपने कभी मुस्कुराते देखा है? या कभी आपने कहा हो अरे वाह कितनी सुंदर डेड बॉडी है? कभी किसी डेड बॉडी के लिए आपने सुंदर शब्द यूज किया है? नहीं। या कभी आपने ऐसा कहा है कि ये लाश मुझे देखकर ईर्ष्या क्यों कर रही है? नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक लाश को जो जीवंत बनाता है वो उसका प्राण, और प्राण का संबंध है श्वास के साथ, और श्वास और प्राण का जो सही केमिस्ट्री जिसको हम कह सकते हैं वो कहलाता है योग। जब हम योग की बात करते हैं तो अष्टांग की बात करते हैं पूरा, है ना, सबसे पहला जिसके अंदर हम कहते हैं यम, सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य, दूसरा नियम, नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। जब हम यम और नियम में है ही नहीं और हम खाली अपने फिजिकल एक्सरसाइज के आधार पर कह दे ये योग है तो उसकी समग्रता नहीं हुई।
1: जी।
0: आसन एक बहुत छोटा सा पार्ट है। अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है, वृद्ध है, शरीर के स्तर पर अक्षम है, वो योग कर सकता है, वो योगी हो सकता है, क्योंकि उसने अपने मन को हैंडल करना जाना है। तो मन को हैंडल जब आप करना सीख जाते हैं आप तनाव प्रबंधन को जान जाते हैं। तो यहां पर अगर आप योग को समझ लेते हैं तो जीवन में तनाव प्रबंधन जब आप समझ जाते हैं तो आप अपनी सारी बीमारियों को आप इजीली हैंडल कर लेते हैं।
1: सर, अभी आपने मानसिक स्पष्टता की और शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन सारी बातें की, तो क्या इसमें मन ही सर्वोपरि है, मानसिक स्थिति? और आपको क्या लगता है कि आजकल के जीवन में सबसे ज्यादा ऐसे कौन से कारण हैं कि लोग तनाव में रहते हैं?
0: अच्छा,
1: और क्या इसका दिल पर भी बहुत असर पड़ता है?
0: ऑब्वियसली ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा चलो, इसको भी हम एक प्रश्न से ही सॉल्व करते हैं। आपके साथ जीवन में ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपका चश्मा सामने पड़ा है लेकिन आप चश्मा ढूंढ रहे हैं, मेरा चश्मा कहाँ गया? या आपकी गाड़ी की चाबी बिल्कुल आपके सामने पड़ी और आप चाबी को ढूंढ रहे हैं,
1: नजर नहीं आ रही,
0: जबकि अगर आपकी आंखें देख सकती तो आपको आपकी चाबी नजर आती, और अगर आपकी

0: आंखें और अच्छे से देख पाती तो आपका आपका चश्मा भी नजर आता। ऐसा क्या होता है कि हमारी आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, हमारा पूरा शरीर एक्टिव है लेकिन फिर भी हमें सुनाई नहीं दे रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा है? द रीजन इज आवर माइंड इज नॉट कनेक्टेड विद द सेंसेस। जैसे अगर हम इसको क्लासिफाई करें, एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है कि हमारे एग्जिस्टेंस को हम नहीं समझते, हम केवल शरीर को समझते हैं कि मैं यह शरीर हूं। लेकिन इस एग्जिस्टेंस में पहला स्तर है आपका शरीर, जो अलग अलग आयु अवस्था के ऊपर निर्भर करता है, देश काल परिस्थिति में बदलता रहा है। आप 5 किलो के पैदा हुए, 50, 60, 70 किलो के हो सकते हैं या आगे भी कितने रहेंगे, नोबडी नोज। पहला शरीर, दूसरा है श्वास। अब इस श्वास को समझना वास्तव में योग है। अगर हम इस श्वास को ना समझें तो हमने योग को भी ढंग से नहीं समझा। योग सब जानते हैं, योग का अर्थ है जोड़ना, योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। तो ये जो श्वास है, सारा खेल यही है। जैसे हम आपसे कहें कि आपने इस धरती पर जब आप अवतरित हुए तब आपने पहला कृत्य क्या किया होगा, कुछ लोगों का उत्तर होता है साहब रोए थे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बिना श्वास लिए रो भी नहीं सकते, तो पहला कृत्य तो श्वास लेना था। और जब आप यहाँ से जाएंगे, एक दिन तो जाएंगे ही, लेकिन हमको लगता है कि हम 1000 साल तो हम यहाँ कम से कम है, हर व्यक्ति की गलत फहमी है। तो जब आप जाएंगे, आखिरी कृत्य आपका होने वाला है श्वास छोड़ने का। श्वास लेने और छोड़ने के बीच ये सारा जीवन है। तो समझ के स्तर पे अगर हम श्वास को और बारीकी से जाने तो जीवन में न केवल तनाव प्रबंधन बल्कि जीवन में और बहुत सारी विलक्षणताओं को एक्सप्लोर करते हैं। सही मायने में योग वही है, जीवन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक्सप्लोरेशन और विलक्षणताओं को जानना। फिर हमने कहा मन, शरीर श्वास के ऊपर एक मन है। ये मन क्या है, कनेक्टेड है बाहर की दुनिया से, आपकी इंद्रियों से। आपकी आंखें देखने का कार्य तब करती हैं जब आपका मन आंखों से कनेक्टेड हो। अगर मन कनेक्टेड नहीं है तो आपके सामने कोई अच्छा म्यूजिक भी चला दे आपको सुनाई नहीं देगा। जैसे आप गहरी नींद में हो, बाहर शोर हो रहा हो तो क्या सुनाई देता है? नहीं। तो यह कार्य है मन का, इंद्रियों से कनेक्ट होकर के जुड़ना। और इसके विपरीत मन के पीछे है आंतरिक दुनिया, इसको कहते हैं अंतर चतुष्टय, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सेल्फ। तो अब बुद्धि क्या है, मन जो अनुभव कर रही है उसके लिए डिसीजन देने वाला भी तो कोई चाहिए, नहीं तो मन तो क्या है, बेलगाम घोड़ा दौड़ेगा इधर से उधर। बुद्धि इज इंटेलेक्ट, दैट इज कनेक्टेड विद योर नॉलेज, और अनुभव के साथ संबंध है बुद्धि का। अगर आप कुछ भी अनुभव करते हैं मन के माध्यम से तो बुद्धि उस अनुभव के ऊपर एक जस्टिफिकेशन देती है। जैसे आपके मन में प्रश्न कहां उठता है, प्रश्न मन में नहीं उठेगा, प्रश्न बुद्धि में उठेगा, वो आपको बोलेगा ऐसा बात करना है, ऐसा बात नहीं करना है।
1: डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा होता है कि हम इन सब चीजों को जानते हैं, योग एक शारीरिक अभ्यास है, लेकिन उसके लिए सबसे पहली जरूरत होती है कि हम अपने निश्चय करें, अपने मन के हिसाब से उसे निर्धारित करें। तो ये जो सेट इंटेंशन वाली बात है, उसके लिए इंसान को क्या करना चाहिए?
0: इसमें बहुत सुंदर बात आपने पूछी है, और इस बार की योगा थीम भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे वेलनेस एंड विजडम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्ट एंड विजडम, बहुत कम लोग जानते हैं कि बुद्धि में और प्रज्ञा में क्या फर्क है। बुद्धि, प्रज्ञा या विवेक, इसमें सबसे बड़ा फर्क यह है कि जैसे सबको पता है योग दिवस आएगा, सबको पता है योग जीवन के लिए अनिवार्य है, सबको पता है कि योग में बहुत सारी खूबियां हैं और हमें जीवन में अपनाना चाहिए, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता तो है लेकिन वो इस पथ पर चल रहे हैं। जो पथ पर चल रहा है वो विजडम है, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी, तो वो विजडम है। लेकिन पता होना ये बुद्धि है। तो अगर मैं कहूं कि यहां इस हॉल में अगर 10 लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, पता सबको है कि योग बहुत अच्छा है, लेकिन उन 10 में से 2 ऐसे होंगे जो इस पथ पर चलेंगे और इसको अनुशासित रूप से जीवन में अपनाएंगे, तो आवश्यक क्या हुआ, विजडम, विवेक, ज्ञान या प्रज्ञा। अब ये आए कहां से, इसके लिए सबसे पहला जिसको हम कहते हैं अनुशासन, दैट इज सिंपली डिसिप्लिन।
1: सर, आपको एक बतौर हृदय रोग विशेषज्ञ और सर्जन होने के नाते क्या लगता है कि तनाव से ही युवाओं में आजकल बहुत ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं?
0: बिल्कुल, सबसे पहला बिंदु तनाव और दूसरा है दिनचर्या। दिनचर्या अगर आप आज के युवा की देखोगे तो आप देखो उनका उठने का समय, खाना खाने का समय, ब्रेकफास्ट का समय, सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। इस पूरी प्रकृति में ह्यूमन बीइंग के अलावा सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है। जब आप अपनी रिदम को छोड़ते हो तो आप अपनी दिनचर्या को गड़बड़ा देते हो। इस बार की जो थीम है वो यही है कि तुम समग्रता से अपने जीवन को आनंदित तरीके से जी पाओ।
1: हम ये जानना चाहते हैं, एक आप आसान से कुछ क्या हमारे श्रोताओं को कोई आसन या कोई श्वास क्रिया ऐसी बता सकते हैं जिससे वो थोड़ा

0: तनाव मुक्त हो जाए।
1: योग के लिए सबसे पहला अभ्यास, और अभ्यास के लिए भी सबसे पहला, अगर आपके भीतर एक अर्जुन है, यू विल डेफिनेटली फाइंड वन कृष्णा। अगर आपके भीतर अर्जुन नहीं है तो आपको कृष्ण कभी नहीं मिलने वाले। तो जिज्ञासा एक विद्यार्थी का पहला लक्षण, पहली जिज्ञासा, और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उपयुक्त और उचित शिक्षक योग में। फिर आपको यहाँ पर फोर्सफुली कहूंगा, हल्के फुल्के में नहीं लें इसको, योग एक उचित शिक्षक के साथ में किया जाए। और पतंजलि योग सूत्र में भ्रांति दर्शन योग पथ की सबसे बड़ी बाधा कहा गया है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं उन सभी के लिए मैसेज है, योग केवल हाथ पैर हिलाना नहीं, एक उचित शिक्षक के सानिध्य में आप पूर्ण तरीके से अगर इसको सीखते हैं तो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आते हैं और आपके जीवन की दिनचर्या और आपके जीवन का उत्तम स्वास्थ्य दोनों लक्ष्य पूरे होते हैं। कुछ ऐसे प्राणायाम होते हैं जो बहुत आसान है, करे जा सकते हैं, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया। इनहेल इज गिविंग एनर्जी एंड एक्सहेलिंग इज ऑल टॉक्सिन्स आर गेटिंग आउट। तो श्वास लेना जीवन है और श्वास छोड़ना मृत्यु है। तो चाहे क्रॉनिक डिसेबिलिटेड पेशेंट हो, यंग हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हठ योग प्रति भी काम है। बिल्कुल स्पष्ट मेंशन है कि किसी भी एज ग्रुप में आप योग अपना सकते हैं, क्योंकि योग जीवन जीने की शैली है। इस जीवन शैली को ऐड कर लो जिसको हम कहते हैं योग, जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया, इन सब का एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहित आपका, कि योग को अपनाने और स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ने के आपने सूत्र बताए। श्रोताओं, आपको बता दें, कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग सहयोग सुदर्शन नाहर, तकनीकी सहयोग सुप्रिया बैनर्जी, संपादन रितिका गुप्ता, संयोजन जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग, ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी की। और प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थमने की संभावना, पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन विधानसभा में जमा करा सकेंगे। दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस सीटों पर जीत के आधार पर अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भाजपा ने वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। नामांकनों की कल जाँच की जाए। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे और आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। गौरतलब है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य निर्वाचित होने हैं, भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा समावेशी विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व और सक्रिय नागरिक भागीदारी द्वारा निर्देशित होना चाहिए। युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए श्री बिरला ने कहा कि शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का

0: आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 7 से 8 सालों में बढ़कर लगभग 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। ये अर्थव्यवस्था वर्तमान में 9 अरब डॉलर की है। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में दृष्टिकोण को लेकर जो बदलाव आया है वह बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव छोटे शहरों से आने वाले सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर्स की बढ़ती संख्या में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें कहा गया है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है।
1: यावत् चतस्रः प्रदिशश्चक्षुर् यावत् समश्नुते तावत् समैत्विन्द्रियं मयि तद्धस्ति वर्चसम्।
2: चारों दिशाओं के विस्तार व नेत्रों की दृष्टि शक्ति की जागरूकता से युक्त ऐसी समृद्धि हमें प्राप्त हो जहां प्रकृति के साथ पूर्ण संतुलन में रहकर पर्यावरण का संरक्षण हो और समस्त जीवन का सतत कल्याण सुनिश्चित हो।
0: भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद सीमांत जिलों में प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। सरहदी जिले जैसलमेर की जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि सीमा से सटे क्षेत्रों में अवैध निर्माणों का सर्वे कर उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे के दौरान सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई थी।
3: मंत्री महोदय ने, सीएम महोदय ने जो बैठक ली थी उसमें पांचों जिले जो हैं सीमावर्ती जिले उनके कलेक्टर एसपी के साथ बैठक थी, जिसमें बहुत क्लियर कट ये निर्देश दिए कि 0 से 15 किलोमीटर के दरमियान किसी भी तरीके का एंक्रोचमेंट है कि सबसे पहले तो उसका हमें पूरा सर्वे हमारे पास होना चाहिए और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि जो नियम विरुद्ध है तो उस पे कार्रवाई करने के लिए दिवाली पर्व से पहले ये हमें इसमें निर्देश दिए गए। निर्देश क्लियर है कि एंक्रोचमेंट हटने की कार्रवाई करनी है और उससे पहले एक सर्वे का कहा गया है तो सर्वे के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को हमने यहाँ से पाबंद कर दिया गया है कि सबसे पहले सर्वे है, सर्वे स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा और जैसे स्टेट से निर्देश मिलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। देश विदेश के 566 शहरों में एक पारी में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक ये परीक्षा ली जाएगी। NTA की जानकारी के अनुसार पंजीकृत उम्मीदवार अब अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजधानी में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को देखते हुए जयपुर पुलिस और जिला प्रशासन सतर्क मोड पर है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ राजीव पचार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कमिश्नरेट क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह की रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, लाठी, डंडा लेकर चलने पर रोक रहेगी। प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भड़काऊ, भ्रामक या सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित करने वाली सामग्री के प्रसारण पर भी नजर बनाए हुए है। इस बीच आज जिला

0: प्रशासन ने एहतियातन जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थम जाने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज से 11 जून तक तापमान में बढ़ोतरी होने और पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इस बीच पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 11 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बीकानेर सहित प्रदेश के कुछ शहरों में हल्की बारिश हुई। अजमेर में भी कई जगह पश्चिमी विक्षोभ के चलते देर रात धूल भरी आंधी के बाद मूसलाधार बारिश हुई।
1: कल दिन भर की गर्मी और उमस के बाद देर रात करीब 2 बजे से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं और तेज मूसलाधार बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि शहर में कई जगह पेड़ और सोलर पैनलों की प्लेटें होर्डिंग उड़ गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हालांकि आज सूर्योदय के साथ ही उमस फिर बढ़ने लगी है। नीलिमा धादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: जयपुर विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए भरतपुर में कल विशेष अभियान चलाकर करीब 14 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता के निर्देशन में जिला मुख्यालय सहित उज्जैन, छोकरवाड़ा, वैर, बयाना और रूपवास में ये कार्रवाई की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी की। और प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थमने की संभावना। पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग NCERT।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो अपनों के बिना अधूरी लगती है।
3: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर

0: 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
1: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
0: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
1: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
0: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
1: जी।
0: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
1: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
1: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
1: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
0: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
0: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
1: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
0: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
1: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
1: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
1: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
1: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जाँच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
0: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा।

0: भी आ जाए।
1: जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया?
0: नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी।
1: तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी

0: मुंह से गिर गई।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
2: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
3: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
1: राजा रवि वर्मा।
3: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
1: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
1: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया?
1: कोचू मंगला,
0: तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाव बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
2: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
3: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
4: मंगला
5: हाँ?
4: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
5: ठीक है।
4: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
5: हाँ हाँ।
4: उठाकर मुझे दे।
5: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
4: हाँ।
5: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
2: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
4: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
5: अरे वाह।
4: और ये इसकी पूंछ।
5: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
4: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
5: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
4: ओ, बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
5: ठीक है।
4: अब बना।
3: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
5: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।

0: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
1: ठीक है,
0: चल चल चल चल चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
1: चल चल
2: चल। कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
3: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने, देखो तो सही, पूछ उठा है, घोड़ा कैसा भाग रहा है।
4: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
6: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई।

0: और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा, इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज, गायन वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
1: अरे तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
0: महाराज इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
1: इसमें क्या परेशानी है, इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं, राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
0: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
1: आप निश्चिंत हो जाएं, समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। यह हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब यह हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेंसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेंसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
2: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें

0: मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
1: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए, और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग NCERT। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सुनेंगे नई फिल्मों से गीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है बेशरम। स्वर है श्रेया घोषाल और सोनू निगम के।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आशिकी 2 फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अंकित तिवारी के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है जिस्म 2। स्वर हैं के और श्रेया घोषाल के।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं आकाशवाणी हूं, 90 साल की आपकी आकाशवाणी।

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक।

और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

मर्डर टू फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, स्वर था हर्षित सक्सेना का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है बागी टू, स्वर हैं अंकित तिवारी और श्रुति पाठक के।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह का ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल पर। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है गदर, स्वर है प्रीति उत्तम और उदित नारायण के।

गदर फिल्म का गीत आपने सुना प्रीति उत्तम और उदित नारायण की आवाजों में। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 11 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंटवार्ता, भेंटकर्ता होंगी श्रीमती अनुप्रिया पटेल। आप सुनेंगे केंद्रीय मंत्री से उनकी भेंटवार्ता।

0: This is Akashvani. In the special series, 12 Years of the Modi Government, now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
1: Ye Akashvani hai. विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
2: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
3: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानते हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक, इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को

0: सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50 से 90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
1: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे न केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर
0: देखिए, भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हुए खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण लेकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास।
1: शायद कागज खो भी जाते हैं, हाँ, मिलते नहीं,
0: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है, और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी QR कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था, आज ये करने की जरूरत नहीं है। आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है, आप QR कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहां तक कि हेल्थ

0: के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल,
1: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा, हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहां पहुंचने में बहुत कठिनाई है, जहां शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया, इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी
0: बिल्कुल
1: उपलब्धि है
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया। उसका लाभ हमें यह हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो एआई सपोर्टेड, एआई ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहां पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास चार पांच स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पर इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल,

0: आज जो है भारत में 1,70,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं। जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
1: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए, तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है। और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है, यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
0: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
1: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है,
0: जी
1: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया, आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास हैं जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
0: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड-19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
1: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है, ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी की जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है, राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी

0: है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूं कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड-19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलियंट बनाने की जरूरत है।
1: जी,
0: यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने ये तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो, जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो।
1: मौजूद
0: इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है, तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब कोविड-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तब भी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से कोविड-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है,
1: बिल्कुल भी
0: आसान
1: नहीं।
0: लक्ष्य नहीं है।
1: जी,
0: और यहां तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत

0: दुनिया की चिंता करता है और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है, तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। यूएस हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयां पहुंचती हैं जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेस है, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है, तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है, और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है, और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान बीड़ी मसाला शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है, और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है,

0: 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे। और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है। और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है। और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना और साथ ही साथ पौष्टिक आहार।
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी, आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन स्पेशल सीरीज 12 ईयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट You were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094।
4: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय दिन के 11:32 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म का नाम है कारवां। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में कारवां फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत था आर डी बर्मन का। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म का नाम है भीगी पलकें। एमजी हसमत ने लिखा है गीत को, संगीत दिया है तिलक राज ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में धनवान फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम में कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए किशोर कुमार की ही आवाज़ में। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने को है आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जाँच से म्यांमार से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के

0: अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी इसी सभा में 12:10 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से आप सुनेंगे नाटक हस्ती कोख के आंसू। लेखक होंगे श्री सरताज नारायण माथुर। आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से ही हमारी इसी सभा में 12:40 पर, दोपहर 2:30 पर, शाम 6:05 पर, रात्रि 8:00 और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी दोपहर 1:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे ई शॉपिंग करते समय सावधानियां, गर्मी में खानपान का ध्यान, विश्व महासागर दिवस, समुद्री जीवन का परिचय, योग, तकनीक, आसन और लाभ। कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक वार्ता, सौंदर्य के क्षेत्र में रोजगार। वार्ताकार होंगी जयश्री पारीक। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे रसोई से कुछ रेसिपीज और कुछ ब्यूटी टिप्स।

युवा साथी अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान। कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघु जानकारी राष्ट्र निर्माण और युवा अनुच्छेद 249 लोकटक झेल जीडीपी जैसे विषयों पर। इसी के कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता योग जागे रोग भागे। वार्ताकार होंगे श्री भुवनेश कुमार पुरोहित। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का समय रहेगा शाम 6:40 आकाशवाणी जयपुर केंद्र से। ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत सुनेंगे शाम 7:00 आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे केंद्र सरकार का खेत बचाओ अभियान, खेत की गहरी जुताई करने के लिए टॉप 4 कृषि यंत्र, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और पशुओं की मिंगनी है उत्तम कार्बनिक खादें। कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत, मौसम की जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जानकारी।

शाम 7:45 पर और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोला बारू चैनल से।

0: ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है नाटक हस्ती कोख के आंसू। लेखक हैं श्री सरताज नारायण माथुर।
1: प्रस्तुत है नाटक हस्ती कोख के आंसू। लेखक हैं सरताज नारायण माथुर।

0: उठिए, चाय पी लीजिए। मैंने कहा चाय तैयार है।
1: तो इतना चिल्ला क्यों रही हो? सोने दो मुझे अभी।
0: आपने कहा था ना मुझे जल्दी जगा देना। 7 बजे की फ्लाइट से आपको जाना है, 6 बज चुके हैं।
1: ओहो, मेरा सूटकेस तैयार है।
0: जी हाँ, आप नहा लीजिए, तब तक मैं नाश्ता लगाती हूँ।
1: नहीं, रहने दो, नाश्ता मैं प्लेन में ही कर लूंगा।
0: लेकिन घर से भूखे पेट जाना, कुछ हल्का ही खा लीजिए।
1: मैंने कहा ना, रहने दो, मेरे जूते साफ कर दिए।
0: जी।
1: देखो ड्राइवर ने गाड़ी निकाली या नहीं।
0: देखती हूँ।
1: और सुनो, मेरा ब्रीफ केस कहाँ है?
0: ये रहा। कब तक आएंगे आप?
1: कभी भी आ जाऊंगा। और सुनो, तुम इस तरह टोका मत करो जाते वक्त, समझी? ड्राइवर से कहो सामान रखे गाड़ी में।
0: फिर वही तिरस्कार। पहले जब भी कहीं जाते थे तो कितने प्यार से विदा लेते थे।
1: काम खत्म होते ही अगली फ्लाइट से आ जाऊंगा। सच कहूं नीमा, मेरा तो दिल ही नहीं करता तुम्हें छोड़कर जाने का, पर क्या करूं।
0: नहीं नहीं, काम के लिए तो जाना ही होगा। फोन कीजिएगा पहुंचते ही।
1: अरे डार्लिंग, पहुंचते ही क्या, तुम्हें हर घंटे फोन किया करूंगा। वैसे नीमा, मैं सोचता हूँ अगली बार तुम्हें भी साथ लेकर जाया करूँ।
0: अच्छा जी, फिर घर का क्या होगा और माँ पिताजी को कौन संभालेगा?
1: क्यों, नौकर है तो?
0: अच्छा, वो बेटे बहू के साथ रहने आते हैं, नौकरों के नहीं। और मुझे भी इनकी सेवा करने का अवसर कब कब मिलता है।
1: अब तुमसे तो।
0: अच्छा अच्छा, छोड़िए भी, आपको देर हो रही होगी।
1: कोई देर नहीं हो रही, अभी कुछ समय है मेरे पास।
0: देखिए, आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी।
1: अच्छा ही होगा, हो जाने दो।
0: अरे अरे छोड़िए, क्या कर रहे हैं ड्राइवर। और धीरे धीरे सब कुछ जैसे पिघल गया। अब तो
1: तुम नौकरी करोगी? हरीश वर्मा की बीबी कुछ रुपयों के लिए किसी की नौकर कहलाएगी? नहीं, कभी नहीं। क्या कमी है तुम्हें इस घर में?
0: कोई कमी नहीं है, किंतु जब मैंने इतनी पढ़ाई की है तो क्यों ना इसका लाभ औरों के साथ बांटूं? कॉन्वोकेशन के बाद वाइस चांसलर ने खुद मुझसे कहा था, नीमा तुम कल से ही यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, तुम्हारी जैसी लेक्चरर से छात्रों को बहुत लाभ होगा। तुम्हारे जैसे मेहनती और होनहार विद्यार्थी कम ही होते हैं, तुम्हारी शिक्षा का लाभ औरों को भी तो मिलना चाहिए। उस समय मैं वो नहीं कर सकी, पर अब तो कर सकती हूँ।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती।
0: क्यों नहीं कर सकती? और वैसे भी मैं दिन भर घर में करूँ क्या, हर काम के लिए तो नौकर हैं।
1: तो निकाल देते हैं नौकरों को, घर का सारा काम अपने आप करोगी तो फिर ये फालतू की बातें दिमाग में नहीं आएंगी।
0: यानी सिर्फ गुलामों की तरह घर की चक्की में पिसती रहूं।
1: इससे अधिक तुम्हारी उपयोगिता है ही क्या इस घर में?
0: मेरी उपयोगिता तो बहुत अधिक है, किंतु मेरा दुर्भाग्य कि किसी ने उसे पहचाना ही नहीं, या यूं कहूं कि उसे पहचानने की, उसका सम्मान करने की किसी में पात्रता ही नहीं थी।
1: कहना क्या चाह रही हो तुम?
0: वो ही

0: जो आप समझ रहे हैं।
1: तुम अपनी सीमा लांघ रही हो।
0: बाध्य आप ही कर रहे हैं। मेरी क्षमता को पहचानने का, मुझे जानने का, मेरे अंतर में झांकने का प्रयत्न क्या कभी आपने किया है? नहीं, कभी नहीं। आप केवल अपने अहम के साथ जीते रहे। दूसरे के दर्द को बांटने का साहस ही नहीं था आप में। अपनी हीनता से ग्रसित आप केवल अपने पुरुष होने का दावा लिए सदैव मेरी दहलीज पर हुंकारते रहे।
1: अब तो हद हो गई, मैं और सहन नहीं कर सकता। नहीं, मेरा धीरज छूट रहा है।
0: अवश्य छूट रहा होगा। तो जाइए, दफ्तर में लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।

0: बीबी जी साहब गए क्या?
1: हाँ।
0: नाश्ता भी नहीं किया?
1: कहा रास्ते में कर लेंगे।
0: इधर हम मुंह अंधेरे से नाश्ता तैयार करने में जुटे हैं। चल भाई, बड़े लोगों की बड़ी बात।
2: हरीश, अरे ओ हरीश, कहाँ है बेटा? देख तो मैं आई हूँ और तेरे बाबूजी भी साथ आए हैं।
3: अरे अरे माँ जी, माँ जी आप? पाँव पड़ती हूँ पिताजी।
4: हाँ, सुखी रहो बेटा।
3: पाँव पड़ू माँ?
2: दूर, अरे दूर रह मुझसे, छूना मत मुझे।
4: हरीश की माँ?
2: चुप रहो जी तुम, अरे चल हट सामने से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
3: आइए बाबूजी, अंदर आइए। बाई, ओ बाई।
0: क्या है बीबी जी?
3: देख तो कौन आया है, जा जल्दी से पानी ले आ।
0: लीजिए बीबी जी।
3: लीजिए पिताजी पानी, लीजिए माँ जी।
2: बाई जा दूसरे गिलास में पानी लेकर आ। इसके हाथ का पानी पी लिया तो मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
0: माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं?
2: अरे तो क्या कुछ गलत कह रही हूँ, इस निपुति ने तो मेरे वंश को ही समाप्त कर दिया। एक ही तो बेटा है मेरा और इसके कारण वो भी निपुता, कहीं डूब भी तो नहीं मरती कि दूसरी ले आऊं। अब जा, खड़ी क्या है, मेरा मुंह क्या देख रही है? सामान उठा और अंदर रख। चलो जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे हट सामने से, हट।
0: माँ जी, ऐसे धक्का मत दीजिए बीबी जी को।
2: क्यों ना दूं? बोल, क्यों ना दूं?
0: लेकिन
3: तू चुप रह भाई, ये सामान ले जा अंदर वाले कमरे में।
2: सुन भाई, मेरे खाने पीने के किसी भी चीज को उस बांझ को मत छूने दीजियो।
0: माँ जी, हम देख रहे हैं आप जब से आई हैं बीबी जी को बांझ बांझ कही जा रही हैं।
2: आए हाय तो क्या कहूँ, पूतो वाली। अरे है वो ऐसा कहलाने लायक?
0: काए नहीं है, पर होए तो उसे पूत देने वाला कोई।
2: क्या बकवास कर रही है तो उसका मर्द?
0: ऐसा मर्द जिसका बीज ही खोखला है।
2: बीज ही खोखला है? बाई बहुत ही चक्कर चक्कर करती है तू, आने दे हरीश को।
0: हाँ हाँ आने दो हरीश को। अरे हमार का कर ले, हम साहब की जोरू नहीं है माँ जी, जो जब जी में आया धुन दिया। हम कहे देते हैं हमारे मुंह ना लगो, कहो अपने बिटवा से कि अपना इलाज करावे। हमारे बीबी जी में कोई खोट नहीं, दिखला दिया है डॉक्टर को, सारे चेक करवा लिए हैं, बांझ वो ना है, नपुंसक है तुहार बेटा। अब बैठो यहाँ और करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा।

0: बड़ी देर कर दी आपने।
1: माँ बाबूजी कहाँ हैं?
0: अंदर हैं, अपने कमरे में।
1: खाना खा लिया?
0: जी हाँ, गुप्ता जी के बच्चे कई बार आ चुके हैं।
1: क्यों?
0: दोपहर में फोन पर बताया था ना आपको, उनके छोटे बच्चे की जन्मदिन की पार्टी है आज।
1: मुझे नहीं जाना किसी की पार्टी वार्टी में, तुम्हें जाना हो तो जाओ।
0: कैसी बात करते हैं, पड़ोसी हैं वो, जन्म मरण के साथी, उनके यहाँ तो जाना ही होगा।
1: लेकिन मुझको वो आदमी बिल्कुल पसंद ही नहीं।
0: आपको क्या, पड़ोस में किसी को भी पसंद नहीं है, फिर भी पड़ोसी हैं तो मुस्कुरा कर मिलना तो पड़ता ही है।
1: ठीक है, मैं हाथ मुंह धो लूं।
0: रात का खाना भी वहीं है।
1: अच्छा
0: अच्छा, बच्चे के लिए कुछ प्रेजेंट लेकर आए हैं?
1: भूल गया मैं।
0: मैं जानती

0: वाह वाह, बड़े दिल खोल के पार्टी की गुप्ता जी ने, क्या जम के पिलाई। मेरी तो कुछ ज्यादा ही हो गई। मेरा कुर्ता पजामा कहाँ है?
1: रखा है पलंग के सहराने। आज बच्चों के साथ जब आप नाच रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था।
0: वो तो मोहल्ले के बच्चों ने जबरदस्ती पकड़ लिया। वैसे भी बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तुम तो जानती हो। जब भी स्कूल के बच्चे इधर से निकलते हैं, मुझसे टॉफी जरूर लेकर जाते हैं।
1: लोगों ने किस कदर तालियां बजाई थी आप लोगों के नाच पर।
0: वाकई बहुत मजा आया।
1: आपका दिल नहीं चाहता कि कभी बच्चों का ऐसा हल्ला गुल्ला, ऐसी पार्टी हमारे घर में भी हो?
0: ये तुम पूछ रही हो?
1: मेरी तो सारी शाम एक विचित्र घुटन, एक विचित्र तनाव में बीती। औरतों की अंदर तक कुरेदती दृष्टि ने तिलमिला दिया था मुझे। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। घर आ तकिए में मुंह छुपा रोने की इच्छा हो रही थी, पर जब आपकी ओर देखती थी तो सब कुछ जैसे धुल जाता था।
0: तौलिया बाथरूम में है?
1: जी हाँ है। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ?
0: हाँ कहो।
1: क्यों नहीं एक बार आप डॉक्टर से अपना चेकअप करा लेते।
0: मैं चेकअप करवा लूं? तुम्हारा मतलब मुझ में खोट है? मैं संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपना दोष मेरे सर मरते। अब तक मैंने तुमको बहुत सहा है, किंतु अब तो हती हो गई। सारे मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, दफ्तर वाले, यहां तक कि छोटे मोटे नौकर चाकर भी कहते हैं कि तुम बांझ हो। मुझे तुमसे छुटकारा पा दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। वो घर जो बच्चों की किलकारियों से गूंजना चाहिए था, शमशान की तरह सूना पड़ा रहता है केवल तुम्हारे बांझपन के कारण।
1: नहीं, मैं बांझ नहीं हूं। मैं बांझ नहीं हूं। मुझमें कोई खोट नहीं है। धरती उपजाऊ हो, उसमें उर्वरा हो, उष्णता हो, किंतु यदि बीज के खोखलेपन के कारण पौधा नहीं फूटे तो इसमें धरती का क्या दोष। मैं फिर एक बार आपसे विनती करती हूँ कि आप अपना चेकअप करवा इलाज करवा लीजिए।
0: तुम अपनी बकवास बंद करती हो या?
1: ये बकवास नहीं, सच है। अपने पुरुषत्व के अहंकार में अभी चाहे आप इसे ना स्वीकारें, किंतु
0: चुप हो जाओ।
1: छोड़िए, छोड़िए मेरे बाल। मैं कहती हूँ छोड़िए मेरे बाल।
0: चुप हो जा।
1: नहीं, मैं चुप नहीं होऊंगी, कभी नहीं।
0: नहीं
1: आ,
0: तो ये ले और निकल जा मेरे घर से। फिर कभी इस घर में पाँव रखा तो

0: आप जा रहे हैं बाबूजी?
1: हाँ बेटा, बहुत दिन हो गए यहाँ आए हुए। अब वहाँ का भी तो सब कुछ संभालना होगा।
0: हाँ सो तो है, किंतु आप वहाँ का सब कुछ सिमटा कर यहाँ हमारे पास रहने क्यों नहीं आ जाते?
2: हाँ बेटा, मैं भी तो इनसे यही कहती रहती हूँ।
3: माँ जी ठीक कहती हैं बाबूजी, आप यहीं आ जाइए ना सदा के लिए।
1: नहीं बेटा, तुम्हारी भावना का मैं सम्मान करता हूँ, किंतु जब तक शरीर चलता रहे मनुष्य को अपने ही बूते पर जीना चाहिए। यदि बिल्कुल ही अक्षम हो जाए तो तुम संभाल लेना।
0: ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपके जाने की व्यवस्था करता हूँ। नीमा
3: जी
0: सुनो, जरा इधर आओ।
3: जी कहिए।
0: माँ बाबूजी के खाने पीने का, रुपये पैसे का, कपड़े लत्तों का, सब का इंतजाम कर देना।
3: आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सब इंतजाम कर दिया है।
0: अच्छा बाबूजी, मैं जा रहा हूँ, ऑफिस जाकर गाड़ी भेज दूंगा।
1: अरे नहीं बेटा, हम भी तेरे साथ चलते हैं, हमें बस अड्डे उतार देना।
0: जैसी आपकी मर्जी, आइए।
2: माँ जी आप जा रही हैं?
4: हाँ, आपके रहने से बहुत रौनक थी, फिर कब आओगी माँ जी?
2: अरे अब यहाँ आकर क्या करूँगी, सूना घर ना बाल

0: ना बच्चा, हर वक्त की चिक चिक, बहू बेटे में मन मुटाव। इस घर की हवा में ऐसी घुटन है कि खुलकर सांस ही नहीं ली जाती। इससे तो हमारा वहां ही अच्छा है।
1: तो माँ जी, आप हमारे साहब को समझाती का ही नहीं, वो अपना इलाज करवा ले तो सब ठीक हो जाएगा।
0: अरे वो माने तब ना, एक दिन मैंने कही थी दबे स्वर में, वो तो मेरे से लड़ने ही लगा।
1: जाने भगवान ने मर्दों को इतना घमंडी क्यों बनाया है।
2: भाई, ओ भाई।
1: आई बीबी जी।

0: आती हूँ। ऐसे बार बार घंटे क्यों बजा रहे हो? क्या आसमान गिरने वाला है? अरे साहब, आप साहब, बीबी जी ने तो बताया था आप 2 दिन बाद आने वाले हैं।
1: हाँ, काम नहीं हो सका, जिससे मिलना था उसके परिवार में गमी हो गई।
0: चाय लाऊं साहब?
1: हाँ, एक प्याला कॉफी ले आ और नीमा को भेज।
0: बीबी जी तो डॉक्टर के यहाँ गई हैं।
1: डॉक्टर के यहाँ? क्यों, उसे क्या हो गया? हट्टी कट्टी तो है।
0: साहब, आप हमेशा ऐसी जली कटी बातें काहे किया करते हैं? क्या औरत को दुलारना नहीं सीखा आपने? मेरा मर्द तो परदेश से घर आते ही मुझसे लिपट जाता है, गालियां नहीं देता।
1: बच्चे दिए हैं, तूने उसको दो दो।
0: तो बीबी जी भी दे देंगी? आप तो
1: जा कॉफी बना कर ला, ज्यादा चकचक ना कर। और सुन, नीमा कौन से डॉक्टर के यहाँ गई है?
0: कह रही थी कि डॉक्टर नंदिनी के यहाँ जा रही हैं, उससे फोन पर बात भी हुई थी।
1: डॉक्टर नंदिनी, चनाना अस्पताल वाली?
0: ये तो पता नहीं साहब, पर डॉक्टर के घर गई हैं।
1: अच्छा, जा कॉफी बना ला। टेलीफोन डायरेक्टरी कहाँ है? कमाल है, कोई चीज ठिकाने पर नहीं। ये रहे, नंदिनी नंदिनी नंदिनी, हाँ ये रहा। डॉक्टर का नाम? हेलो हेलो, डॉक्टर नंदिनी? डॉक्टर साहब, मैं हरीश बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी नीमा यहाँ आई थी क्या? जी, कहाँ है वो? गई? डॉक्टर साहब, क्या हुआ है उसे? माँ बनने वाली है? कब? क्या, 6 महीने बाद? क्या वो निकल गई? ओ
0: साहब, कॉफी।
1: सुन, एक कॉफी और बना।
0: जी
1: हाँ जी।

0: नीमा, तुमने पहले ये क्यों नहीं बताया?
1: क्या होता उससे? आप दो गालियां ज्यादा दे देते।
0: गालियां देता? ये खुशखबरी सुनने के बाद हरगिज नहीं। मैं तो तुमको खूब खूब सारा प्यार देता। ओ नीमा नीमा नीमा, मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती तुम। मैं आज ही पिताजी को खबर कर देता हूँ, और हाँ, माँ को तुम्हारी देखभाल के लिए तुरंत बुला लेता हूँ। तुम्हें पूरा आराम करना चाहिए। क्या सोच रही हो तुम?
1: कुछ नहीं।
0: कुछ नहीं कैसे? कुछ तो सोच ही रही हो।
1: सच, कुछ नहीं।
0: अच्छा, इसका नाम क्या रखेंगे?
1: किसका?
0: बच्चे का।
1: क्या पता लड़का होगा या लड़की।
0: कुछ भी हो, नाम तो रखना ही होगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, लड़कों और लड़कियों के नामों की लिस्ट बना लेते हैं, फिर जो भी होगा वही नाम रख लेंगे। क्यों, ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है। वैसे आप क्या चाहते हैं, लड़का या लड़की?
0: मुझे बच्चा चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। और सुनो, ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास, उसे तुम्हें बहुत सहज कर रखना होगा।
1: आप निश्चिंत रहें, वो सुरक्षित है मेरे पास।
0: आज से तुम्हारा कहीं अकेले आना और जाना, काम करना, बोझ उठाना, सब बंद।
1: हाँ बंद।
0: भाई, ओ भाई।
2: जी साहब जी।
0: इधर आओ।
1: अब उसे क्यों बुला रहे हैं?
0: तुम्हें सहारा देकर चलेगी।
1: हद करते हैं आप भी, ऐसा भी कहीं होता है?
2: जी बाबूजी।
1: बाई, साहब का ब्रीफकेस अंदर ले जा।

0: अरे अरे अरे आइए आइए आइए गुप्ता जी, बहुत देर कर दी आने में, बच्चे केक काटने के लिए बेकरार हो रहे।
1: क्या बताऊं यार, जिस दिन भी किसी जरूरी काम से जाना होता है कोई ना कोई चक्कर हो ही जाता है। आज भी एक क्लाइंट आ गए अहमदाबाद से।
2: भाई साहब, भाभी जी किधर है?
0: वो उधर बच्चों को गेम्स खिला रही है। नीमा, ओ नीमा
3: जी,
0: मिस्टर और मिसेज गुप्ता आए हैं।
3: अरे नमस्कार भाई साहब, नमस्कार भाभी जी।
4: बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को।
3: धन्यवाद।
2: ये लीजिए आपके नन्हे के लिए।
3: अरे ये तकलीफ क्यों की आपने भाभी जी?
4: तकलीफ कैसी, इतनी बड़ी खुशी के मौके पर छोटा सा उपहार है।
3: चलिए अब, बच्चे कब से केक काटने का इंतजार कर रहे हैं।
2: हाँ चलिए, माँ भाभी जी आ गए क्या?
3: वो तो कई दिन पहले ही आ गए थे, यही बच्चे के पास में है। चलिए आप, चलिए हम सब मिलकर केक काटते हैं। आओ बिट्टू आओ।

0: देखो नीमा, किसी के बच्चे की ऐसी शानदार पार्टी नहीं हुई होगी जैसी बिट्टू की। शहर की कौन सी हस्ती नहीं थी यहाँ? कलेक्टर, एसपी, मिनिस्टर्स, शहर के सारे बिजनेस मैग्नेट, यहाँ तक कि मेरा बिजनेस राइवल चड्डा तक आया था। ओ नीमा, आई एम सो हैप्पी। मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकता। माँ कह रही थी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इस उम्र में मैं था। वही नाक नक्श, वही होंठ, वैसा ही हाथ पांव, वही मुस्कान।
1: अच्छा, माँ माँ कह रही थी?
0: और कौन कहेगा, इतने छोटे बच्चे को तो सबसे करीब माँ ही तो दिखती है, वही उसके बारे में सब कुछ जानती है।
1: अच्छा,
0: और क्या, माँ तो ऐसे कह रही थी जैसे कि बचपन वाला मैं और बिट्टू पास पास लेटे हैं और वो एक एक चीज का मिलान कर रही है, ये आंखें, ये नाक, ये होंठ और ये।
1: लेकिन एक बात कहूं आपसे?
0: कुछ मत कहो, कुछ मांगो मुझसे। आज तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। वैसे देखो, मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत हीरो का हार लाया हूं, लो पहन लो इसे। नहीं नहीं नहीं, मैं पहना देता हूं।
1: पहले वो बात कहूं?
0: पहले हार तो पहनाने दो। ओह नीमा,
1: इस बच्चे के पिता आप नहीं हैं।
0: ये क्या कह रही हो?
1: मैं ठीक कह रही हूं, ये बच्चा आपका नहीं है।
0: नहीं, ये झूठ है।
1: ये झूठ नहीं, सच है। ये बच्चा आपका अंश नहीं है। यद्यपि उपचार करवा लेते तो आप ऐसे किसी बच्चे के पिता हो सकते थे, किंतु आपके अहम को ये स्वीकार नहीं था। ये सिद्ध करने के लिए कि मैं बांझ नहीं हूं, बड़ी पीड़ा सहनी पड़ी है मुझे।
0: कौन है वो?
1: नहीं जानती।
0: क्या नाम है उसका?
1: नहीं जानती।
0: क्या करता है वो?
1: नहीं जानती।
0: कहाँ रहता है वो?
1: मैं नहीं जानती।
0: नाम, पता, घर बार, जब कुछ भी नहीं जानती तो फिर ये झूठ किस लिए? मुझसे बदला लेने के लिए?
1: हाँ, आपसे बदला लेने के लिए, लेकिन झूठ नहीं, सच है ये। याद है उस दिन जब हम गुप्ता जी के यहाँ से पार्टी से वापस आए थे? आज फिर तुमने मुझे मारा हरीश, ये समझकर कि मैं कमजोर हूं, तुम पर आश्रित हूं। परंतु ऐसा नहीं है हरीश, मैं कमजोर नहीं हूं, केवल संस्कारों की बेड़ियों ने मुझे जकड़ रखा है।

0: किंतु अब तुम्हारे अत्याचार सारी सीमाएं लांघ गए हैं। मैं अब और अत्याचार नहीं सहूंगी। स्त्री यदि अपने पर आ जाए तो वो बहुत सक्षम होती है हरीश, बहुत सक्षम होती है।
1: बीबी जी,
0: बाई तू अब तक जाग रही है?
1: मैं ही क्या बीबी जी, सारा पड़ोस जाग रहा है। बीबी जी, आप ये सब कैसे सह लेती हैं? मैं तो एक दिन भी बर्दाश्त ना करूं। आप कहेंगी परिवार की मर्यादा, अरे भाड़ में जाए ऐसी मर्यादा। अरे कोई अपनी घरवाली के साथ ऐसे जानवरों की तरह बर्ताव करे है? मेरा घरवाला मेरे साथ ऐसा करे तो मुंह झोस दूं उसका। अरे किसी बेकसूर की ऐसी सजा, ऐसा तो दुश्मन के साथ भी ना करें। और मैं कहूं बीबी जी, आप ऐसे घटिया मर्द को छोड़ का ही नहीं देती। आप जैसी सुंदर पढ़ी लिखी को तो एक नहीं हजार मिल जाएंगे।
0: अच्छा अब तू चुप कर, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है।
1: अरे सर तो फटेगा ही, ऐसे बाल खींचता है कोई? अरे दारू तो मेरा मर्द भी पीवे है पर ऐसे तो ना करता। अब देखो कैसे बेसुध पड़े हैं लाश की तरह।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, अब तो चुप हो जा, मैं जरा बाहर जा आती हूँ।
1: इस वक्त रात बहुत हो गई है बीबी जी।
0: खुली हवा लगने से ही सिरदर्द ठीक होगा। इस समय इस घर की हवा में तो सांस भी नहीं ली जा रही मुझसे।
1: बीबी जी बारिश भी हो सकती है, बादल गरज रहे हैं।
0: भाई तू सो जा।
2: इस बांझ के हाथ से पानी पीने से तो अच्छा है कि मैं प्यासी मर जाऊं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरीश को इस बांझ से छुटकारा पाके दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अरे इस बांझ ने तो मेरा परिवार ही नष्ट कर दिया। जो घर बच्चों की किलकारियों से गूंजना चाहिए था वो सूना पड़ा है इस बांझ के कारण। बांझ, इस बांझ के कारण, इस बांझ के कारण, इस बांझ के कारण।
3: कुछ नहीं है, दारू नहीं, रोटी नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है। कौन हो तुम?
0: मैं
3: आ जाओ इधर आ जाओ, बारिश से बच जाओगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
1: चलिए बीबी जी घर चलिए, रोइए मत बीबी जी, हिम्मत रखिए, बाबूजी तो दारू पीकर ऐसे ही हो जाते हैं। चलिए उठिए, मैं आपके कपड़े निकालती हूँ, आप कपड़े बदल कर सो जाइए।
0: उस दिन आपने मुझे घर छोड़कर जाने के लिए कहा था, आज मैं खुद ये घर छोड़कर जा रही हूँ।
4: तुम ये घर छोड़कर जा रही हो?
0: हाँ, सदा के लिए।
4: कहाँ?
0: पता नहीं, परंतु निश्चिंत रहो, भटकूंगी नहीं। कुछ करने की पात्रता है मुझ में। तुम्हारे कारण जो कुछ छोड़ा था उसे पुनः प्राप्त कर सकती हूँ मैं।
4: नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती।
0: ऐसे नहीं जा सकती तो कैसे जा सकती हूँ? इस बच्चे को छोड़कर तुम रखना चाहोगे इसे, जिससे ये हर पल तुम्हें तुम्हारे अधूरेपन का एहसास करवाता रहे? बोलो, रख पाओगे इसे? नहीं ना, मेरे पास तो अब भी ये तुम्हारी संतान के रूप में ही रहेगा। रात बहुत हो गई है, सो जाओ।
4: सुनो, क्या ये सब कुछ ऐसे ही नहीं रह सकता?
0: नहीं, अनेक बार तुमने मुझसे मुक्ति चाही थी, आज मैं सदैव के लिए तुम्हें मुक्त करती हूँ।
4: किंतु नीमा, नीमा।
0: जीवन को अपनी तरह से जीकर देख लो हरीश, शायद सुखी हो सको। मैं जा रही हूँ।
4: मत जाओ नीमा, रुक जाओ, रुक जाओ नीमा, रुक जाओ।
0: अब तुम मुझे नहीं रोक पाओगे हरीश, जा रही हूँ मैं।
4: रुक जाओ नीमा,
0: मैं जा रही।
4: रुक जाओ नीमा, नीमा रुक जाओ, रुक जाओ नीमा, नीमा रुक जाओ, नीमा नीमा रुक जाओ।
5: अभी आप सुन रहे थे नाटक हस्ती कोख के आंसू, लेखक थी सरताज नारायण माथुर, प्रतिभागी कलाकार थी सुरभित भारद्वाज,

0: ममता माथुर, अर्चना चौहान, रेणु सनाड्य, विवेक माथुर, मनु शर्मा और राजीव मिश्र। प्रस्तुति सहयोग बीना चतुर्वेदी और प्रस्तुतकर्ता H.S. व्यास।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12:40 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर महादेवन की आवाज में। फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। गीत के बोल हैं जावेद अख्तर के, संगीत है शंकर, एहसान और लॉय का।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए अखिल सचदेव और मनशील गुजराल की आवाजों में। फिल्म का नाम है बद्रीनाथ की दुल्हनिया। गीत के बोल हैं अखिल सचदेव के, संगीत दिया है गीत के बोल हैं शब्बीर अहमद के, संगीत दिया है अखिल सचदेव ने।

जिनकी आवाज़ में आपने सुना यंगिस्तान फिल्म का ये गीत। कौसर मुनीर के लिखे बोलों को संगीत दिया था जीत गांगुली ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है जख्म। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया है MM क्रीम ने।

0: अलका याग्निक की आवाज में गाए जख्म फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिन के 1 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर केंद्र से।
1: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी

0: दिन है। दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन विधानसभा में जमा करा सकेंगे। दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों ने अपने नाम पत्र दाखिल कर दिए हैं। भाजपा के उम्मीदवार सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने आज अपने नामांकन प्रस्तुत किए। नामजदगी का पर्चा दाखिल करने के बाद दोनों नेता पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उधर कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नामांकनों की कल जांच की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे और आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नकली बीज प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपी बीज निगम के निदेशक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। एसीबी ने बताया कि आरोपियों ने एक बीज कंपनी के जब्त बीजों को गुजरात भेजे जाने की एवज में कंपनी से 1,20,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सूचना मिलने पर एसीबी की टीम ने आरोपी को बीकानेर के लूण करणसर से बस से उतार गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 85,00,000 रुपए की अवैध धनराशि बरामद की गई। एसीबी ने बीज निगम के निदेशक के घर छापा मारा, जहां से 1,50,000,000 रुपए की राशि भी जब्त की गई। प्रदेश भर में पीने के पानी की उपलब्धता के लिए चलाए जा रहे अभियानों के तहत 5 मई से 6 जून तक 19,000 से अधिक पेयजल समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान हैंडपंप मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज, कम दबाव के साथ पानी और अनिश्चित जलापूर्ति की शिकायतों का समाधान किया गया। इसके अलावा करीब 7,500 सुधारात्मक कार्यों के जरिए पेयजल व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया। इस दौरान 6 जून को एक दिन में 3,000 से अधिक कार्य संपन्न करवा के लोगों को राहत दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पेयजल व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए विशेष अभियान 30 जून तक लगातार जारी रहेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजधानी जयपुर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज शहर के जगतपुरा और मालवीय नगर क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन सख्त कदम उठाए हैं। जेडीए दस्ते के साथ भारी संख्या में पुलिस बल और आरएसी का जाप्ता शामिल रहा। विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। कमिश्नरेट क्षेत्र में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई हैं। प्रदेश में हाल ही में आए आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हुए विद्युत तंत्र को सुचारू करने के लिए सभी विद्युत वितरण निगम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवर लाल डेलू ने बताया कि सरहदी और पश्चिमी जिलों में बिजली आपूर्ति की समीक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस बीच डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों ने जैसलमेर जिले के फतेहगढ़, चांदन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद लक्ष्य में बढ़ोतरी किए जाने से किसानों को राहत मिली है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के जिलों में किसान सरकार के इस फैसले से उत्साहित है और मंडियों में गेहूं बेचान के लिए पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम रतन सौकरिया ने बताया कि जिले का कुल गेहूं खरीद लक्ष्य बढ़कर 8.75 लाख मीट्रिक टन हो गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:05 हुए हैं। महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज प्रस्तुत करता है मीनाक्षी स्वर्णकार और वीणा ओझा।

0: कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं,
1: निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
0: अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां केवल कविता नहीं बल्कि जीवन का संदेश है। समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है और हमें भी जागरूकता, स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि आज की महिला केवल घर की जिम्मेदारियां ही नहीं निभा रही बल्कि डिजिटल दुनिया में भी अपनी पहचान बना रही है, परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रही है और पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी भूमिका निभा रही है।
0: तो आज का महिला जगत भी कुछ ऐसे ही रोचक और उपयोगी विषयों से सजा है, जिसे लेकर आई है आपकी दो रेडियो सखियां, मैं मीनाक्षी स्वर्णकार
1: और मैं वीणा ओझा।
0: तो कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार। तो बहनों, आज के विषय होंगे, एक क्लिक में घर बैठे खरीदारी तो हो जाती है लेकिन क्या हम ई शॉपिंग करते समय जरूरी सावधानियां बरतते हैं,
0: और जब बाहर सूरज आग बरसा रहा हो तब हमारी थाली में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। बात करेंगे गर्मी में खान पान के सही चुनाव की।
1: और फिर चलेंगे धरती के उस विशाल संसार की ओर जो हमारी आंखों से भले दूर हो लेकिन जीवन के लिए बेहद जरूरी है। अवसर है विश्व महासागर दिवस का, तो जानेंगे समुद्री जीवन के अद्भुत संसार के बारे में।
0: और दिन भर की भागदौड़ के बीच अगर शरीर थक जाए और मन उलझ जाए तो समाधान भी है हमारे पास। चर्चा होगी योग की तकनीकों, आसनों और उनके लाभों की।
1: तो ज्ञान की बातें होंगी, सेहत के नुस्खे होंगे, जागरूकता का संदेश होगा और साथ होगा मधुर गीत संगीत का।
0: तो चलिए सुनते हैं।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: वीणा, कभी तुमने सोचा है कि अगर समुद्र बोल पाता तो हमसे क्या कहता?
5: शायद यही कहता कि मेरी लहरों को तो सब देखते हैं, लेकिन मेरी गहराइयों में बसने वाली दुनिया को बहुत कम लोग जानते हैं।
4: बिल्कुल बहनों, समुद्र की सतह पर तो हमें सिर्फ पानी दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी दुनिया बसती है जो किसी जादुई नगर से कम नहीं है।
5: वहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, विशाल काय व्हेल है, चंचल डॉल्फिन है, समुद्री कछुए हैं, ऑक्टोपस है, और न जाने कितने ऐसे जीव हैं जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे प्रकृति ने अपनी कल्पना के सारे रंग वहीं बिखेर दिए हों।
4: और यही कारण है कि महासागर सिर्फ पानी का विशाल भंडार नहीं, बल्कि जीवन का एक अनमोल खजाना है। और इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है।
5: और बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी धरती का लगभग 70% हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है। इतना ही नहीं, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा भी समुद्री पौधों और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है।
4: यानी महासागर हमसे हजारों किलोमीटर दूर हो, फिर भी हमारी हर सांस से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। समुद्र की दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी है। वैज्ञानिक आज भी समुद्र

0: की गहराइयों में नए नए नए जीवों और रहस्यों की खोज कर रहे हैं।
1: लेकिन बहनों, दुख की बात ये है कि प्लास्टिक कचरा, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जीवों का जीवन खतरे में पड़ता जा रहा है। कई बार समुद्री जीव प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनकी जान तक चली जाती है।
0: इसीलिए महासागरों की रक्षा केवल समुद्र किनारे रहने वालों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: अगर हम प्लास्टिक का कम उपयोग करें, कचरा इधर उधर न फैलाएं और पर्यावरण संरक्षण को अपनी आदत बनाएं, तो हम भी समुद्री जीवन की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं।
0: क्योंकि महासागर सिर्फ जल नहीं है, वे जीवन है, संतुलन है और हमारी धरती की धड़कन है।
1: बहनों, लहरों की भाषा को समझें, प्रकृति का सम्मान करें। नीले सागर जीव अनोखे, आओ मिलकर इनका मान करें।
0: तो बहनों, विश्व महासागर दिवस पर आइए हम सभी प्रकृति के इस अनमोल उपहार को बचाने का संकल्प लें।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
0: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: और वीणा, अब हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, वो हम सभी महिलाओं का फेवरेट विषय है, शॉपिंग।
1: बिल्कुल मीनाक्षी, उसमें तो बड़ा ही मजा आता है।
0: और वीणा, पहले कितना मजा आता था ना कि शाम के समय हम घर के काम से फ्री होकर बाजार के लिए थोड़ा समय निकालते थे।
1: हाँ मीनाक्षी, बिल्कुल मजा आता था। चाहे पड़ोस वाले भाभी जी के साथ जाना हो, बड़ी वाली बहन या ननंद, किसी के भी साथ बाजार जाते थे, बड़ा मजा आता था। और फिर इतनी सारी साड़ियाँ देखने के बाद कोई एक पसंद आती थी, लेकिन पूरे रास्ते बड़ा मजा आता था। कुछ अपने मन की बातें हो जाती थी और साथ ही थोड़ा सा टहलना भी हो जाता था।
0: बिल्कुल, कुछ घर परिवार की बातें कर लेते थे। बिल्कुल। लेकिन आजकल क्या है, बाजार जाने की जरूरत भी कम होती जा रही है भाई, क्योंकि मोबाइल में ही पूरी दुनिया से मट गई है। अब तो बस मोबाइल उठाइए, पसंद कीजिए और सामान घर तक पहुंच जाता है।
1: बिल्कुल मीनाक्षी, कपड़े हो, किराने का सामान हो, बच्चों के खिलौने हो या घर की सजावट का सामान हो, सब कुछ बस एक क्लिक करो और आपके सामने वो आपके घर पर उपलब्ध हो जाता है।
0: बिल्कुल, लेकिन वीणा, कहते हैं ना कि जहाँ सुविधाएं होती है वहाँ थोड़ी सावधानी भी जरूरी होती है, क्योंकि ऑनलाइन खरीदारी में छोटी सी लापरवाही कभी कभी नुकसान का कारण बन सकती है।
1: और कई बार तो ऐसा भी होता है कि तस्वीर में जो चीज दिखाई देती है वो घर पहुंचने के बाद वैसी बिल्कुल भी नहीं निकलती है।
0: और मेरी एक सहेली ने ना ऑनलाइन साड़ी मंगवाई थी। तस्वीर देखकर तो यूं लग रहा था कि जैसे शादी ब्याह में पहनते ना वैसी हैवी साड़ी होगी, लेकिन जब पार्सल आया और कपड़े को खोला तो उसके रंग, गुणवत्ता और ये कपड़ा तीनों ही उम्मीद से एकदम अलग निकले।
1: इसलिए बहनों, ई शॉपिंग करते समय सबसे पहले वेबसाइट या ऐप की विश्वसनीयता जरूर जांच लें, क्योंकि किसी भी अनजान लिंक या सोशल मीडिया पर आए हर विज्ञापन पर भरोसा हमें नहीं करना चाहिए।
0: और अगर कोई सामान बहुत ज़्यादा छूट पर मिल रहा हो तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। कई बार क्या होता है, बहुत आकर्षक ऑफर लोगों को ठगी का शिकार बना देते हैं। तो खरीदारी करने से पहले उत्पाद की पूरी जानकारी पढ़ें, उसका आकार, रंग, वजन, सामग्री और उपयोग से जुड़ी बातें ध्यान से देख लें।
1: और साथ ही ग्राहक समीक्षाएँ यानी कि व्यू पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिन लोगों ने पहले वो सामान खरीदा है उनका अनुभव आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है।
0: और भुगतान करते समय भी विशेष सावधानी रखें, सुरक्षित पेमेंट विकल्प का ही उपयोग करें और अपना OTP, पासवर्ड या बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ भी साझा ना करें।
1: और साथ ही बहनों, ये भी याद रखिए कि कोई भी बैंक या कंपनी फोन करके OTP नहीं मांगती है, यदि कोई ऐसा करता है तो तुरंत सावधान हो जाइए।
0: और एक जरूरी बात कि खरीदारी के बाद मिलने वाले बिल, ऑर्डर नंबर और भुगतान की जानकारी को भी संभाल कर रखें। यदि किसी तरह की समस्या आती है तो यही जानकारी आपके काम आएगी।
1: और हाँ बहनों, सामान मिलने पर उसे तुरंत जांच लें, ताकि यदि कोई कमी हो तो समय रहते उसकी शिकायत या रिटर्न भी किया जा सके। बहनों, ऑनलाइन खरीदारी आज की जरूरत और सुविधा दोनों है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी और सतर्कता इसे और सुरक्षित बना सकती है।
0: इसलिए अगली बार जब भी आप ई शॉपिंग करें तो उत्साह के साथ साथ थोड़ी सावधानी भी जरूर रखिए, क्योंकि समझदारी से की गई खरीदारी ही सही खरीदारी है। और आइए अब सुनवाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, जैसे अभी हमने बात की थी कि ई शॉपिंग के बारे में, तो शॉपिंग करना और सौंदर्य करना ये तो महिलाओं का हक भी है और उनको बहुत शौक भी होता है इसका। लेकिन वो कहते हैं ना कि महिलाओं है जो वो हर शौक को अपना रोजगार भी बना सकती है ना, अपना पैसन भी बना सकती है। तो आपके इसी पैसन के बारे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारियाँ। तो इसके विषय में हम सुनाएंगे आपको एक वार्ता, जिसकी वार्ताकार है जयश्री पारिक और वार्ता का विषय है सौंदर्य के क्षेत्र में रोजगार।
3: आज के परिप्रेक्ष्य में सौंदर्य यानी ब्यूटी ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत रोजगार की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ये रचनात्मकता से भरपूर क्षेत्र है। सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप साक्षर भी नहीं हैं तो भी इसका किसी निजी सैलून से अनुभव और ट्रेनिंग लेकर भी आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। यदि आपने कम से कम 10वीं पास की हुई है तो आप कई सरकारी संस्थानों से भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप ग्रेजुएट हैं फिर तो सोने पे सुहागा। इस क्षेत्र में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्रकार के कोर्स होते हैं। लॉन्ग टर्म का कोर्स करने से आपको ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको बेसिक से एडवांस तक सब कुछ सिखाया जाता है। इसके

बाद किसी भी अच्छे सैलून में आपको नौकरी आसानी से मिल जाती है। भारत में भी कई इंटरनेशनल एकेडमी हैं जहां इंटरनेशनल कोर्स करवाए जाते हैं। इनसे कोर्स करने पर आपको 100% जॉब मिलने के साथ साथ इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, जो भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी मान्य होते हैं। इसी सौंदर्य के क्षेत्र में अब बहुत तरह तरह के कोर्स होने लग गए हैं, इसलिए अपनी योग्यता और रुचि के अनुरूप उस कोर्स में आप स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। बाकी आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि आप एक से अधिक किन किन कोर्स में पारंगत होना चाहते हैं। आप इनमें से चाहे जितने कोर्सों के विकल्पों का चयन कर सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स होते हैं, जैसे ब्यूटिशियन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, नेल आर्टिस्ट, परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट, स्पा थेरेपिस्ट, हेयर एक्सटेंशन एक्सपर्ट, मेहंदी आर्टिस्ट, टैटू आर्टिस्ट।

0: रीड करते टाइम आप ऑफ माइक हो रहे हो ना, नीचे
1: अच्छा
0: जाते जा रहे हो ना,
1: अच्छा नीचे
0: आप,
1: जाते
0: हाँ,
1: थोड़ा
0: आप तो
1: मार्क।

आज के परिप्रेक्ष्य में सौंदर्य यानी ब्यूटी ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत रोजगार की बहुत ही ज्यादा संभावना है। ये रचनात्मकता से भरपूर क्षेत्र है। सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप साक्षर भी नहीं हैं, तो भी इसका किसी निजी सैलून से अनुभव और ट्रेनिंग लेकर भी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। यदि आपने कम से कम 10वीं पास की हुई है, तो आप कई सरकारी संस्थानों से भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप ग्रेजुएट हैं, फिर तो सोने पे सुहागा। इस क्षेत्र में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्रकार के कोर्स होते हैं। लॉन्ग टर्म का कोर्स करने से आपको ज्यादा सीखने को मिलता है। उसका फायदा ये होता है कि इसमें आपको बेसिक से एडवांस तक सब कुछ सिखाया जाता है। इसके बाद किसी भी अच्छे सैलून में आपको नौकरी आसानी से मिल जाती है। भारत में भी कई इंटरनेशनल एकेडमी है जहाँ इंटरनेशनल कोर्स करवाए जाते हैं। इनसे कोर्स करने पर आपको 100% जॉब मिलने के साथ साथ इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, जो भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी मान्य होते हैं। इसी सौंदर्य के क्षेत्र में अब बहुत तरह तरह के कोर्स होने लग गए हैं, अतः अपनी योग्यता और रुचि के अनुरूप उस कोर्स में आप स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। बाकी आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि आप एक से अधिक किन किन कोर्स में पारंगत होना चाहते हैं। आप इनमें से चाहे जितने कोर्सों के विकल्पों का चयन कर सकते हैं। कोर्स इस तरह से होते हैं: ब्यूटिशियन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, नेल आर्टिस्ट, परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट, स्पा थेरेपिस्ट, हेयर एक्सटेंशन एक्सपर्ट, मेहंदी आर्टिस्ट, टैटू आर्टिस्ट। ब्यूटिशियन, ब्यूटिशियन कोर्स 1 साल से लेकर 15 महीने तक का होता है। इसे बेसिक ब्यूटिशियन कोर्स कहते हैं। इसमें फेशियल, ब्लीच, डिटेन, हेयर स्पा, मैनी पेडिक्योर, आईब्रो बनाने के साथ साथ सेल्फ मेकअप और सेल्फ हेयर स्टाइलिंग की जानकारी देते हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजी ऐसा कोर्स है

जिसमें वैज्ञानिक तथ्यों के साथ साथ सौंदर्य के विषय में जानकारी दी जाती है। ये बेसिक ब्यूटिशियन कोर्स के बाद एडवांस कोर्स है। इसमें त्वचा के अनुरूप फेशियल, ब्लीच और डिटेन की जानकारी दी जाती है। इसी प्रकार हेयर का काम भी उसके टेक्सचर के अनुसार सिखाया जाता है। यही बात वैक्सिंग पर भी लागू होती है कि त्वचा और शरीर के बालों की ग्रोथ के हिसाब से कैसे वैक्सिंग की जाती है, इसका ज्ञान दिया जाता है। इस कोर्स की अवधि 2 वर्ष के करीब होती है, जिसमें ब्यूटिशियन का बेसिक और कॉस्मेटोलॉजी का सम्मिश्रण होता है। मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आपको किसी प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त संस्थान से या किसी कुशल मेकअप आर्टिस्ट से प्रशिक्षण लेना होता है। इसमें भी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और एडवांस डिप्लोमा कोर्स करवाए जाते हैं। इस कोर्स में आपको स्किन की जानकारी, कलर व्हील की जानकारी, मेकअप की टेक्निक और ट्रेंड के साथ साथ मेकअप के उत्पादों और उपकरणों की भी जानकारी दी जाती है। इस कोर्स को करने के बाद आप ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, फोटोशूट मेकअप, मीडिया मेकअप लाइन में भी जा सकते हैं। ये करीब करीब 3 महीने का कोर्स होता है। हेयर आर्टिस्ट का काम व्यक्ति के पेशे और पर्सनैलिटी के अनुरूप बालों को काटने और स्टाइलिंग करने का, साथ ही उसके कलर करने और ट्रीटमेंट करने का होता है। इसके अंदर भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और मास्टर्स कोर्स होते हैं, जो 1 महीने से लेकर 1 साल की अवधि तक के होते हैं। नेल आर्टिस्ट नाखूनों की सज्जा, देखभाल और उसके सौंदर्य का काम करते हैं। नेल आर्टिस्ट का काम नाखूनों को अलग अलग नेल पेंट, ग्लिटर, स्टोन, फ्लावर्स, इन सभी चीजों से सजाना होता है। ये नेल एक्सटेंशन का भी काम करते हैं, जिसमें कृत्रिम या नकली नाखूनों को लगाया जाता है। पहले 2-4 दिन में नेल पेंट उतर जाते थे, लेकिन अब जेल और एक्रेलिक जैसे नेल पेंट लंबे समय तक टिकने वाले मार्केट में आ गए हैं। एक नेल आर्टिस्ट का काम नाखूनों के बाहरी सौंदर्य के साथ साथ मैनी पेडिक्योर के माध्यम से हाथ पैरों की मालिश और कमजोर नाखूनों की देखभाल के लिए जानकारी देना भी होता है। इसमें भी सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा और प्रोफेशनल टेक्नीशियन के कोर्स होते हैं, जिनकी अवधि मात्र 5 दिन से लेकर के 6 महीने तक होती है। परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट वो होते हैं जो सौंदर्य को लंबे समय तक टिकाए रखने का काम करते हैं। इनका काम पतली और हल्की आईब्रो को मनचाहा शेप देना, आंखों पर आईलाइनर बनाना, होठों को मनचाहा रंगना, स्किन पर काले या सफेद धब्बों को छुपाना, हेयर लाइन को टैटू से सही आकार देना, चेहरे पर तिल का निशान बनाना जैसे काम करते हैं। परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट एक ऐसा करियर है जिसमें कला, सुंदरता और विज्ञान तीनों का ज्ञान जरूरी है। इसके अंदर भी सर्टिफिकेट इन परमानेंट मेकअप, डिप्लोमा इन माइक्रो पिगमेंटेशन और एडवांस परमानेंट मेकअप टेक्निक जैसे कोर्स होते हैं, जिनकी अवधि भी 7 दिन से लेकर के 6 महीने के करीब होती है। स्पा थेरेपिस्ट मन और शरीर को आराम दिलाने के साथ साथ स्किन ट्रीटमेंट का भी काम करते हैं। ये सिर से लेकर पांव तक आराम देने वाली थेरेपी होती है। इसमें सुगंधित अरोमा तेलों के माध्यम से त्वचा की सफाई और मांसपेशियों के रक्त प्रवाह को बढ़ाने और त्वचा को डिटॉक्स करने जैसे काम किए जाते हैं। इसमें भी सर्टिफिकेट इन स्पा थेरेपी, डिप्लोमा इन बॉडी मसाज एंड वेलनेस और एडवांस डिप्लोमा इन स्पा एंड आयुर्वेद थेरेपी के कोर्स होते हैं। इनकी अवधि कम से कम 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की होती है। हेयर एक्सटेंशन एक्सपर्ट। हेयर एक्सटेंशन में नकली और असली बालों के स्ट्रैंड्स जोड़े जाते हैं, ताकि बाल प्राकृतिक रूप से खूबसूरत दिखाई दे। इसमें बालों की प्रकृति के हिसाब से टेप इन, क्लिप इन, माइक्रो रिंग, कैरोटिन बॉन्डेड सिखाए जाते हैं। इसके साथ ही हेयर यानी बालों से समय समय पर उन्हें सुरक्षित तरीके से निकालने, मेंटेनेंस करने और बालों की देखभाल करने की पूरी जानकारी दी जाती है। इस कोर्स को 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में कर लिया जाता है। इसके कोर्स भी बेसिक हेयर एक्सटेंशन, एडवांस हेयर एक्सटेंशन और मास्टर्स के होते हैं। मेहंदी आर्टिस्ट वो होता है जो हाथों, पैरों या शरीर के अन्य भागों पर विभिन्न प्रकार की मेहंदी लगाता है। इस कोर्स में मेहंदी से संबंधित पूर्ण जानकारी दी जाती है। यदि आप निरक्षर या साक्षर भी हैं, तब भी इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें मेहंदी की भिन्न भिन्न किस्मों के बारे में जानकारी से लेकर कोन बनाना तक भी सिखाया जाता है। साथ ही सिंपल, अरेबिक, इंडियन, ब्राइडल और फ्यूजन जैसे मेहंदी

डिजाइन्स सिखाए जाते हैं। टैटू आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट शरीर के अलग अलग अंगों के ऊपर परमानेंट शाही के माध्यम से व्यक्ति जिस तरह की अपनी इच्छा जाहिर करता है उसके अनुरूप आकृतियों को उकेरता है। और अभी टैटू का व्यवसाय भी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। ये कोर्स भी करीब एक महीने का होता है। सौंदर्य के क्षेत्र में यदि आप भविष्य बनाने की सोच रहे हैं तो आप में अच्छी शारीरिक ऊर्जा, धैर्य, विनम्र व्यवहार और ग्राहक सेवा कौशल जैसे गुणों का होना बहुत ही जरूरी है।

0: सौंदर्य के क्षेत्र में यदि आप भविष्य बनाने की सोच रहे हैं तो आप में अच्छी शारीरिक ऊर्जा, धैर्य, विनम्र व्यवहार और ग्राहक सेवा कौशल जैसे गुणों का होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही आप जिन भी उपकरणों या संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वो पूरी तरह से सैनिटाइज्ड होने चाहिए। आपको ग्राहक की स्किन एलर्जी या हेल्थ कंडीशन की जानकारी भी होना बहुत जरूरी होता है। आप में रचनात्मकता और ट्रेंड के साथ साथ निरंतर सीखने की भावना भी होनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में ही नहीं विदेशों में भी ब्यूटी एक्सपर्ट्स की भारी मांग है। इसमें आप फ्रीलांसर से लेकर के अपना स्वयं का सैलून खोलकर अच्छा खासा कमा सकती हैं। इसके साथ ही आपकी योग्यता के अनुरूप आप टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन शो, इवेंट्स, सेल्स मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेमो, ब्यूटी ट्रेनर में भी रोजगार पा सकती हैं। आज का युग सोशल मीडिया का युग है, पर अपनी वर्क गैलरी दिखाकर क्लाइंट्स बना सकते हैं। साथ ही अपने खुद के ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम या वेबसाइट से प्रोफेशनल छवि बना सकते हैं। इन्फ्लुएंसर बनकर भी आप ब्रांड प्रमोशन और विज्ञापन से भी कमाई कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के साथ फीडबैक सिस्टम भी रखें। भारत में ब्यूटी कोर्स के बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, पंजाब, हिमाचल, ये ऐसे स्थान हैं जहां पर प्रसिद्ध कंपनियों के संस्थानों ने अपने प्रशिक्षण सेंटर खोल रखे हैं। यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोर्स करके यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो कनाडा, यूएसए, यूके, दुबई में भी आप अच्छी से अच्छी नौकरी पा सकते हैं। फ्रीलांसर से अपना काम शुरू करके आप आसानी से महीने के 20,000 से लेकर के विदेशों में 20 लाख तक भी कमा सकते हैं। ये सभी आपकी रचनात्मकता, प्रशिक्षण संस्थान और योग्यता पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सौंदर्य का क्षेत्र केवल बाहरी सुंदरता से ही नहीं, आत्मविश्वास, करियर और सशक्तिकरण से भी जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा पेशा है जिसमें रचनात्मकता और कुशलता से आप नाम, पैसा और संतोष तीनों प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो सखियों, अभी हमने सुनी वार्ता सौंदर्य के क्षेत्र में रोजगार। वार्ताकार थी जयश्री पारिक और अब सुनते हैं कार्यक्रम में एक और मधुर गीत।

0: वीणा, कभी कभी लगता है ना कि दिन के 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। सुबह की शुरुआत जिम्मेदारियों से होती है और रात तक भागते दौड़ते पता ही नहीं चलता कि हमने अपने लिए कितना समय निकाला।
1: बिल्कुल, ये भाग दौड़ उसी होती ही ऐसी है कि ये 24 घंटे भी हमें वाकई में बहुत कम लगने लग जाते हैं मीनाक्षी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस भाग दौड़ में शरीर इतना थक जाता है और मन इतना उलझ जाता है कि चेहरे की मुस्कान भी कहीं खो सी जाती है।
0: लेकिन सोचिए, अगर दिन की शुरुआत सिर्फ 15 मिनट खुद के लिए की जाए तो कैसा रहे? 15 मिनट जो न सिर्फ शरीर को ऊर्जा दे बल्कि मन को भी सुकून दे,
1: और उन 15 मिनटों का नाम है योग।
0: तो बहनों, योग सिर्फ हाथ पैर मोड़ने या व्यायाम करने का नाम नहीं है। योग खुद से जुड़ने का एक माध्यम है। जब शरीर, मन और सांस एक लय में आ जाते हैं तभी योग का असली अनुभव होता है।
1: और इसीलिए तो कहा गया है कि योग केवल जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है।
0: योग शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे योग हमेशा खुले, स्वच्छ और शांत वातावरण में करें। पेट हल्का हो और मन भी शांत हो तो योग का लाभ अधिक मिलता है।
1: और अगर आप योग की शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ सरल आसनों से शुरू कर सकती हैं, जैसे ताड़ासन। यह शरीर के संतुलन को बेहतर बनाता है और रीढ़ को मजबूत करता है।
0: और इसके साथ ही वृक्षासन भी बहुत अच्छा आसन है। एक पैर पर खड़े होकर किया जाने वाला यह आसन हमें संतुलन और एकाग्रता सिखाता है। जैसे पेड़ आंधियों में भी डटा रहता है, वैसे ही यह आसन हमें मानसिक मजबूती का संदेश देता है।
1: और अगर दिन भर की थकान दूर करनी हो तो संवासन से बेहतर कुछ नहीं है। इसमें शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दिया जाता है और कुछ ही मिनटों में मन को अद्भुत शांति महसूस होती है।
0: और बहनों, योग का सबसे बड़ा लाभ है कि ये हमें सिर्फ स्वस्थ नहीं बनाता बल्कि तनाव को कम करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और जीवन के प्रति हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण देता है।
1: और आज जब हर कोई तनाव, अनिद्रा और थकान की बात करता है तब योग एक ऐसा साथी बनकर सामने आता है जो बिना किसी दवा के हमें भीतर से मजबूत बना देता है।
0: और शायद यही वजह है कि योग को भारत की अनमोल धरोहर कहा जाता है जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है।
1: तो बहनों, अपने व्यस्त जीवन में से कुछ पल खुद के लिए भी निकालिए,
0: क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगी तभी हर जिम्मेदारी भी मुस्कुराते हुए निभा पाएंगी।

0: बहनों, जीवन एक सुंदर यात्रा है जिसमें हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। कभी चुनौतियाँ आती है, कभी खुशियाँ दस्तक देती है, लेकिन हर अनुभव हमें कुछ नया सिखा कर जाता है।
1: तो सखियों, ऐसे ही सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अब दीजिए आपकी सखियों को इजाजत। मैं मीनाक्षी स्वर्णकार
0: और मैं वीणा ओझा,
1: नमस्कार।

0: बहनों ने सुना अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में सुनवाए जाएंगे।
1: Noon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missile attacks on each other, escalating West Asia conflict.

0: के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह न्यू मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
3: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
2: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
4: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
5: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधान मंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार।

0: शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
3: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
5: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विली।

0: Williams with the news at 9.
1: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
3: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
2: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान और इसराइल के बीच हालिय सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
2: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। फिल्म का नाम है तुम बिन। गीत के बोल है फैज अनवर के, संगीत है निखिल विनय का।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्म का नाम है राबता। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोलों को संगीत दिया है प्रीतम ने।

धमका। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाजों में। फिल्म का नाम है रंग दे बसंती। संगीत है ए आर रहमान का।

मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाज़ों में आपने सुना रंग दे बसंती फिल्म का ये गीत। संगीत दिया था एआर रहमान ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति एआर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है रॉकस्टार। संगीत दिया है एआर रहमान ने।

AR रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाज़ों में रॉक स्टार फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत और संगीत था AR रहमान का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है ए दिल है मुश्किल। गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है प्रीतम का।

अरिजीत सिंह की आवाज में गाए ए दिल है मुश्किल फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर हमारी पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर हमारी सभा जारी रहेगी। ये प्रोग्राम हमारे DRM चैनल 1386 किलो हर्ट्ज पर भी उपलब्ध थे। शाम 4:58 पर अपनी दूसरी सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी आज की सांधिकालीन सभा आरंभ होती है। अब समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं एसवाई खान हिंदी में और ज्योति अहलावत अंग्रेजी में। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।

0: मैं शोएसियार खान अपनी साथी कमेंटेटर ज्योति अहलावत के साथ।
1: सर, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन वीर सैनिकों, अधिकारियों और जवानों को समर्पित है और

0: अवसर पर उपस्थित रहे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सांसद पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्री रॉय ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति हिंसा और शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था में विफल रहने का आरोप लगाया है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी नेता सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कुछ विपक्षी दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि बैठक में 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हरा दिया है। न्यू चंडीगढ़ में भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पारी घोषित की थी। जवाब में अफगानिस्तान की पहली पारी 152 रन पर सिमट गई। इसके बाद फॉलोवन खेलते हुए दूसरी पारी में भी अफगानिस्तान 112 रन ही बना सका। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 146 रन बना लिए थे। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:05 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा वाणी युवा श्रोताओं के लिए।

0: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आपकी दोस्त निशा शर्मा।
1: और मैं हूं आपका मित्र आनंद। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपने शरीर का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन अक्सर अपने मन को भूल जाते हैं, क्यों निशा?
0: बिल्कुल आनंद, बाहर से स्वस्थ दिखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है भीतर से शांत और खुश रहना।
1: और आज हम बात भी करने वाले हैं भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, कभी पढ़ाई का तनाव तो कभी नौकरी की चिंता, कभी रिश्तों में उलझन तो कभी भविष्य की फिक्र, ऐसे में मन बेचैन होना स्वाभाविक है। हमारे युवा साथी सभी इसी उम्र के हैं तो उनका मन भी बेचैन हो सकता है, लेकिन यदि यह तनाव लंबे समय तक बना रहे तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
0: हाँ आनंद, और इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति जो है अपनी क्षमताओं को पहचानता है, जीवन के तनावों का सामना करता है और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकता है।
1: और जब वो सकारात्मक योगदान देता है तो साथ ही साथ उसे अपना मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए योग और ध्यान पर अपना ध्यान लगाना चाहिए, जो कि सबसे प्रभावी और सरल उपायों में से एक है।
0: दोस्तों, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग का अर्थ है जोड़ना, यानी शरीर मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करना।
1: दोस्तों, योग हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। जब हम योग करते हैं ना, तो हमारा ध्यान भूतकाल की चिंताओं और भविष्य की आकांक्षाओं से हटकर केवल और केवल वर्तमान पर केंद्रित हो जाता है, और यही वर्तमान पर केंद्रित होना हमें

0: अपने आप से मिलाता है।
1: हाँ, आनंद और योग करने से शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कम होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी बढ़ता है।
0: बिल्कुल निशा, योग से चिंता, अवसाद, तनाव, अनिंद्रा जैसी समस्याओं में भी राहत मिलती है, साथ ही आत्मविश्वास और एकाग्रता भी बढ़ती है।
1: हाँ आनंद, बात करते हैं ध्यान यानी मेडिटेशन की। मेडिटेशन से मन को शांत करने और विचारों को संतुलित करने की एक प्रक्रिया है।
0: बिल्कुल, और जब हम कुछ मिनटों के लिए शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और हम कह भी सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने सांस पर नियंत्रण कर सकता है वो अपने जीवन पर नियंत्रण कर सकता है।
1: हाँ आनंद, और ध्यान जो है वो हमें अपनी फीलिंग्स को समझने और कंट्रोल करने की शक्ति भी देता है। इससे क्रोध, भय और जो चिंता है, ये सब जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, इन पर कंट्रोल पाने में भी मदद मिलती है।
0: हाँ, और कुछ आसान योगासन भी है जिन्हें आप करके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ताड़ासन। ताड़ासन करके आप शरीर और मन को संतुलन कर सकते हैं। वृक्षासन करके आप एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं।
1: हाँ साथियों, बालासन जो कि तनाव और थकान को भी कम करता है। शवासन मन को और शरीर को पूरी तरीके से विश्राम देता है। योग के साथ प्राणायाम भी बहुत जरूरी है।
0: हाँ, और मेरा तो बड़ा फेवरेट है शवासन। अनुलोम विलोम प्राणायाम मानसिक शांति प्रदान करता है। भ्रामरी प्राणायाम तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। गहरी और नियंत्रित श्वास लेने से मन शांत होता है और सकारात्मक सोच विकसित होती है।
1: आनंद, आज के युवा सोशल मीडिया, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर के दबाव के कारण मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में दिन के केवल 15 से 20 मिनट योग और ध्यान को देना आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।
0: बहुत सही बात की तुमने। सुबह की शुरुआत हम अगर सकारात्मक विचारों से करें, कुछ योगासनों और ध्यान से करें, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक ऊर्जावान और पहले से अधिक तंदुरुस्त हो चुका है।
1: हाँ,
0: दोस्तों, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य।
1: दोस्तों, जब मन स्वस्थ होगा तभी हम जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाएंगे। इसलिए अपने मन को भी समय दीजिए, उसकी बात सुनिए और उसे स्वस्थ रखने के लिए योग और ध्यान को अपनाइए।
0: तो दोस्तों, आज के लिए हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से अपनी दिनचर्या का हिस्सा आप योग को बनाएंगे, क्योंकि
1: योग तन को शक्ति देता है,
0: ध्यान मन को शांति देता है,
1: और दोनों मिलकर जीवन को नई दिशा और नई ऊर्जा देते हैं।
0: इसलिए दोस्तों, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और अपने मन की सेहत का उतना ही ध्यान रखे जितना शरीर का। याद रखिए, एक शांत मन ही सफलता, संतुलन और खुशहाल जीवन की सबसे बड़ी कुंजी होता है।

0: तो दोस्तों, जैसे अभी हम बात कर रहे थे मानसिक स्वास्थ्य की, ये मानसिक स्वास्थ्य आपको लगातार क्विज सॉल्व करने पर भी मिल सकता है। आप अगर नए नए प्रश्नों से आपका सामना होता है और आप उनके उत्तर ढूंढते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आइए, आज के कुछ क्विज आपके लिए लेकर आ चुके हैं हम। हमारा आज का प्रश्न है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और दूसरा प्रश्न है,
1: जनगणना 2027 के लिए कौन सी हेल्पलाइन पूरे देश में शुरू हुई है?
0: तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के दो सवाल, जिनके जवाब मिलेंगे आपको इसी कार्यक्रम में। जी हाँ दोस्तों, इसी कार्यक्रम में। तो आपको लगातार जुड़े रहना है युववाणी के इस कार्यक्रम से।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की

90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: दोस्तों, तन स्वस्थ हो तो मन प्रसन्न रहता है और मन प्रसन्न हो तो जीवन धन्य हो जाता है। जी हाँ, जैसा कि अभी हम बात कर ही रहे थे कि हमारी जीवनचर्या को सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है योग। जी हाँ, योग के जागने से रोग अपने आप भाग जाएंगे। तो आइए आज हम ऐसे ही एक वार्ता को सुनेंगे, योग जागे रोग भागे। वार्ताकार है श्री भुवनेश कुमार पुरोहित।
1: भारतीय दर्शन में योग एक अति महत्वपूर्ण शब्द है। आत्मदर्शन व समाधि से कर्म क्षेत्र तक योग का व्यापक हमारे शास्त्रों में हुआ है। योग का तात्पर्य स्वचेतना और चेतना के मुख्य केंद्र पर चेतना प्रभु के साथ संयुक्त हो जाना है। इसके माध्यम से अपने अंदर निहित शक्तियों को विकसित करके परम चैतन्य आत्मा का साक्षात्कार एवं पूर्ण आनंद की प्राप्ति की जा सके। कुल मिलाकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण रूपांतरण योग से ही संभव है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग के विभिन्न स्वरूपों की विवेचना करते हुए कहा है कि यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधय, अष्टो अग्नि, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि कुल 8 अंग हैं। इन सब का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। अष्टांग के प्रथम अंग यम द्वारा इंद्रियों एवं मन को हिंसादि अशुद्ध भावों से हटाकर आत्म केंद्रित किया जाता है। यह अनुष्ठान सत्य बोलकर, अहिंसा का पालन कर, अप्रिग्रह चोरी न कर, ब्रह्मचर्य का पालन कर किया जाता है। नियम के तहत सोच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर के प्रति आस्था पर ध्यान देकर अनुष्ठान किया जाता है। अष्टांग का तीसरा अंग है आसन। आसन का अर्थ है स्थिरता अथवा सुखपूर्वक बैठना। वर्तमान भौतिक सुख सुविधाओं एवं अन्य कारणों से हमारे शरीर में जकड़न आ जाती है, व्याधियां उत्पन्न हो जाती है अथवा व्याधियां उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इन्हें दूर करने के लिए आसन किए जाते हैं। विशेष आसनों द्वारा शरीर की अंतरस्त्रावी ग्रंथियों पर दबाव पड़ता है, जिससे उनके स्त्राव में बदलाव आता है। उससे चेहरे हमारे रोग दूर होते हैं। इसके साथ साथ क्रम क्रोध से अक्रोध की ओर, काम से ब्रह्मचर्य की ओर, लोभ लालच से संतोष की ओर, द्वेष से संभव की ओर जाकर हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का रूपांतरण कर सकते हैं। शरीर के अंग बलिष्ठ होते हैं। शरीर के जितने विजात्य द्रव हैं जैसे वात, पित्त, कफ, इनको आसनों द्वारा एवं श्वास

प्रश्वास क्रियाओं के द्वारा भस्म किया जा सकता है। आसनों के माध्यम से शरीर में स्थिरता प्रदान की जा सकती है, क्योंकि बिना स्थिरता के कार्य संपादित नहीं हो सकते। अष्टांग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को यथाशक्ति नियंत्रित करना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के माध्यम से नाड़ियों का शोधन किया जाता है। श्वास प्रक्रिया द्वारा हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन ली जाती है, उस ऑक्सीजन में प्राण तत्व होता है, उसको सारे शरीर में पहुंचाना प्राणायाम है। उस प्राण ऊर्जा से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति का एटॉम एनर्जी है जो प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान रहती है, मगर अज्ञानतावश हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका सदुपयोग करने के लिए हम सक्षम नहीं हैं। हम सक्षम हैं लेकिन श्वास पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्राणायाम करते समय, श्वास लेते समय, प्रश्वास समय पेट फूलना चाहिए और श्वास को छोड़ते टाइम पेट पिचकना चाहिए। आज के धरती पर प्राणी मात्र में श्वास दो जने ही सही से लेते हैं, एक तो छोटा बच्चा और एक कुकर कुत्ता, क्योंकि श्वास लेते समय उनका पेट फूलता है। श्वास का ध्यान रखना ही सही प्राणायाम का एक भाग है। प्राणायाम बाह्यवृत्ति, आभ्यंतरवृत्ति, संभवृत्ति, बाह्ययंत्र, विशाक्षेपी प्रकार के होते हैं। अष्टांग के पांचवें अंग के रूप में प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों का पूर्ण अधिकार हो जाता है। धारणा अष्टांग का छठा अंग है। इसके तहत मन को स्थूल विषय से हटकर सूक्ष्म लक्ष्य, आत्मा, परमात्मा आदि पर केंद्रित करने को धारणा कहते हैं। अष्टांग के सातवें अंग ध्यान जीवन का अपरिहार्य अंग है। ध्यान हमारे जीवन की आवश्यकता है। अष्टांग का आठवां अंग है समाधि। ध्यान की जप केवल अर्थ ध्येय के स्वरूप या स्वभाव को प्रकाशित करने वाला अपने स्वरूप से शून्य जैसे होता है, उसे समाधि कहते हैं। बिगड़ती दिनचर्या के कारण मधुमेह, शुगर, गैस, मोटापा, ब्लड प्रेशर, तनाव, हार्मोन का डिसऑर्डर होना, नाभि टलना, निराशा आदि व्याधियाँ अधिकांशतः व्यक्तियों में पाई जाती है। इन्हें सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं, आसनों, प्राणायाम द्वारा दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार परीक्षाओं, प्रतियोगिताओं के दौरान बच्चों में हताशा छाने लगती है, बच्चे घबरा जाते हैं, फूलने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी, हाथों में कंपन व पसीना आने तथा आहार को ध्यान नहीं देने से बच्चों को सफलता मिलने में बाधाएं आती है, जिससे लक्ष्य की मंजिल उससे दूर होती जाती है। इन विकारों को दूर करने हेतु सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं, चुनिंदा आसन किए जा सकते हैं। उसमें ताड़ासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन, कटिचक्रासन, वृक्षासन, वीरासन, ये समस्त खड़े होने वाले आसन हैं। बैठने में आसन में वज्रासन, सुप्त वज्रासन, शशांकासन, उष्ट्रासन आदि बैठकर आसन किए जा सकते हैं। उदर के बल, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में मकरासन, भुजंगासन, शलभासन जैसे बहुत से आसन हम उदर के बल किए जा सकते हैं। और पीठ के बल लेटकर आसन किए जाते हैं, उनमें प्रमुख रूप से आसन है उत्तान पादासन, हल्लासन, अर्धहल्लासन, सर्वांगासन, शवासन। उसके बाद में प्राणायाम। ध्यान एक चुंबकीय शब्द है। यह शब्द उच्चारण होते ही मानस पट में आकर्षक प्रेरणादायक प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। आनंद सागर में मन समाहित हो जाता है। जाति, धर्म, वर्ग, लिंग निर्विशेष, सब देश, सब युग, सब काल से यह पवित्र मनमोहक शब्द ध्यान मानव को तिरमान धंकार से ज्योतिर्मय दिव्य प्रकाश में उद्बोधित करता आ रहा है। ऋषि, मुनि, योगी, समस्त प्राणी जो आस्तिक नास्तिक सबके साथ ध्यान ओतप्रोत है। शिशुवय की सीमा अतिक्रमण होते होते बोध सीमा में प्रविष्ट होते ही ध्यान का बीज मनोभूमि में

0: जागृत होने लगता है। स्नेहमयी स्निग्ध वात्सल्य में परिपूर्ण ममतामयी माँ अपनी प्राण सम संतान को परम आरामदायक गोद में लेकर वाल सुलभ चपला के साथ अपने को समाविष्ट करते हुए अ आ का पाठ ध्यान से उच्चारण करने के लिए प्रेरित करती है। एक माँ की गोद में लेटा हुआ बच्चा सर्वप्रथम वही ध्यान सीखता है, क्योंकि माँ जब उसके लोरी देती है तो कहती है आ आ आ, वो बच्चा ध्यान से सुनता है। वह वास्तविक जीवन का ध्यान है। यह दृश्य बड़ा ही रमणीय है। संतान की आधी आधी बोली के साथ माँ भी आधी बोली को मिलाते हुए पाठ पढ़ाती रहती है। मातृ स्नेह द्वारा नटखटपन को रोकते हुए माता पाठ के प्रति आकृष्ट करने के लिए बार बार प्रेरित करती है। यह खेल केवल एक भाषा की माँ संतान का नहीं, यह सब भाषा है, सब देश की माँ संतान का खेल है। क्योंकि देश भाषा में कितनी भी विभिन्नता क्यों न हो, माँ और संतान की स्नेह ममता तथा वात्सल्य में विभिन्नता नहीं हो सकती। माता की स्नेह युक्त गोद में कुछ दिन पाठ अभ्यास के बाद सामूहिक परिवश के अंदर डालने के लिए बालों में जूड़ा बांधकर आंखों में काजल लगाकर सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए स्नेह चुंबन द्वारा बाल विद्यालय में भेजते के समय माँ पुनः कहती है गुरुजी जो सिखाएंगे वह ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनते सुनते की आवृत्ति संतान में निरंतर चलती रहती है। जब संतान छोटा होता है माँ की गोदी में लेटा होता है तो माँ कहती है बेटा ध्यान से सुनना। उसके बाद बड़ा स्कूल जाता है तो माँ कहती है गुरुजी पढ़ाए वो ध्यान से सुनना। और फिर थोड़ा बड़ा होता है, जवान होता है तो माँ कहती है बेटा ध्यान से रहना, बिगड़ना मत। फिर बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होता है, उसकी शादी होती है तो माँ कहती है बेटा उसका पत्नी का ध्यान रखना। फिर कहती है बच्चों का ध्यान रखना। फिर वो धीरे धीरे अवस्था में बूढ़े होते हैं, बूढ़ों का ध्यान रखना। ध्यान एक ऐसा शब्द है जो माँ के मुख से निकला हुआ शब्द है और ध्यान ही समस्त क्रियाओं का एक मूलबंध योग है। पुनः उसी स्नेह के साथ हम ध्यान का आज पाठ पढ़ाते हैं। बोलो और सुनाओ। प्रथम दिवस में कुछ समय के लिए मातृ स्नेह से दूर रहने के विच्छेद क्लेश में अवसान से अति हर्ष के कारण पठित पाठ भूल जाना स्वाभाविक है, किंतु माँ अभिभोग करती है तुमने ध्यान से नहीं सुना, कल से ऐसा नहीं करना बेटे। ध्यान से सुनकर आवृत्ति करना एवं आते जाते भी गुरु जी का पाठ याद करना, यह है ध्यान की शिक्षा। ध्यान रखना, जैसे जैसे बुद्धि का विकास होने लगता है वैसे वैसे पढ़ाई के प्रति ध्यान स्वतः ही जाने लगता है, नहीं तो कक्षा उत्तीर्ण होने में बाधा पहुंचती है। योग का लक्ष्य केवल साधारण देहाभिमान से ऊपर उठकर परमार्थ प्राप्ति नहीं है। वस्तुत्व तो परमार्थ का मूल अर्थात वैज्ञानिक तत्व मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि से परे उठकर विशाल समुद्र जलराशि में वारी बिंदु मिलन की तरह अनंत के साथ अपने को विलय कर देना है। परिदृश्यमान दृष्टि से यह बड़ा ही दुर्गम अनुभव होते हुए भी आयास साध्य है। दूध मंथन से जैसे मक्खन उत्पन्न होता है ना, वैसे ही महान चिंतक आत्मदृष्टा से ऋषि प्रवरों ने योग नामक अघेय विज्ञानमय साधन को विश्वजनों के सामने रखा है। हमें ईर्ष्या लोभ हिंसा द्वेष क्लेश स्वार्थपरता आदि अमावस्या के गहन अंधकार से मानव मन को ज्योतिर्मय के लिए ले जाने का उपाय दर्शाना है। ऋषि जैसे आत्मदृष्टा थे वैसे दूरदृष्टा एवं विज्ञानविद भी हैं। उनके जीवन की साधना थी समग्र मानव समाज के लिए उत्कृष्ट। उन्होंने अपनी साधना द्वारा सिद्ध करके दिखाया कि जीवनात्मा और परमात्मा के मिलन का सेतु है योग।
1: दोस्तों, हमने सुनी वार्ता योग जागे रोग भागे। वार्ताकार थे श्री भुवनेश कुमार पुरोहित।
2: दोस्तों, और योग हमें स्वस्थ बनाता है और यही स्वास्थ्य हमारे युवा वर्ग के लिए भी जरूरी है। और दोस्तों, किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा आबादी होती है और वो युवा आबादी हर असंभव को संभव कर सकती है। इसीलिए कहा भी गया है कि असंभव को संभव कर दे ये शक्ति युवाओं की, हम अमावस्या के अंधेरों में भी चांद उगाने आए हैं। जी हाँ।

0: दोस्तों, युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान भी है।
1: बिल्कुल आनंद, अक्सर हम सुनते हैं कि युवा देश का भविष्य है, लेकिन सच तो ये है कि युवा आज भी देश की दिशा और दशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
0: सही कहा, आज के युवा विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, खेल, कृषि, उद्योग और सामाजिक सेवा जैसे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं।
1: और जब युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो वो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देते हैं।
0: और दोस्तों, राष्ट्र निर्माण से हमारा मतलब है देश के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विकास में योगदान। यह केवल सरकार का काम नहीं है बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है।
1: यानी एक छात्र अगर मन लगाकर पढ़ाई करता है, एक खिलाड़ी पूरी मेहनत से देश का नाम रोशन करता है, एक शिक्षक अच्छी शिक्षा देता है, तो वो भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, युवा तो इस परिवर्तन के सबसे बड़े वाहक हैं। उनके पास नई सोच है, नई ऊर्जा है और कुछ कर गुजरने का जज्बा है।
0: आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और ये हमारे लिए एक बड़ी ताकत है।
1: लेकिन इस ताकत का सही उपयोग तभी होगा जब युवा शिक्षा, कौशल विकास और नैतिक मूल्यों को अपनाएंगे,
0: साथ ही सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझेंगे, जैसे पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जल बचाना, समाज में जागरूकता फैलाना आदि।
1: बिल्कुल आनंद, एक जिम्मेदार युवा वही है जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझता हो।
0: बिल्कुल, और दोस्तों, राष्ट्र निर्माण की शुरुआत किसी बड़े मन से नहीं होगी बल्कि अपने घर से होगी, अपने विद्यालय से होगी, अपने कॉलेज से होगी और आसपास के वातावरण से होगी, यानी हमसे होगी।
1: और दोस्तों, यदि हम ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हम भी राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में अपना योगदान दे सकते हैं।
0: बिल्कुल, याद रखिए, देश की प्रगति केवल सरकारों से नहीं बल्कि जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों से होती है।
1: और जब युवा जागरूक, शिक्षित और सकारात्मक सोच वाले हों तो देश का भविष्य अपने आप ही उज्जवल बन जाता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, और ऐसे युवा ही देश के असली भारत भाग्य विधाता होते हैं और ऐसे युवाओं और ऐसे जवानों से हमारी सीमाएं सुरक्षित है। तो आइए अब हम सुनते हैं कैलाश खेर के द्वारा एक संदेश भारतीय सेना के नाम।
2: कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: दोस्तों, भारतीय सेना की बात अपने कैलाश खेर के द्वारा सुनी और भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण प्रावधान पर मेरा ध्यान गया है, अनुच्छेद 249। तो निशा, आप जानते हो 249 के बारे में कुछ?
1: बिल्कुल आनंद, ये राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों की विधानसभाओं के पास होता है, लेकिन अनुच्छेद 249 एक विशेष परिस्थिति में संसद को भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है।
0: यानी कि ये मान लिया जाए कि यदि राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाना आवश्यक है, तो वह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है।
1: हाँ।
0: इसके बाद संसद उस विषय पर कानून बना सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, और यही कारण है कि अनुच्छेद 249 को संघीय व्यवस्था और राष्ट्रीय आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने वाला प्रावधान माना जाता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, और इसका सबसे बड़ा महत्व है कि राष्ट्रीय हित से जुड़े विषयों पर पूरे देश में एक रूपता लाई जा सकती है, और ये प्रावधान केंद्र सरकार को ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने की शक्ति देता है जो राज्यों की सीमाओं से आगे बढ़कर राष्ट्रीय महत्व के बन जाते हैं।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दोस्तों हम आपको भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की एक ऐसी प्राकृतिक धरोहर के बारे में बताते हैं जो अपनी सुंदरता, जैव विविधता और अनोखी विशेषताओं के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं लोकटक झील की।
1: निशा, जब भी भारत की प्रसिद्ध झीलों का जिक्र होता है ना, तो लोग अक्सर डल झील, चिल्का झील या सांबर झील का ही नाम लेते हैं, लेकिन लोकटक झील का महत्व भी किसी से कम नहीं है।
0: बिल्कुल आनंद, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये राजधानी इम्फाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। इसका क्षेत्रफल मौसम के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन सामान्यतः ये लगभग 280 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है।
1: वाह, यानी कि यहाँ केवल एक झील नहीं है बल्कि एक विशाल जल पारिस्थितिकी तंत्र भी है।
0: हाँ आनंद, लोकटक झील की सबसे अनोखी पहचान इसके फुम्दी है। फुम्दी दरअसल मिट्टी, वनस्पतियों और जैविक पदार्थों से बने तैरते हुए द्वीप होते हैं।
1: बहुत सुंदर।
0: ये झील की सतह पर तैरते रहते हैं और देखने में किसी छोटे से हरे भरे द्वीप जैसे लगते हैं।
1: और यही कारण है निशा कि लोकटक झील को दुनिया की सबसे अनोखी झील गिना जाता है। दूर से देखने पर तो ऐसे लगता है मानो पानी के ऊपर हरे हरे बगीचे तैर रहे हो।
0: सही कहा तुमने, यही फुम्दी यहाँ के लोगों के जीवन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ लोग इन तैरते हुए द्वीपों पर मछली पालन करते हैं, जबकि कुछ स्थानों पर छोटे छोटे घर भी बनाए जाते हैं।
1: दोस्तों सोचिए कितनी अद्भुत बात है कि पानी के ऊपर तैरती हुई जमीन पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अमेजिंग।
0: और दोस्तों लोकटक झील केवल प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र नहीं है बल्कि जैव विविधता का भी खजाना है। यहाँ अनेक प्रकार की मछलियाँ, पक्षी और जलीय जीव पाए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में कई प्रवासी पक्षी भी यहाँ आते हैं, जिससे ये पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग बन जाते हैं।
1: और इस झील की जो एक विशेष पहचान है वो है, जिसके बारे में शायद हमारे श्रोता जानने भी चाहेंगे।
0: बिल्कुल आनंद, लोकटक झील के भीतर केईपुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
1: जी हाँ, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये सुनकर ही बड़ा मस्त लग रहा है, बहुत रोमांच हो जाता है।
0: सचमुच आनंद, ये राष्ट्रीय उद्यान फुम्दियों के विशाल समूह पर स्थित है। ये वो स्थान है जहाँ संगाई हिरण पाया जाता है।
1: अरे वाह।
0: संगाई को मणिपुर का राज्य पशु भी कहा जाता है।
1: और संगाई हिरण को डांसिंग डियर यानी कि नृत्य करने वाला हिरण भी कहा जाता है ना?
0: हाँ हाँ आनंद, जब ये फुम्दियों पर चलता है तो उसकी चाल ऐसी प्रतीत होती है जैसे वो नृत्य कर रहा हो। कभी विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके इस दुर्लभ हिरण के संरक्षण में केईपुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
1: लेकिन ईशा, क्या इस झील को भी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?
0: हाँ आनंद, बढ़ता प्रदूषण, अनियंत्रित मानवीय गतिविधियां और जल स्तर में परिवर्तन जैसी समस्याएं लोकटक झील के लिए चिंता का विषय है। फुम्दियों की प्राकृतिक संरचना भी प्रभावित हो रही है, जिससे यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ रहा है।
1: तो दोस्तों ऐसे में संरक्षण के प्रयास अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, सरकार और विभिन्न पर्यावरणीय संस्थाएं लोकटक झील के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। स्थानीय समुदाय भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण तभी संभव है जब स्थानीय लोग उसके महत्व को समझें और उसके प्रति जिम्मेदारी निभाएं।
1: तो दोस्तों लोकटक झील हमें यह सिखाती है कि प्रकृति केवल सौंदर्य का स्रोत नहीं बल्कि जीवन का आधार भी है, और यदि हम अपने जल संसाधनों और जैव विविधता की रक्षा करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियां भी इन प्राकृतिक धरोहरों का आनंद ले सकेगी। तो दोस्तों लोकटक झील जैसी प्राकृतिक धरोहरें न केवल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती है। और जब अर्थव्यवस्था की बात हो तो एक शब्द अक्सर सुनने को मिलता है, GDP।
0: बिल्कुल आनंद, समाचारों, बजट, भाषणों और आर्थिक चर्चाओं में हम अक्सर GDP का नाम सुनते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसका अर्थ ठीक से नहीं जानते।
1: तो सबसे पहले तो हम अपने दोस्तों को यही बताते हैं कि साहब GDP का पूरा नाम क्या?
0: GDP का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
1: हाँ।
0: जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि, सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को GDP कहते हैं।
1: यानी दोस्तों यदि कोई किसान गेहूं उगाता है और कोई कारखाना कपड़े बनाता है, कोई शिक्षक शिक्षा देता है या कोई डॉक्टर चिकित्सा सेवा देता है, तो इन सब के आर्थिक मूल्य को मिलाकर GDP का हिस्सा माना जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने आनंद, GDP

0: किसी देश की आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इससे पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है और ये कितनी तेजी से विकास कर रही है।
1: अक्सर दोस्तों हम सुनते हैं कि भारत की जीडीपी बढ़ रही है, इसका क्या अर्थ है?
0: इसका अर्थ है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है।
1: अच्छा।
0: व्यापार और उद्योग का विस्तार हो रहा है।
1: क्या बात है।
0: और आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। सामान्य रूप से जीडीपी में वृद्धि को आर्थिक प्रगति का संकेत भी माना जाता है।
1: तो क्या केवल जीडीपी के आधार पर किसी देश की स्थिति का आकलन किया जा सकता है?
0: नहीं आनंद, जीडीपी

0: सामान्य रूप से जीडीपी में वृद्धि को आर्थिक प्रगति का संकेत भी माना जाता है।
1: तो क्या केवल जीडीपी के आधार पर किसी देश की स्थिति का आकलन किया जा सकता है?
0: नहीं आनंद, जीडीपी अर्थव्यवस्था की तस्वीर तो दिखाती है,
1: अच्छा,
0: लेकिन लोगों के जीवन स्तर पर, आय के समान वितरण पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसी बातों की पूरी जानकारी नहीं देती है। इसलिए जीडीपी के साथ साथ मानव विकास सूचकांक यानी HDI जैसे अन्य मानकों को भी देखा जाता है।
1: बिल्कुल सही, भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है और जीडीपी के आधार पर भारत लगातार आगे बढ़ भी रहा है।
0: बिल्कुल आनंद, कृषि, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों का योगदान भारत की जीडीपी को मजबूत बनाता है।
1: तो दोस्तों, सरल शब्दों में कहें तो जीडीपी किसी देश की आर्थिक सेहत का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। ये बताती है कि देश में कितना उत्पादन और कितनी आर्थिक गतिविधियां हो रही है।
0: और एक मजबूत जीडीपी देश के विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बहुत उपयोगी। तो दोस्तों, आज ये जो हमने जीडीपी के बारे में जानकारी ली है, ये निश्चित रूप से आपके लिए कारगर सिद्ध होगी।

0: शिक्षा से जुड़े युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के कुल 3,951 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन 25 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 23 जून 2026 रात 11:59 तक है। यह भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया लिखित और दस्तावेज सत्यापन रहेगा। आवेदन करने के लिए युवा साथी वेबसाइट http://rssb.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं। इसके अलावा अपने SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज की रोजगार सूचना, और साथ ही साथ घड़ी की सुइयां ये बता रही है कि आपसे विदा लेने का समय हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन रही हमारी आज की ये बातचीत, जिसमें हमने कई सारी चीज़ों पर बात की और विशेषतः हमने बात की है योग पर। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निकट है, तो निश्चित रूप से अपने योग के क्रियाविधियों को शुरू कर दीजिए। इसी के साथ मैं आनंद पुरोहित,
1: मैं निशा शर्मा,
0: नमस्कार।

0: दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछे थे कुछ सवाल। निश्चित रूप से आपने उनके जवाब भी ढूंढ लिए होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न था,
1: नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
0: तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अशोक कुमार लाहिड़ी। और दूसरा प्रश्न है, जनगणना 2027 के लिए कौन सी हेल्पलाइन पूरे देश में शुरू की गई है?
1: और इसका सही जवाब है 1855।
0: तो ये थे हमारे दो सवाल, निश्चित रूप से आपने सही उत्तर मिला लिए होंगे।

तो दोस्तों अब समय है उस सेगमेंट का जिसका हमारे युवा साथी बेसब्री से इंतजार करते हैं, यानी कि रोजगार सूचना का। जी हाँ, रोजगार सूचना। इस बार राजस्थान के स्कूलों में कंप्यूटर

ये था युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी आकाशवाणी बीकानेर का। ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:55 हो चुके हैं। अब सुनिए हमारी इस सभा के कार्यक्रमों का विवरण।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद, रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से जिले की चिट्ठी कार्यक्रम होता है शाम 6:42 पर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7:00। श्रोता सुनेंगे आज कार्यक्रम में चर्चा, केंद्र सरकार का खेत बचाओ अभियान, खेत की गहरी जुताई करने के लिए टॉप 4 कृषि यंत्र, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पशुओं की मींगनी है उत्तम कार्बनिक खादें, साथ ही अन्य जानकारियां और लोक संगीत। कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7:00 सुनिएगा।

हमारी इस सभा में सुगम संगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:45 पर और रात्रि 10:30। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही गीतकार शाम 6:05 पर। आज के गीतकार हैं अनजान। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम रात्रि 9:15 होगा और रात्रि 9:30 सुनिएगा फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से।

एक बार फिर से आपको बता दें, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आकाशवाणी भोर से पहले, भोर के बाद, रात्रि 8 बजे।

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं। अब दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।

नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक के

0: बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीय कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बम्बई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 180 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही गीतकार। आज के गीतकार हैं अनजान

श्रोताओं, हिंदी भाषा साहित्य और हिंदी फिल्मों के करिश्माई व्यक्तित्व अनजान का जन्म 28 अक्टूबर 1930 को उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ। बचपन के दिनों से ही उन्हें शेर व शायरी के प्रति गहरा लगाव था और शेर व शायरी के अपने शौक को पूरा करने के लिए अनजान बनारस में आयोजित सभी कवि सम्मेलनों और मुशायरों में हिस्सा लिया करते थे। हालांकि मुशायरों में भी वो उर्दू का इस्तेमाल कम और हिंदी का प्रयोग अधिक करते थे और उनके द्वारा रचित हिंदी गीतों से हिंदी फिल्मों को भी प्रसिद्धि मिली।

0: आकाशवाणी एट 90। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही गीतकार। आज के गीतकार हैं अनजान। श्रोताओं, अनजान का वास्तविक नाम लालजी पांडे था। एक गीतकार के रूप में अनजान ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1953 में अभिनेता प्रेमनाथ की फिल्म गोलकुंडा का कैदी से की। इस फिल्म के लिए सबसे पहले उन्होंने लहर ये डोले कोयल बोले और शहीदों अमर है तुम्हारी कहानी गीत लिखे, लेकिन इस फिल्म के जरिए वे अधिक प्रसिद्ध नहीं हुए और उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। इस बीच उन्होंने कई छोटे बजट की फिल्में भी की और साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए।

श्रोताओं, अनजान की मुलाकात संघर्ष के दौर में जीएस कोहली से हुई, जिनके संगीत निर्देशन में उन्होंने फिल्म लंबे हाथ के लिए मत पूछ मेरा है कौन मेरा ये गीत लिखा। इस गीत के जरिए वह काफ़ी हद तक अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए और 1953 से 1963 तक लगभग 10 वर्ष तक माया नगरी मुंबई में संघर्ष करने के बाद पंडित रविशंकर के संगीत से सजी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर आधारित फिल्म गोदान में उनके रचित गीत चली आज गोरी पिया की नगरिया। इसकी सफलता के बाद अनजान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनजान को इसके बाद कई अच्छी फिल्मों के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए।

और इसके बाद अनजान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनजान को इसके बाद कई अच्छी फिल्मों के प्रस्ताव मिले, जिनमें बहारें फिर भी आएगी, बंधन, कब क्यों और कहां, उमंग, रिवाज, एक नारी एक ब्रह्मचारी, हंगामा जैसी कई फिल्में शामिल थी। इसके बाद अनजान ने सफलता की नई बुलंदियां छुई और एक से बढ़कर एक गीत लिखे। अनजान के सिने कैरियर पर यदि नज़र डाली जाए तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर फिल्म आए, उनके रचित गीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ करते थे। वर्ष 1976 में प्रदर्शित फिल्म दो अनजाने के लुक छिप जाओ ना गीत की कामयाबी के बाद अनजान ने अमिताभ बच्चन के कई सफल गीत लिखे, जिनमें प्रमुख थे बरसों पुराना ये याराना, खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, रोते हुए आते हैं सब, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, और ये सारे के सारे गीत एक से एक सदाबहार गीत थे।

अनजान ने कई संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें कल्याण जी आनंद जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अनजान के गीतों को नई पहचान मिली। सबसे पहले इस जोड़ी का गीत वर्ष 1969 में प्रदर्शित फिल्म बंधन में पसंद किया गया। इसके बाद अनजान द्वारा रचित फिल्मी गीतों में कल्याण जी आनंद जी का गीत संगीत जोड़ी अनेक बार साथ में आई। इनका जिन फिल्मों के लिए योगदान था वे थी दो अनजाने 1976, हेरा फेरी 1976, खून पसीना, गंगा की सौगंध, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, याराना, ईमानदार, दाता, जादूगर, थानेदार जैसी एक से एक सुपरहिट फिल्में और सुपरहिट गीत संगीत।

गीतकार अनजान द्वारा लिखे गए कुछ प्रसिद्ध गीत हैं बहारें फिर भी आएगी, फिल्म का आपके हसीन रुख पे, डॉन का खई के पान बनारस वाला, मुकद्दर का सिकंदर, फिल्म का दिल तो है दिल, इसी फिल्म का रोते हुए आते हैं सब, और इसी फिल्म का ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, प्यार जिंदगी है ये भी बहुत प्रसिद्ध है, और शराबी फिल्म का मुझे नौलखा मंगा दे रे, खून पसीना फिल्म का खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, और बरसों पुराना ये याराना, ऐसे एक से एक सुंदर और बहुत मन को मोहने वाले गीत अनजान ने लिखे। वर्ष 1989 में सुल्तान अहमद की फिल्म दाता में कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अनजान का रचित गीत बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है आज भी श्रोताओं की आंखों को नम कर देता है। कल्याण जी आनंद जी के अलावा अनजान के प्रसिद्ध संगीतकार जिनके साथ उन्होंने काम किया, बप्पी लाहिरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ओपी नैयर, राजेश रोशन और आरडी बर्मन प्रमुख रहे हैं। वहीं उनके गीतों को किशोर कुमार, आशा भोंसले, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर जैसे चोटी के गायक कलाकारों ने अपने स्वर से सजाया।

0: अपने 3 दशक से भी लंबे सिने करियर में 200 फिल्मों से भी अधिक फिल्मों के लिए गीत लिखने वाले अनजान का 67 वर्ष की आयु में 13 सितंबर 1997 को निधन हुआ और उनके निधन से फिल्मी दुनिया का एक बड़ा सितारा डूब गया। आज भी उनके लिखे गीत दिल को सुकून देते हैं और हर कोई उन्हें गुनगुनाता है। प्रसिद्ध गीतकार समीर भी इनके ही पुत्र हैं।
1: जादू तेरा किस पे चला होगा किसी दिन ये फैसला।
0: अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही गीतकार। आज के गीतकार थे अनजान। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 6:30 बज रहे हैं। अब जयपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हितों की विकास यात्रा बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया पूरी, 3 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। और आकाशवाणी की गौरवशाली सेवा के 90 वर्ष पूरे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 98% आबादी तक पहुँच।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हित की विकास यात्रा बताया है। आज श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना, किंतु इस विकास यात्रा के केंद्र में गरीब और वंचित वर्ग का कल्याण रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। श्री मोदी ने कहा कि गरीबों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने अहम भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि डबल इंजन सरकार प्रदेश में जनहित योजनाओं के जरिए सेवा कर रही है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विधायक दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंतिम व्यक्ति के विकास का काम सुनिश्चित किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य में 5 जून से 21 जून तक 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह के प्रथम चरण में सशस्त्र बलों और सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित कर रही हैं। राष्ट्रपति भवन में हो रहे इस समारोह में अदम्य साहस और समर्पण का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए जा रहे हैं।

0: रहे हैं। समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करने जा रहा है। ये बैठक कल से 13 जून तक इंदौर में होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की ये बैठक भारत की अध्यक्षता में हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि इसमें मुख्य रूप से किसानों की आमदनी, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन आवासों में नल से जल, रसोई गैस और शौचालय की आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने इसे लाखों गरीब परिवारों के लिए बड़ा बदलाव बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 12 साल में देश में समावेशी विकास को नई गति मिली है। इंडिया गठबंधन की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और NCP शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले बैठक में शामिल हुईं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आज शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत करीब 125 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। वहीं कई क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। जयपुर के संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं जल्द बहाल होने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया की समय सीमा आज समाप्त हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 3 प्रत्याशियों ने 9 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं। नाम वापसी की आखिरी तारीख 11 जून है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशियों ने आज अपने नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण के समक्ष दाखिल किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में श्री पूनिया ने उन पर भरोसा करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया।
2: लोकतंत्र के उच्च सदन में जाने का अवसर मिलेगा। जितनी भी बार पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, पार्टी ने मुझे भरोसा देके युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते उस कालखंड में जो अवसर दिया वो पार्टी ने दिया, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते एक बार विधायक के नाते पार्टी ने मुझे भरपूर अवसर दिया।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि इस साल 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए नंबरों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की विंडो 2 से 7 जून तक पूरी तरह कार्यरत थी। इस दौरान 1,60,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 3,08,000 से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं के लिए आवेदन किया। CBSE ने मीडिया पर इस पोर्टल के काम नहीं करने को लेकर चल रही कुछ खबरों पर भी स्थिति स्पष्ट की है। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों का भ्रम दूर करते हुए बताया कि जिन छात्रों के स्क्रीन पर रोल नंबर

0: पर नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है। इसका कारण ये है कि उन्होंने इस प्रक्रिया के पहले चरण यानी आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए आवेदन नहीं किया था। बोर्ड ने कहा कि नियम के मुताबिक केवल वही छात्र अगले चरण के लिए पात्र होते हैं जिन्होंने पहले चरण में अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई किया था। राज्य में सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 28 जून तक रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ाकर 43 दिन कर दी गई है। पहले ये 17 मई से 20 जून तक 35 दिनों की थी। शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव आलोक जैन ने आज इस बारे में एक आदेश जारी किया। इसके अनुसार संस्था प्रधान की ओर से एक अवकाश के स्थान पर अब 2 दिन की छुट्टी दी जा सकेगी। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज के ही दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालेहा गाजी की रिपोर्ट।
1: 8 जून का दिन देश की सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। साल 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्रों के माध्यम से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए दुनिया के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
0: राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियों में आज कमी देखने को मिली और मौसम का मिजाज मिला जुला रहा। एक ओर जहां श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं पुष्कर में करीब 5 सेंटीमीटर बरसात हुई। इसके अलावा बीते 24 घंटों में अजमेर, बूंदी, कोटा, टोंक, झुंझुनू और भरतपुर में पानी बरसा। जैसलमेर में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 11 जून तक आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार जताए हैं। इस दौरान पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का उछाल आने की संभावना है। 11 जून से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आंधी बारिश की गतिविधियां एक बार फिर जोर पकड़ सकती हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में काउंटडाउन कार्यक्रम जारी हैं। इसके तहत लोगों में स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए रोजाना सामूहिक योग और प्राणायाम सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोगों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
2: जीवन के अंदर अपने आप को फिट रखना, ये खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम खुद स्वस्थ रखते हैं, शरीर से और मन से मजबूत होते हैं, तो परिवार मजबूत होता है, उससे समाज और राष्ट्र मजबूत होता है। चाहे हम पैदल चलें, चाहे हम सीढ़ियां चढ़ें, चाहे हम नियमित रूप से खाना खाएं, ऑयल कम करें अपने खाने के अंदर, ये सारी चीजें एक फिट इंडिया बनाता है, एक मजबूत भारत बनाता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हितों की विकास यात्रा बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया पूरी, 3 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। और आकाशवाणी की गौरवशाली सेवा के 90 वर्ष पूरे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 98% आबादी तक पहुंच। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की गई। 25 मई से शुरू हुआ ये अभियान 5 जून को पर्यावरण दिवस तक चलाया गया। इस दौरान जल संरचनाओं की साफ सफाई, जल संरक्षण के कार्य, मरम्मत और पुनरुद्धार संबंधी कामों के साथ

0: श्रमदान और जागरूकता गतिविधियां रखी गईं। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने भी पौधरोपण कर पक्षियों के लिए परिंडे बांधे। उन्होंने जाखम और भंवर सेमला बांध का निरीक्षण कर जल संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर मीडिया राउंड टेबल आयोजित की गई। जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों ने परिंडे बांधे और पौधरोपण किया। जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से मीडिया एक्सपोजर विजिट का भी आयोजन रखा गया। अभियान का समापन समारोह पूर्व मंत्री और निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी की उपस्थिति में रखा गया। माही बजाज सागर बांध से पीपल खूट अपर हाई लेवल बहुउद्देशीय कैनाल परियोजना का निर्माण कार्य इन दिनों अंतिम चरण में है। 1565 करोड़ रुपए की लागत की इस अनूठी परियोजना में बिना भूमि अधिग्रहित किए पाइपलाइन डाली गई है। इसके जरिए जमीन से 3 से 4 मीटर की गहराई पर पानी बहेगा और ऊपर किसान खेती करेंगे। परियोजना के पूरा होने से प्रतापगढ़ सहित उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। लक्ष्य हासिल होने से अगली रबी फसल के लिए 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। वहीं जल जीवन मिशन के लिए जाखम बांध तक पानी पहुंचने से प्रतापगढ़ शहर और उसके 554 गांवों के अलावा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के 1899 गांवों को पानी मिलेगा। जिले के करजू और रावतपुरा गांव में इन दिनों किसानों ने आधुनिक मल्चिंग तकनीक अपनाकर नकदी फसलों की खेती शुरू की है। इस तकनीक से टमाटर और मिर्च सहित अन्य नकदी फसलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। इससे किसानों को गर्मी के मौसम में बोई जा रही फसलों से अच्छी आमदनी की उम्मीद है। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने बीते दिनों बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया। इस साल अब तक जिले में ये सातवीं बड़ी कार्रवाई है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि इससे पहले भी एक अन्य तस्कर की करीब 3.25 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां फ्रीज की जा चुकी हैं। पुलिस ने अभियान के तहत नौगांव के देवलदी गांव स्थित चारागाह से भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए। जिला कलेक्टर ने बीते दिनों ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और जल संरक्षण तथा पौधरोपण कार्यों का निरीक्षण किया। इधर जिला स्तरीय बैंकिंग समीक्षा समिति की आयोजित हुई बैठक में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के उन्होंने निर्देश दिए। सांसद सीपी जोशी ने दिशा समिति की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बार अधिक मास के चलते जिले भर में धार्मिक गतिविधियां चरम पर रहीं। मंदिरों और आश्रमों में अनुष्ठान हुए। अक्षय तृतीया पर धार्मिक स्नान और दान पुण्य किए गए। आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ में आखा तीज के अबुझ सावे पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। वहीं मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद उल अजहा का त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई। जिले में बीते दिनों मौसम ने कई रंग दिखाए। कभी आंधी तो कभी बारिश की गतिविधियों ने जिलेवासियों को परेशान किया। वहीं बढ़ते तापमान और तपन ने भी लोगों को व्याकुल किए रखा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आई बारिश ने गर्मी का असर कम किया। इसके साथ ही प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लारला 12 साल रा कामकाज ना गरीबां रा भलारी विकास यात्रा बतायो। देश माए प्रधानमंत्री आवास योजना रा तहत हाल ताई 4 करोड़ बत्ता मकान बनाई चिया। प्रदेश हूँ राज्यसभा री 3 सीटां माथ चुनाव सारू पर्चा दाखिल करन रो काम पूरो भयो। 3 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। और आकाशवाणी री गौरवशाली सेवा रा 90 साल पूरा भया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रा आदर्श सागे 98% आबादी ताई पहुंच।

0: समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लारला 12 साल रा कामकाज ने गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो है। श्री मोदी कहो के इन दौरान देश कई बदलावां रो गवाह बन्यो। प्रधानमंत्री कहो के जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत सरीखा हर जतन रो मकसद जनता सारू पूरा मानू जीवनु तय करनो है। श्री मोदी कहो के गरीब तबका री जनता री जिंदगी बेहतर बनावण माय प्रौद्योगिकी की खास काम कीनो है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।

0: साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्माई कहो के वानी डबल इंजन सरकार प्रदेश में जनता रा भलारी योजनावां रे जरिए सेवा कर रही है। वे आज विधानसभा परिसर में राखी जी विधायक दल री मीटिंग में बोल रहा हा। श्री शर्मा कहो के प्रदेश में आखिरी छोर ताई रा हर एक जना रो विकास तय करियो जा रियो है। ध्यान जोग है कि राज्य में 5-21 जून ताई 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के अभियान चलायो जा रियो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह रा पहला दौर में सशस्त्र बलों रा और सुरक्षा कर्मचारियों रो मान कर रही है। जबरदस्त हिम्मत और समर्पण रो दर्शाव करने वाला जवाना ने ई कार्यक्रम में वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण नवाजा जा रहा है। जलसा में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई हस्तियां शामिल है। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स रा सदस्य देशां रा कृषि मंत्रियां री मीटिंग काल मध्य प्रदेश रा इंदौर में शुरू फैला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वे कहो कि 13 जून ताई फेवन वाली मीटिंग री सदारत भारत करेला। श्री चौहान कहो कि मीटिंग में किसाना री आमदनी, काम धंधा, खेतीबाड़ी सारू कर्ज और बाजार ताई पहुंच बधावन रा जतन रे बारा में चर्चा करी जावेला।
2: खाद्य सुरक्षा पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: देश में प्रधानमंत्री आवास योजना रा तहत हाल ताई 4 करोड़ 72 मकान बनाई चिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आ जानकारी दीनी। वे बतायो के आम मकाना में नल, पानी, रसोई गैस और शौचालय रा बुनियादी सुविधा मुहैया कराई चिया है। वे इनने गरीब परिवारों सारू मोटा बदलाव बतायो। केंद्रीय मंत्री कहो कि लाडला 12 साल में देश में सगला रो विकास और तेजी उमफियो है। विपक्षी पार्टियां रा इंडिया गठबंधन री आज नई दिल्ली में मीटिंग भी। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस रा आला नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी रा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस री अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रा नेता उमर अब्दुल्ला और NCP शरद पवार गुट री सुप्रिया सुले शामिल फिया। जयपुर विकास प्राधिकरण री ओरू आज जयपुर शहर में गैर कानूनी कब्जा हटावन री मोटी कार्रवाई करी जी। नंदपुरी अंडरपास हूँ रेलवे लेन रे बराबर री सड़क ने 80 फीट चौड़ीकरण सारू चलाई जिया। ई अभियान रा तहत 125 गैर कानूनी तौर हूँ करी जिया बनाई चुनाई रा काम हटाई जिया। ई दौरान एहतियातन 3000 पुलिस वाला तैनात करी जिया, जदका कई हलका माए मोबाइल और इंटरनेट जुड़ी सेवाएं बंद रखी जी। जयपुर रा संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार का नियम जारी हुकम रे मुजब बेगोई आ हलका माए इंटरनेट पाछो चालन री संभावना है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव सारू प्रदेश 3 सीटा माथ चुनाव बाबत पर्चा दाखिल करण री मियाद आज पूरी फेगी। राज्य रा मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन बतायो कि प्रदेश 3 उम्मीदवार 9 पर्चा दाखिल कीना। भारतीय जनता पार्टी री ओरू डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर आज नाम पाना। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण सामी पेश कीना। ये मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, हरजनता रा और कई नुमाइंदा मौजूद हा। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका श्री पूनिया वा माथे भरोसो करण सारू भाजपा रा केंद्रीय नेतृत्व रो आभार

0: तायो
1: लोकतंत्र के उच्च सदन में जाने का अवसर मिलेगा। जितनी भी बार पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, पार्टी ने मुझे भरोसा देके युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते उस कालखंड में जो अवसर दिया वो पार्टी ने दिया, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते, एक बार विधायक के नाते, पार्टी ने मुझे भरपूर अवसर दिया।
0: कांग्रेस पार्टी री ओर नीरज डांगी पहले पर्चो दाखिल कर चुका है। नाम 11 जून ताई पाछा लिया जा सके है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इस साल 12वीं कक्षा री परीक्षा सारू नंबरन रो सत्यापन करण और कॉपियां ओजू जंचावन सारू अर्जी देवन री विंडो 2-7 जून ताई लगातार चालते रहवन रो दावो किन्नो है। बोर्ड रे मुजब इन दौरान 1,60,000 विद्यार्थी 3,08,000 कॉपियां सारू अर्जी दीनी। CBSE भ्रम दूर करता थका बतायो के रोल नंबर नॉट फाउंड री जानकारी रो कारण ई प्रक्रिया रा पहला दौर माय कॉपी री फोटो कॉपी लेवन री अर्जी नी देवनु हो। बोर्ड रे मुजब नियमा रे मुताबिक कॉपी री स्कैन कॉपी हासिल करण सारू अर्जी देवन वालाई अगला दौर सारू पात्र वह है। राज्य री सरकारी स्कूलां माय गर्मी री छुट्टियां 28 जून ताई रहवेला। शिक्षा विभाग रा शासन उप सचिव आलोक जैन री ओर जारी हुकम रे मुजब गर्मी री छुट्टियां 17 मई 20 जून ताई 35 दिन री करी ची ही, जो अब बधार 43 दिन री कर दी री ची है। हुकम रे मुजब संस्था प्रधान री ओर एक री बजाय अब 2 दिन री छुट्टी दी जा सकेला। आज आकाशवाणी रा गौरवशाली 90 साल पूरा फेंक्या। साल 1936 माय आज ही रा दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने ऑल इंडिया रेडियो नाम दियो चियो हो। पेश है समाचार कक्ष डॉक्टर सालेहा गाजी री रपट।
2: साल 1956 माय इन रो आकाशवाणी नाम दियो जियो। आज देश भर माय आकाशवाणी रा 551वा केंद्रा रे जरिए 23 भाषावा और 146 बोलियां माए कार्यक्रम प्रसारित करिया जावे है, जो देश री 98% आबादी ताई पूगे है। इस आगे ही आकाशवाणी रो विदेश सेवा विभाग दुनिया रा 132 देशा माए भारत री आवाज पुगारियो है। आकाशवाणी रो समाचार सेवा प्रभाग बहुजन हिताए बहुजन सुखाए रा आदर्श सागे रेडिया प्रसारण रा सब ऊंचा मानकारी पालना करता थका 2400 घंटा सगली भाषावा और बोलियां माए समाचार और समाचारों जुड़िया कार्यक्रम प्रसारित करे है।
0: अरब मौसम राज्य रो कई हल्का माए आंधी बारिश री हलचल आज थोड़ी कम रही। इन कारण श्रीगंगानगर माए पारो 44 डिग्री सेल्सियस ताई पूग गयो। जैसलमेर माए जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। दूजी कानी अजमेर कने पुष्कर माए करीब 5 सेंटीमीटर बरसात हुई। लाडला 24 घंटा माए अजमेर बूंदी कोटा टोंक झुंझुनू और भरतपुर माए में बरसियो। मौसम विभाग 11 जून ताई आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए कमी रा आसार जताया है। इस दौरान उगनी और उत्तराद उगनी हलका रे अलावा मौसम सूखो रेवन री संभावना है। रजरा आतुनी हलका माए पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चटबारा आसार है। 21 जून न मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए प्रदेश भर माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम चल रहा है। इन अतेत जीवन रा स्वस्थ तरीका न बधावो देवन रा मकसद रोजिना योग और प्राणायाम रा सत्र रख्या जा रहा है। युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जनताओं आ कार्यक्रम माय भागीदारी करण रे अरज कीनी है।
3: जीवन के अंदर अपने आप को फिट रखना, ये खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम खुद स्वस्थ रखते हैं, शरीर से और मन से मजबूत होते हैं, तो परिवार मजबूत होता है, उससे समाज और राष्ट्र मजबूत होता है।
0: आखिर माय खास समाचार एक और फेरू सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लाडला 12 साल रा कामकाज न गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो। देश माए प्रधानमंत्री आवास योजना रा तेत हाल ताई 4 करोड़ 32 मकान बनाई चिया। प्रदेश हूँ राज्यसभा री 3 सीटा माथा चुनाव सारू पर्चा दाखिल करण रो काम पूरो भियो। 3 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। और आकाशवाणी री गौरवशाली सेवा रा 90 साल पूरा भिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रा आदर्श सागे 98% आबादी ताई पहुंच। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: ये मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: ग्रामीण जगत री अडिक राखन आला सगला ग्रामीण और किसान भाई बहना ने आजरा अश्वनी व्यासरा
1: और बजरंग सारस्वतरा
0: घना घना राम राम।
1: अश्वनी भाई ने भी मारा घना घना राम राम।
0: राम राम बजरंग भाई, राम राम। आज चौपाल रे मायने थे आया हो तो जरूर अबार चोखी चोखी जिकी योजना वा चल रही है बीरी बातचीत हो सी थे बहुत चोखी चोखी बाता किसान भाई ने बता सो और छप्पो थाने हाथ में जिको है वो आ ही कह रहे है कि बजरंग भाई करने चोखी जानकारियां मौजूद है।
1: हाँ सुनी भाई, अपाखने जी की बात है, कामरी बात है, बा बताऊं नहीं है। और दूजी बात है, आपा दूजी बात सीखा दूजे मिनख मिनख जद मिले तो अच्छी बात ही सीखे। अपा ने इर माथे जोर देना है अश्वनी भाई। और अबार थाने बताऊं तो समय सारू बात जकी है। अबार केंद्र सरकार रो एक अभियान चलावड़ो है, खेत बचाओ अभियान, जको 1 जून सुलेर 30 जून 2026 तई यानी पूरे 1 महीने चालेला। ओ जको अभियान है, जून रो महीनो है, खेत तैयार हो रिया है तो अपर खेतरी माटी खराब हो रही है, जल जको है पानी है बीरो संरक्षण कोनी हो रही होनी, खेती में लागत बढ़ रही है, आमदनी कम हो रही है, ए सब कई बातों ने सोच अपर केंद्र सरकार एक अभियान तोरियो है जिन रो नाम आपने मैं पहली बतायो, खेत बचाओ अभियान 1 जून सु लेर 30 जून तई।
0: तो बजरंग भाई और जो को सरकार अभियान चला रही है खेत बचाओ अभियान, इरे मायने किसान भाइयों ने सरकारी अभियान रे मायने किया सहयोग करनो है, किया बिया ने आपरी खेत री मिट्टी रो, खेत में उगाने वाली फसल रो, फसल चक्र रो, मौसम रा जिका भी पर प्रभाव है बीरो ध्यान रखनो है और नई तकनीक रे सागे किसान भाई किया जुड़ उन्नत और प्रगतिशील खेती कर सके है। तो बिरे बारे में थोड़ो सो किसान भाई ने और थे बताओ ताकि आपने किसान भी प्रगतिशील किसान आदि श्रेणी में आ सके।
1: देखो सा, आपारी केंद्र सरकार पूरी तरह फोकस करोड़ो है कि खेतरी माटी है बा बचाई जावे, रासायनिक उर्वरक का उपयोग है वो कम सु कम करियो जावे, संतुलित करियो जावे या पछे जैविक खेती ने बदे पो दियो जावे। और भी मोकड़ी बाता हैं जिके हूँ खेती बाड़ी है बा उन्नत खेती हो सके, किसान भाई री आमदनी बढ़ सके, लागत में कमी आ सके, ए सब बाता ने सोच वो अभियान चलाई जो है। अपारा केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान, वे मध्य प्रदेश रे एक जिला रायसेन सु इरी शुरुआत खुद कर चुके। उद्देश्य एक ही है

0: कि खेत ने रासायनिक उर्वरक कार्य खर्चे सूखियाँ बचावा, माटी ने खराब होने सूखियाँ बचावा। तो अश्विनी भाई, माटी बर्बाद नहीं होवे, खेती बर्बाद नहीं होवे, खेती भार नहीं लागे, धरती बर्बाद नहीं होवे, ऐसा बाता ने सोच और धरती माता सारू ओ अभियान चलाई जो है। इन मायने होशी हो के 1632 टीमा बनाई जी है। ऐ सगड़ी टीमा कृषि वैज्ञानिक आर मायने है, कृषि विज्ञान केंद्र रा विशेषज्ञ भी है इन टीम रे मायने, और ICAR रा अधिकारी भी इन टीम में शामिल है। ए टीमा 30 जून तई गांव गांव जावेला, तारीख तय करोड़ी है, टाइम टेबल बनियोड़ो है, किसी टाइम किसे दिन किसे गांव में जावेला और आप रो संदेश देवेला, वो सब निश्चित करी गयो है। यानी कि अब वैज्ञानिक खुद खेत तई आवेला। पहले किसान भाई कृषि विभाग रे करे मैं चक्कर काटता, अबे जे की सलाह है, यानी कृषि विभाग खुद अपारे खेतरी बाढ़ता ही आ रही है, खेतरी सींगता ही आ रही है, और जको अभियान है वो किसान भाया सारू एक बहुत बड़ो वरदान बनर आ रही है।
1: तो बजरंग भाई, इरो मतलब हो यो कि देखो, अब आर जनगणनाला भी घर घर जा रहा है और कृषि विभाग रिया जी की टीम है, इरा लोग भी घर घर जासी, तो अपन वो ध्यान रखना है कि गाँव ढाणी खेत में जिका अपना घर है बठे अगर इसी टीमा आवे तो बियाणों अपन पूरा स्वागत करना है, और मिट्टी रे बारे में भी जिकी जिकी जानकारी आपा सोचावे बा जानकारी बियाने देनी है। अगर वे मिट्टी को सैंपल लेना चाहे तो आपने खेत तक भी आने ले जा वो सैंपल देना है, ताकि वे वैज्ञानिक विधि से आपने आ बता सके कि आपने खेत रे वास्तर किसी फसल उपयोगी है, किसा किसा पोषक तत्व अपनी खेतरी मिट्टी में कम हो गया, और आपने मिट्टी रो उपचार किया करना है, बिर पोषक तत्वारी बढ़ोतरी किया होसी, और किसी फसल अपने खेत मायने चोखो मुनाफा दे सके, आ सगली जानकारी अपने बा टीम देसी। तो जागरूकता रे सागे अपने भी टीम रे सागे लागर खुद रे खेत में भी आ जांच करानी है, और गांव रे आस पड़ोस अपने जितना भी भाई बंद है बिया ने भी आ जानकारी देनी है, ताकि वे भी आप रे खेतरी पूरी जांच करवा सके और पूरा लाभ आपकी फसल में ले सके। क्यों बजरंग भाई?
0: बिल्कुल अश्विनी भाई, आपने बताऊं मैं कि वो अभियान अबार पेल्ड चरण में है, यानी कि बाद में भी चलेला पर अबार वो मौको है। पेलड़िया में आपा इरो लाभ लेवा, आपा खुद जागृत होवा, दूसरा ने जागृत करवा, इसी तो होड़ ही कोनी।
1: वाह बजरंग भाई, बहुत चोखी थे जानकारी दी कि किया किसान भाई आपरा खेत बचा सके। लेकिन बजरंग भाई देखो, जानकारी तो थे बहुत चौकी चौकी आज ले रहा है, और कई कागज आने हाथ में भी है, लेकिन बजरंग भाई ई कार्यक्रम रे माने आपा अब आगे बढ़ कहीं सुना
0: सुने भाई, खेती रो अबार आपा गर्मी री जुताई आपा कर रहे हैं, हाँ आपा किसी फसल बोवाला बीज री उर्वरकारी सब री तैयारी कर रहे हैं, हाँ और जेठ रो महीनो चाल रहे है, तो आपार तो अठे गीत भी गाई जो है, लागियो लागियो जेठ असाढ़, तो ओई गीत ले रहा हूँ, आओसा सुना।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: वाह बजरंग भाई, मौके रो गीत था सुनायो लाग्यो लाग्यो जेठ।
3: और अश्विनी भाई गीत रे बात तो संदेशा भी सुने आपा काम रहा। और अबे काम री बात आ है कि अबे जिया पहली बतायो कि ग्रीष्मकालीन जुताई आपा कर रहे हैं कई भाई कर ली और इरो खासो महत्व है। तो ऐसे बात चालती रहे अश्विनी।

0: पण खेतरी गेरी जुताई अपा करा तो कई कई यंत्रा सु करा, कई कई उपकरणा सु करा, आज ई बारे में की अपा बातड़ी करा।
1: देखो बजरंग भाई, ई गर्मी रे मौसम में खेती शुरू करने से पहला अगर आप थोड़ी सी गहरी जुताई खेतरी कर ले तो बीरो एक बहुत बड़ो लाभ है कि एक तो सूरज री रोशनी और ऊष्मा जी की है बस जमीन रे मायने मिट्टी रे माध्यम से चली जावे तो मिट्टी जी की भुरभुरी हो जावे। दूसरो ओ कि मिट्टी रे अंदर जिका छोटा छोटा जीव है जिका फसल ने खराब कर सके वे धूप री ऊष्मा से खत्म हो जावे। तो जुताई जिकी है बा करने से पहला गुड़ाई और निराई आपा जिकी खेत में क्रिया करा हाँ बा भी बहुत ज़्यादा जरूरी है।
0: अश्विनी भाई आप जी बतायो तो गर्मी री जुताई है आ खेतरो एक तरह कायाकल्प कर देवे। अब अपने इसो किसो यंत्र चलाना चाहिए जिको नव सूलेर 12 इंच ताई माटी है बिना उथड़ पुथड़ कर दे। तो पहलो यंत्र है MB प्लाउ यानी मोल्ड बोर्ड प्लाउ। ओ जिको MB प्लाउ है ओ माटी पलट हड़बी ने कहवा हाँ ओ 12 सूलेर 15 इंच ताई यानी 1 फुट उलेर 1.25 फुट ताई गहरी जुताई कर देवे। नीचे री कड़ी माटी है बा ऊपर ताई आ जावे, ऊपरी माटी नीचे जावे अपनी। अब देखो आपर बीकानेरी रेतीली सख्त जमीन है तो इन मायने वो अच्छी तरह चाले है और इरा जिका फाल है वे माटी ने पूरी तरह पलट देवे। पुरानी फसल री जड़ खरपतवार कीटारा अंडा प्यूपा लार्वा दीमक सगड़ा धूप में मर जावे। सख्त परत है माटी री बात टूट जावे और पानी नीचे ताई जावे इस वास्ते अपने 50 सूलेर 60 HP ताई रो ट्रैक्टर चाहिए। अश्विनी भाई दूजो यंत्र है सब सोयलर। अब अपने नाम ही समझ आ जावे सब सोयल यानी नीचे री माटी ओ हड़ कोनी चलावे बल्कि बिने चीर देवे। ओ 18 सूलेर 24 इंच ताई यानी 2 फुट ताई जमीन है बिने चीर देवे। 2 फुट ताई री नीचे री माटी ने ऊपर ताई ले आवे उथल पुथल कर देवे, माटी पलटे कोनी। इरो काम है हार्ड पेन तोड़ना। लगातार डिस्क हैरो चलाने सु जमीन रे नीचे री सख्त तवे जिसी परत है बा बन जावे, जड़ नीचे कोनी जावे नहीं। सब सॉइलर है ओ भी परत ने तोड़ देवे। अश्विनी भाई जिके खेता में पानी रुके कोनी सीधो बह जावे बार वास्ते ओ वरदान है। अपा एकर चलावा तो इरो 3-4 बरसा ताई असर बनेवड़ो रेवे और ओ 55 HP रो ऊपर रो ट्रैक्टर इरो वास्ते चाहिए। अश्विनी भाई तीजो यंत्र है चीजल प्लाउ। ओ MB प्लाउ और सब सॉइलर रे बीच रो यंत्र है ओ 9 सूलेर 15 इंच ताई गेरो जावे है। अब इरी भी कई खास बातें हैं जिनसु आपा इन्हें काम में लेवा हाँ। तो ओ जको यंत्र है इरा नुकीला शेंक माटी ने पलटे कोनी बस बिने ढीलो कर देवे। फायदो जको है वो ऊपरी नमी और जीवांश बिरा उड़े कोनी। डड़ान आड़े खेत में माटी बहने सु बच जावे, खरपतवार भी कट जावे और ओ 45 सूलेर 50 HP ट्रैक्टर सु चाल जावे यानी कि कम डीजल घणो काम। और चौथो यंत्र है डिस्क प्लाउ। जिको डिस्क प्लाउ काई है ई बारे में आपकी बताओ
1: भजन भाई। डिस्क प्लाउ जिको यंत्र है ओ पथरीली कंकरीली और जड़ आली जमीन रे वास्ते बहुत चोखो काम करे। MB प्लाउ रे फाट टूट जाने पर डिस्क प्लाउ आपा चला सका हाँ। बड़े बड़े तवे जिसा 10-12 इंच तक मिट्टी ने अलट पलट देवे। जंगल दी झाड़ जिकी है बिने साफ करने में आप बहुत चोखो काम करे। 35 HP से लेर 75 HP तक रे ट्रैक्टर में आ लाग परी और जिकी अपनी खेतरी मिट्टी है बिने चोखी तरह उथल पुथल कर और तैयार कर देवे कि आप भी पर चोखी फसल ले सका।
0: तो कुल मिलाकर बात आ समझ में आई मने कि MB प्लाउ है वो पूरी माटी पलटनी होवे, खरपतवार बेसी होवे, जद काम रो है। सब सोयलर यानी नीचे सख्त परत तोड़नी होवे, पानी रोकनो होवे जद। फिर चीजल प्लाउ नमी बचावनी होवे, कम डीजल में काम लेवनो होवे तो वो काम रो है। डिस्क प्लाउ है पथरीली जड़ आड़ी जमीन होवे तो ए 4 बांतरा आपा यंत्र बताया। सबसे जरूरी बात है कि गहरी जुताई अपन 304 वर्षा में

0: एकर ही करनी चाहिए। हर साल आपा करा गहरी जुताई तो ऊपरी उपजाऊ माटी री जी की संरचना है बा बिगड़ जावे। आ जुताई अपने मई जून री तेज धूप में करनी चाहिए ताकि सब तरह का कीट सब तरह का रोग मर जावे। रसमुनि भाई एक खास बात और है कि आप सरकार कृषि यंत्रीकरण योजना में आ सब यंत्रा सारू 40-50% तय अनुदान भी देवे हैं। तो आप नज़दीकी कृषि कार्यालय में आप संपर्क करो, ई मित्र सु ऑनलाइन आवेदन भी कर सको।
1: वाह बजरंग भाई, आज तो यहाँ लाग रहे है कि मारे साथ है बात करने वास्ते कोई कृषि वैज्ञानिक ही आ गया थी। तो विस्तार सु एक एक यंत्र रो नाम बीरी जानकारी और किया बिने काम में लियो जावे और खेतरी मिट्टी पर बीरो काई प्रभाव है इतो विस्तार सु थे बतायो। तो लोग थाने सुनन वास्तर बड़े चाव सु बैठा है, लेकिन बजरंग भाई बे ओ भी चावे कि थे गीतड़ लो कोई सुनाओ तो बताओ किसो गीता थे दर्शक ने सुना सो।
0: हलरी बात चाली नहीं तो आगलो गीतड़ लो भी गणपतलाल डांगीरो गायोड़ो है। हल हाको महादेव।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और पानी के भीतर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। महासागर पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करते हैं, लेकिन आज वो गर्मी, अम्लीकरण और प्रदूषण जैसे बड़े संकटों का सामना कर रहे हैं। कोरल रीफ, मैनग्रोव और समुद्री घास जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरण तेजी से नष्ट हो रहे हैं, लेकिन महासागर, हवा और लहरों से स्वच्छ ऊर्जा, स्वस्थ मछली पकड़ने के जरिए और समुद्री जीवन के लिए संरक्षित क्षेत्र देकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद भी करते हैं। इसलिए जलवायु को स्थिर और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए महासागर की रक्षा करना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ ने कुछ ही दशकों में लगभग 50% कोरल खो दिए हैं।
3: वाह सा सुने भाई, आप ओ गीतरलो सुनो, हरजस सुनो, हड़ हाको महादेव, अरे संदेशा भी सुने। अरे देखो आप पहली बात करता है हड़ री ऐजे का कृषि यंत्र है, आरी गीतरलो भी अपन ने सुनने मिलो महादेव रो पार्वती रो, तो आनंद ही आई क्यों। अब आप रे गया किसान, तो खेती बाड़ी जकी है आ आप करा है। और असुने भाई, सबसे पहली कार्यक्रम ने शुरुआत में बात करी ही केंद्र सरकार रो खेत बचाओ अभियान, जिके ने फोकस करियोड़ो है 8 बातों पर, यानी एक तो खेतारी माटी ने बचावनी, रासायनिक उर्वरका रो उपयोग संतुलित रूप में करना, और जल संरक्षण यानी कि बूंद बूंद रो उपयोग है वो आछो उपयोग करना, अपने बीरो पूरो उपयोग करना। तो अगली जकी चर्चा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बाबी इनसु जुड़ियोड़ी है, खरीफ री बुआई दो समय नजदीक आ रियो है, और आज की पानी बचाने वाली योजना है, सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इरो शॉर्ट में नाम है PMKSY, इरो नाम है, इरो नारो है हर खेत ने पानी, यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी पर बूंद हर एक बूंद सु बत्ती उपज बत्ती फसल। आ योजना 2015 में शुरू करी जी ही, इरो उद्देश्य एक ही है कि सिंचाई रो रकबो बढ़ावना, पानी री बर्बादी ने रोकनी, और खेत रे पानी रो सही उपयोग है वो किसान भाइयों ने सिखावना, किसान भाइयों ने प्रेरित करना, जागरूक करना और प्रशिक्षित करना। तो अश्विनी भाई, इरा 4 घटक है। पहलो है AIBP, यानी तेज गति से सिंचाई परियोजना में पूरी करनी, और दूजो है हर खेत ने पानी, यानी नहर तालाब नलकूप से खेत ताई पानी पुगावना, और तीजो सबसे जरूरी है यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि हर बूंद से बत्ती उपज बत्ती फसल। इन मायने ड्रिप और स्प्रिंकलर आवे है, बीकानेर जिसे कम पानी वाले क्षेत्र में तो ओ वरदान बनर साबित होयो है। और चौथो है वाटरशेड विकास, अपर एठे खड़ीन नाडी टांका फार्म पोंड घना सु घना बनार बिरखारे पानी ने रोकनो, माटी ने रोकनी, खेत बचावनो और माटी रे कटाव ने रोकनो।
4: आ तो जानकारी बजरंग भाई थे बहुत चौकी दी, लेकिन सागे सागे किसान भाई एक बात और जाननी चाहे के आपने कितो अनुदान मिल सी, तो ड्रिप स्प्रिंकलर पर 55% रो अनुदान मिले है, छोटा और सीमांत किसाना ने 55% और बाकी सगला ने 45

0: प्रतिष्ठित है। राजस्थान रमा ने राज्य सरकार टॉप अप दे परो और इन्हें 70-80% तक अनुदान की व्यवस्था करोड़ी है।
1: अश्विनी भाई, 1,00,000 ताई रो आपा सेट लगावा तो 70-80,000 रुपया ताई सरकार आपा ने दे देवे, तो पछे और काई चाहिए? किसान ने सिर्फ 20-30,000 रुपया लगावना पड़े है। अब चाहे फवारो होवे, चाहे मिनी स्प्रिंकलर होवे, भले ड्रिप होवे, सगड़ा माथे लागू है। अब ये फायदा आपा गिणा तो पहलो फायदो है कि 40-60% ताई पानी की बचत होवे। दूजो फायदो, खाद सीधी जड़ ताई जावे, 30% ताई खाद है बा बचे। तीजो है खरपतवार कम लागे, मजूरी कम लागे। और चौथो है पैदावार में 20-50% ताई आपने उपज है बा बेसी मिले। और आपने बीकानेर में जिया मूंगफली, ग्वार, बाजरो, हरी सब्जियां हैं, ऐ सब ड्रिप सिंचाई रमाने सफल है। रेतीली जमीन में तो पानी रुके ही कोनी और ड्रिप सू बूंद बूंद है बा जड़ ताई सीधी पुगे।
0: और किसान भाई जी का है, अगर आवेदन करना चाहे तो राज किसान साथी पोर्टल या ई मित्र रे माध्यम से जमीन दी जमाबंदी, आधार, बैंक पासबुक और सिंचाई राष्ट्रोत ऐ सगला कागज ले जावे। पहला आओ पहला पाओ रे आधार पर कृषि विभाग रे द्वारा ओ करियो जा रियो है, जिके में अधिकारी खेतरो निरीक्षण करे और बिर बाद में आप अधिकृत कंपनी रो सेट लगा सका। पैसा जी का है बस सीधा DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपने खाते में आ जावे।
1: अब एक बात ध्यान रखना है कि सूक्ष्म सिंचाई सारू आपारे खेत में पानी रो स्थायी स्रोत है वो घनो जरूरी है, जिया के बोरवेल, कुओ, डिग्गी, फार्म पौंड अब की तो आपारे होना चाहिए। और एक बात और, फार्म पौंड योजना भी इनसे जुड़ी हुई है। खेत में आप 20x20x3 meter पौंड बनावा तो सरकार 1,35,000 रुपया ताई रो अनुदान देवे है। प्लास्टिक लाइनिंग करवावा तो अलग से पैसों मिले है। कुल मिलार PMKSY रो मतलब है आपा सोर्स बनाओ, खेत ताई पुगाओ, बूंद बूंद रो इस्तेमाल करो, पानी है तो आपारो भविष्य है।
0: वाह बजरंग भाई, बहुत चोखी जानकारी थी दी। लेकिन अब देखो कार्यक्रम में सुरसा आपा अगलो गीत
1: सुनाओ सर।

0: वाह सासुनी भाई चरखे आड़ो गीत सुनायो। और देखो चरखो जेको है ओ अपारो एक साथी है, अपारे जका बूढ़ा माइत है घरे बैठा है, खेती बाड़ी छोड़ दी, अपारे घरा में चौकिया मात है, ओ जेको है ओ खादी रो सूत रो धागे रो ओ अपारो एक साथी है, प्रतीक है, स्वदेशी ने बढ़ावो देवे है। और इरो जिको है योगदान आपा कदई नहीं भूल सका, पर आज़ादी रो संग्राम आज़ादी रो जिको आंदोलन हो, महात्मा गांधी जी चरखो खुद चलावता है, दूसरा ने प्रेरणा भी देवता है, तो चरखे रो तो आपा कहीं जितो बतमा भी तो ही कम है।
1: अब बजरंग भाई आपा आगे बात करा, खेत री आपा बात करी, खेत री जुताई री बात करी, यंत्रा री बात करी, लेकिन खेत रे मायने जिकी आपा उत्तम कार्बनिक खाद है पशुआ री मींगणिया बिधी अगर आप बात करें तो आ चीज़ तो बहुत ही छोटी है और यहाँ लागे कोई काम री को नहीं, लेकिन आ खेत रे मायने मिट्टी वास्ते फसल वास्ते एक वरदान बन जावे।
0: सुने भाई शाणा लोग के वे है कि वो तो काड़ो सोनो है।
1: अच्छा इन्हें काड़ो सोनो कहा गया है।
0: तो ए जकी मींगणिया है यानी कि काड़ो सोनो बकरी और भेड़ री मींगणिया है वो एक भांतु काड़ो सोनो है भी, या तो आपा इन्हें बेकार समझ फेंक देवा, पण आपा शाणा लोग बात करा माइता सु बात करा तो अपने ध्यान पड़े कि आ सबसु अच्छी कार्बनिक खाद है ए मींगणी। वैज्ञानिक भाषा में बतावे तो मींगणी में नाइट्रोजन होवे 3% फास्फोरस 1% पोटास और 2% तई होवे है, सागे ही इन मायने जिंक लोहा मैंगनीज एड़ा कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी भरपूर होवे। अश्वनी भाई सबसे बड़ी बात आ है कि मींगणी की तासीर होवे है गर्म, सर्दियां में आपा खेत में मींगणियां घाला तो जमीन गर्म रहे, फसल बेगी बढ़े और गोबर की खाद सु भी तेज असर करे। सागे सागे आपारे बीकानेर जैसलमेर में तो आंसू जुड़ियोड़ी कई भांतरी कहावता भी चले है जिया के जीण रहे भेड़ बकरियां है बारा खेत हरिया भरिया है, रात ने भेड़ बकरिया ने आपा खेत में छोड़ा तो दिनों के ताई खाद बुआई दोनों हो जावे और सीधी मींगणी घाला नहीं आपा खेत में तो सोनी भाई दीमक लाग सके, तो इर सारू आपा ने जतन ओ करनो है। तीन भांसु जतन करना है, पहलो जतन है सड़ार डालनी है आपाने अने मींगणिया ने, यानी कि एक कुंटल मींगणी में 20 किलो गोबर थोड़ो यूरिया और पानी घादर आपा ढक देवा, 40-50 दिन में बढ़िया खाद तैयार हो जावे।
1: सागे सागे बजरंग भाई दूसरो तरीको जिको है वो वर्मी कंपोस्ट रो है, तो मींगणिया जी की है बिया ने पहला आपा

मिंगणा जकी है वह केंचुआरी केंचुए द्वारा खाली जावे और 60 दिनारे माने काली और भुरभुरी खाद में बदल जावे। इमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होए और इस मिट्टी रे जल ने धारण करने की क्षमता भी बढ़ जावे। तीसरो जिको तरीको बजरंग भाई थे बतायो वो हो कि मींगणी री तरल खाद 5 किलो मींगणी ने 100 लीटर पानी में भिगोर और 7 दिन बाद छाण 1:10 पानी मिलार और आपा फसल रो छिड़काव करा तो तुरंत असर करे। अब बजरंग भाई सुन सा आपा कार्यक्रम में अगलो गीत।

0: करीर गीतड़लार संदेशार बहुत बढ़िया आजरो टाइम रहो। लेकिन बजरंग भाई अब टाइम जी को है नहीं वो है विदा लेने रहो।
1: सुनी भाई बात ना तो मोकली है मन घणो ही करे है पर अबे समय की मर्यादा है तो समय सारू आवनो समय सारू जावनो। आज रो कार्यक्रम संपन्न करने री आज्ञा देव सा आपरे साथी बजरंग सारस्वत
0: और अश्विनी व्यासरा आज रा घना घना राम राम, राम।

ये था ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्रामीण जगत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर शाम के 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में भक्ति गीत। सुनिए कार्यक्रम का पहला भक्ति गीत। गायक कलाकार हैं विष्णु रामचंद्र और इस गीत की रचनाकार हैं मीराबाई।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में अब वाणी जयराम का गाया ये भक्ति गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में अब वाणी जयराम का गाया ये भक्ति गीत।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्स पर रात्रि के 8 बज रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम आकाशवाणी भोर से पहले भोर के

0: आकाशवाणी है। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप। आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ ये विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, थैंक यू।
1: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूँ।
3: नमस्कार। यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने वर्षों से चल रहा है, 90 साल से हम आकाशवाणी की बात कर रहे हैं और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखे कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे

0: वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत द्व्यर्थी गीत नहीं आए। तो खैर ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युववाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी और मेरी पहली कमाई भी युववाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युववाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
1: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद है, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है, मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहां आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया है आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है, और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार, राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी, अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है, और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं, दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर TV चैनल्स, विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना, आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है, वो आकाशवाणी से सुनता है, यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ TRP की रेस में नहीं है,

0: बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया, यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी टीआरपी की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, इतनी गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है जहाँ पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये पीटीआई के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी, माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ाया भी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी का हूँ जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे, तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्रलोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा, मनोरंजन का साधन। महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार, जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकी नंदन पांडे,
1: रामानुज प्रसाद सिंह,
2: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पामेला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की, और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने FM रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए, लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपके आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया, इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का। और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंडोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश, गोवा CM डेड। अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
1: अच्छा।
2: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म करेंगे। तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजे ने कहा सर

0: हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूं आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सैटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा सीएम डेड, उसका फॉलो अप क्या है। तो रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
1: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था। उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोलकी पोल। ढोलकी पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने FM चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लगना गया शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको आज सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स, रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो टीवी के चैनल्स हैं, उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं, और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में तो किया, अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही है, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम है जो आपके दिलों में अभी घर की हो।
2: देखिए 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा। और भारत के आजाद होने के बाद ही वे यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
1: हमारे आकाशवाणी में आज भी वो स्टूडियो है
2: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहां महात्मा गांधी आए थे
1: जी।
2: इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा की बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खास तौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थीं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई, और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा। 3 तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हित

0: बहुजन सुखाई की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो, या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो, और खास तौर पर संगीत हो। जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया, और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में, थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है, और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़े शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है, और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक। कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न का टोला है। सारे रस हैं इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो, या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल, जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ, नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब भारत चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे, एक तरह से हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा, इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया, जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी, और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवावस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे कि इनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं?
2: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन। उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशंस या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं, और इन कार्यक्रमों को हर छात्र युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल, एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं। तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कॉमेंट्रीज, और हॉकी की कॉमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था। हॉकी

0: बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के चाहे नीरज जी हो, कवियों
1: को, पंत जी हो, सबने, महादेवी वर्मा, सबने,
0: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद, और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे, जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे,
1: हाँ।
0: ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं, गीत संगीत तो सुनते ही थे। और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था। और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी, तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सवैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980-82-83 के दशक से उसको करता आ रहा हूं। और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को, और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया, तो वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा, मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उस समय बड़ा मुश्किल था आज के समय के हिसाब से, अपना जो छात्राएं हैं उनसे खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गया लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मैटर्न रिकॉर्ड हो जाता था वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था, लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से बात करते थे, लोगों से भी बात करते हैं। कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को किस रूप में देखते हैं आप आज?
2: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया, विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती थी, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे, और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर, हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर करती है पाकिस्तान की सेना, तो यहां से एक स्पेशल वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे

0: आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है। आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे। आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है। चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा। उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है। पहले जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था। हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था, तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी। आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
1: बिल्कुल।
2: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह के आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: तो इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता जो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
3: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ। रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर पर 11वीं-12वीं को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय टंडन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
1: जी टंडन साहब,
0: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको

0: पहुंचना था और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर ना और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है। सरकार के पक्ष का भी नहीं है और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है, मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम आएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइश वेले है, ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
1: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, टंडन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पे जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है, और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्ज्वल होगा।
2: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछा चाहे जरा बताएं। जी आप बताएं।
3: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपकी भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम मेरा नाम मनीष आजाद रेडियो वाला ही है और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ।
2: इसीलिए रेडियो वाले आपका नाम है
3: सर, ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए?
1: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
2: जी आप पूछिए सवाल।
4: जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
4: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन। तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है, वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाएं, और तो वो मेरे

0: मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
1: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
0: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
1: सखी संगीत चल रहा है। महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर के चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो व्यंग के कार्यक्रम उस पर जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाना सिखा रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कहीं पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह कह रहे। वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा, तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय है। जी, मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत एक कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
2: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही। और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ। इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
1: जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जाहिर इतने सारे अखबार आते थे, उनका मीडिया क्लिपिंग्स आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासतौर समाचारों के प्रति।
2: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है।
1: बिल्कुल।
2: और जितने लोग भी कार से सफर
1: सुबह 8 बजे शुरुआत होती है वो
2: तो
1: रेडियो,
2: वो इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है, स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का। तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं। तो ये जो सुविधा आई है, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं कर
3: सकता। नमस्कार, मैं एज इंजीनियर, यहाँ मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
1: अच्छा।
3: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे, सरदार जी होते थे। लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया, मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है। आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इतना ही।
1: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है। और आप भी आइए।
4: मैम, मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
5: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और PhD रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स थे उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है विशेष रूप से, आकाश वाणी के पास जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना और रिसर्च करनी है,
1: बड़े-बड़े तो संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
5: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी का भी मैंने कुछ 2-3 पंक्तियां लिखी हैं अपने मेरे कवि बनने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
6: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
7: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका, प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन

0: पालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियमन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक, प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
2: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
3: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
4: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में

8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: To develop the industrial ecosystem.
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे newzonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।

0: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
1: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
0: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
2: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
4: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

फिल्म का नाम करिश्मा कुदरत का, गायक कलाकार साधना सरगम और सुरेश वाडकर। और अब सुनिए जसपेंद्र नरूला और संजीवनी को। फिल्म का नाम है करीब। गीतकार राहत इंदौरी और संगीतकार अनु मलिक।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब सुनिए पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत।
1: निर्भय

ये थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले, फिल्म का नाम काजल, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि। अब सुनिए फिल्म कल आज और कल से शारदा को, गीतकार रवि और संगीतकार शंकर जयकिशन।

ये थे आशा भोंसले और मन्ना डे, फिल्म का नाम काला बाजार, संगीतकार एस डी बर्मन। और अब सुनिए मजरू सुल्तानपुरी का ये गीत, एस डी बर्मन की संगीत रचना, फिल्म का नाम काला पानी, गायिका हैं आशा भोंसले।

ये थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर, फिल्म का नाम काला पत्थर, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार राजेश रोशन। अब सुनिए कलाकार फिल्म से किशोर कुमार को। गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

गए कलाकार मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम काली घटा, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब खेल प्रेमी श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेल जगत आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

0: खेल जगत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आप सुनेंगे फुटबॉल खिलाड़ी शाहिद हुसैन मंसूरी से बातचीत। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का अंशदान है।
1: नमस्कार साथियों, आज के मेहमान हैं शाहिद हुसैन मंसूरी। आप फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। शाहिद भाई, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: थैंक यू सर।
1: शाहिद भाई, सबसे पहले तो यही जानकारी चाहते हैं कि फुटबॉल आपके लिए क्या है।
2: सर, पहले जब खेलता था, जब फुटबॉल पेशन था, जुनून था,

0: अब फुटबॉल ब्लड में घुल मिल सा गया, मतलब अब जब तक जिंदा रहेंगे जब तक फुटबॉल के लिए रहेंगे। ऐसा है कि मतलब चित्तौड़ से कोई ऐसा लड़का ऐसा खिलाड़ी जाए ताकि चित्तौड़गढ़ का नाम शायद मैं उतना रोशन नहीं कर पाया हूँ उससे ज्यादा अच्छा रोशन वो कर दे। और मेरी लगातार कोशिश यही है पिछले 8 से 10 सालों से, कोई एक प्लेयर या दो प्लेयर यहाँ से ऐसे जाए इंडिया टीम के लिए ताकि जो मेरा सपना है वो पूरा हो जाए।
1: अच्छा शहीद भाई, कौन कौन से टूर्नामेंट आपने खेले हैं, कौन कौन से मैच आपके सबसे बढ़िया रहे हैं?
0: सर स्टार्टिंग नेशनल से बात करें तो मैं अंडर 19 नेशनल खेला था स्कूल से,
1: कौन से साल की बात है ये?
0: 2003 या 2004 की बात होगी सर। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू खेलता रहा, फिर मेरा फर्स्ट संतोष ट्रॉफी आया 2009 में, तो मैंने 2009 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया और कोयम्बटूर चेन्नई खेलने गया। फिर मैं 9, 10, 11, 12 कंटिन्यू 4 साल राजस्थान के लिए खेला, जिसमें मैं 2011 में राजस्थान का उप कप्तान भी रह के राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व किया मैंने। और इसी के साथ साथ उन्हीं कंटिन्यू 4 सालों में 3 साल में मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी की तरफ से वेस्ट जोन यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेंट किया, उसमें भी एज ए कैप्टन में 1 साल रहा।
1: मेडल की बात करते हैं तो क्या क्या आपके हिस्से में आए?
0: सर संतोष ट्रॉफी और यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेडल की बात करते हैं तो दोनों ही जगह में किसी भी प्रकार का मेडल नहीं आ पाया क्योंकि हमारी पोजीशन नहीं लग पाई। अच्छा थर्ड या फोर्थ पोजीशन लगती है तो भी हमें मेडल मिलता है, पर उस चारों ही साल में बिल्कुल मेडल का चांस नहीं बन पाया।
1: कमियां किस स्तर पर रह गई?
0: कमियां सर इस तरह पर रही कि उस समय सिखाने के लिए कोच अवेलेबल नहीं रहता था, मोबाइल भी इतना नहीं था, हम सिर्फ हमारे सीनियर प्लेयर को देख के ही फुटबॉल खेलना सीखे। किसी ने बताया नहीं कि बॉल पे कैसे किक करना है, किस तरह बॉल पकड़नी है, किस तरह मारना, किसी ने नहीं बताया।
1: एक फुटबॉल खेल के लिए आवश्यकताएं क्या क्या रहती है?
0: सबसे पहले तो सर बच्चे का इंटरेस्ट, अगर बच्चा इंटरेस्टेड है, अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है और अपन उसे सारी सुविधा देंगे तो भी वो खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, गॉड गिफ्ट है, रनिंग वगैरह है, तो उसके बाद अपने उसे प्रॉपर ग्राउंड, फुटबॉल का शूज, टी शर्ट, ड्रेस और फुटबॉल का इक्विपमेंट, जिससे अपन उसमें स्किल्स, रनिंग वगैरह ये बना सकते हैं, और एक प्रॉपर कोच जिसने लाइसेंस ले रखा हो या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से लाइसेंस प्राप्त हो, वही उसे कोचिंग दे सकता है, तो ही वो फुटबॉल में निखार पाएगा।
1: शहीद भाई, खिलाड़ी का चयन किस तरह से होता है? आपने नेशनल खेला है और संतोष ट्रॉफी भी खेली है राज्य के लिए।
0: खिलाड़ी का चयन 3 तरीके से होता है सर। एक तो सर होता है उसके स्किल्स, कि उसके पास जो दूसरे प्लेयर है उनसे थोड़ा सा एडवांस क्या है, रनिंग है, कटिंग है, शूटिंग वगैरह है ये। एक होता है सर स्टेपना, जो फुटबॉल में सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब फुटबॉल में आपको 90 मिनट तक भागना ही है, तो देखा जाता है कि आप दूसरों से कितनी स्पीड से तेज भाग रहे हो, कितनों को ओवरटेक कर रहे हो। और तीसरा होता है सर इंडोरेंस, मतलब आपने फुटबॉल की प्रैक्टिस सुबह से शाम तक 2 घंटे की 4 घंटे की, क्योंकि बॉल आपके पैरों में रहेगी तो ही कोच की आपके नजर पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं, अगर ये चीज आप में है तो ही आपका सिलेक्शन ऊपर लेवल पे होगा, बाकी नहीं होगा।
1: संतोष ट्रॉफी का अनुभव कैसा रहा? टीम के साथ में किस तरह से कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता रहती है?
0: सर संतोष ट्रॉफी में अनुभव ये रहा है कि हमारे पूरे भारत के जितने भी प्लेयर हैं, एक तो सभी से मुलाकात हो जाती है वहाँ, क्योंकि सारे प्लेयर आते हैं वहाँ। एक सर राजस्थान टीम की बात करें तो राजस्थान का उस जमाने में भी बहुत अच्छा नाम रहा है, हम साउथ में खेले, वेस्ट में खेले, तो वहां पे भी राजस्थान का बहुत अच्छा नाम रहा। तो एक हम जब जाते हैं वहां तो बोलते हैं कि भाई राजस्थान से, तो एक वो एनर्जेटिक पल आ जाता है। फिर अगर टीम उसी तरह का रिजल्ट कर देती है, कॉम्बिनेशन देती है, अगर टीम में परिवार जैसा माहौल रहता है तो थोड़ा ज्यादा मजा आ जाता है। और रही बात कोच की और जो हमारी टीम का जो आपस में कॉम्बिनेशन है, वो एक परिवार की तरह ही रहा सर, चारों साल कोई मतभेद वगैरह नहीं हुए।
1: ट्रॉफी खेली जाती है, टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन कुछ मैच हमें याद रह जाते हैं।
0: बिल्कुल सर, मेरे लिए ऐसे ही मैच है 2010 का वेस्ट बंगाल का, मुझे आज भी याद है कि हमारा फर्स्ट मैच हमारे मणिपुर से था, हम हार गए थे 9-0 से। तो जब हम वापस हमारे चेंजिंग रूम में आए थे तो हमारा नेक्स्ट मैच था जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से, तो उस समय उनके कोच थे यूसुफ सिद्दीकी, तो उनका बिहेवियर थोड़ा अच्छा नहीं था हमारे प्रति कि हम 9-0 से हार गए, तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे ही मजाक में बोला था क्या टीम है ये वो वगैरह। तो J&K पुलिस में एक इंडिया प्लेयर था रोबिन सिंह करके, और मैं डिफेंड स्टॉपर खेलता था, मेरे कोच ने बोला मुझे कि अगर ये रोबिन सिंह को अगर तू कंटिन्यू मार करेगा तो अपन ने स्कोर नहीं खा पाएंगे और अपन गोल मार देंगे। तो मेरे कोच ने सिर्फ मुझे रोबिन सिंह के पीछे लगा दिया। तो मैच के फर्स्ट हाफ में 39

0: मिनट में एक ऐसे 50-50 बॉल आता है और रोबिन सिंह बॉल लेके आगे बढ़ता है और मैं उस पर चार्ज करता हूँ, तो चार्ज पे उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है, तो रोबिन सिंह अपने कोच को हैंड ऊपर करके बोलता है मुझे चेंज ले लो, मैं नहीं खेल पाऊंगा। लेकिन उसमें मुझे रेफरी ने रेड कार्ड दे दिया होता है। ग्राउंड रेफरी जब रेड कार्ड दे देता है तो आप ग्राउंड में बिल्कुल अलाउ नहीं होते हो, आप चेंजिंग रूम में चले जाते हो। तो मैं चेंजिंग रूम में चला गया था, तो चेंजिंग रूम में और ग्राउंड के बीच में एक पारदर्शिता खिड़की थी, तो वहां से बैठ के मैं पूरा मैच देख रहा था और हम वो मुकाबला 1-0 से जीते और मेरे कोच ने मुझे बधाई दी कि तेरी वजह से हम ये मुकाबला जीते हैं, अगर रोबिन होता तो शायद ये मुकाबला में हार जाते हो। उसी टीम के कोच ने पूरे राजस्थान टीम को आके चेंजिंग रूम में फुटबॉल के शूज गिफ्ट दिए और पूरी टीम का हौसला अफजाई किया।
1: शाहिद भाई, जिस समय मैच खेलना होता है, तैयारी की जाती है टीम के द्वारा, रणनीति किस तरह से मैच को आगे बढ़ाना है और मैच के दौरान रणनीति बदलनी पड़ती है, किस तरह से ये खिलाड़ी टीम कर पाती है?
0: सर जैसे हमारा मैच होता है 2 बजे, तो हम 10:30-11 बजे पूरी टीम एक रूम में बैठ जाते हैं। जो कोच हमारा होता है वो मैं डेस्क बोर्ड पे अपनी पोजीशन समझाता है 2 घंटे पहले, क्या हम आज अटैकिंग खेलेंगे, आज हम रुक के खेलेंगे या ओवरलैप खेलेंगे या 1-2-1 खेलेंगे। जैसे सपोज हमारा मैच पंजाब से है तो हम पंजाब जैसे ही खेल खेलेंगे, क्योंकि पंजाब भी ओवरलैप खेलती हवा में, राजस्थान भी ओवरलैप खेलती। लेकिन अगर हमारा मैच मणिपुर से है तो मणिपुर ओवरलैप नहीं खेलती है, वो छोटा पास गेम खेलती है। तो हमारा कोच यही कहेगा जब अगर वो आपका छोटा पास गेम खेलती है तो आपको उनका पासिंग डिस्टेंस वो तोड़ना है। तो 2 घंटे पहले तो हमारा वो डेस्क बोर्ड पर समझाते हैं। फिर जब हम आधे घंटे पहले चेंजिंग रूम में आते हैं तो चेंजिंग रूम वहां पर हमारा जो कोच होता है एक अच्छे से जोश भरी स्पीच देके सभी खिलाड़ियों को मोटिवेट करता है कि आज हमें अपना पूरा दमखम लगाना है, और अगर ग्राउंड में किसी भी तरह का कुछ मतभेद होता है खिलाड़ियों के आपस में तो हमें उसे भूल के और टीम के लिए खेलना है। फिर भी अगर उसके बाद कुछ नहीं होता तो हाफ टाइम होता है, उनमें उसे 10 मिनट मिलते हैं। तो अगर जो हमारे फर्स्ट हाफ की स्ट्रेटजी है जो खराब हो जाती है तो वो 10 मिनट में हम वापस सेकंड हाफ के लिए नई स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसी पे हम फॉलो करते हैं।
1: आप किस पोजीशन पर खेला करते थे?
0: मैं सर मेन स्टॉपर खेला करता था।
1: हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसकी भूमिका क्या रहती है?
0: इसकी भूमिका ये रहती है सर, जो गोलकीपर से जस्ट आगे का जो प्लेयर खेलता है अपनी टीम के लिए वो स्टॉपर होता है, जिसे डिफेंडर भी कहते हैं। उसका ये काम है कि गोलकीपर के पास और गोल पोस्ट में बॉल नहीं जानी चाहिए, मतलब अगर अपने आखिरी सांस तक कोशिश यह करे कि वो गोल होने से रोके, यही उसकी मेन भूमिका रहती है। और यही गोलकीपर भी उस पर डिपेंड रहता है और आगे वाली टीम भी उसी पर डिपेंड रहती है।
1: टीम को गोल करने से रोकना?
0: हाँ, सामने वाली टीम के खिलाड़ियों को गोल करने से रोकना, यही मेन स्टॉपर का काम है।
1: अच्छा, कई बार भूमिकाएं बदली जाती है, आपके साथ भी ऐसा हुआ?
0: बिल्कुल हुआ सर, ऐसा होता है। हमारे 2012 में लास्ट मैच था असम में गुवाहाटी में मिजोरम के खिलाफ, तो वहां क्या है कि हमारे जो प्लेयर थे आगे फॉरवर्ड में वो क्या कि बॉल लेके शूटिंग नहीं कर पा रहे थे गोल पोस्ट पे, तो हम ऑलरेडी हार ही रहे थे 4-5-0 से। तो मेरे कोच ने कहा कि टीम पूरी प्रेशर में आ रही है तो शाहिद को फॉरवर्ड में डाल दो और किसी भी एक प्लेयर को स्टॉपर में डाल दो, गोल तो हो ही गए थे ऑलरेडी। तो ऐसा करके मैंने 3 शॉट अटेम्प्ट किए जिसमें से 2 गोल पोस्ट के लगे, गोलकीपर ने सेव किया तो हमें कॉर्नर मिला, कॉर्नर मिला फिर भी हम गोल नहीं कर पाए। तो ये एक फायदा होता है कि जब अगर अपने फॉरवर्ड नहीं चल रहे हैं तो हमें स्टॉपर को मौका दिया जाता है आगे शूटिंग के लिए, ताकि वो लंबी डिस्टेंस है 20 मीटर 30 मीटर डी के बाहर से गोल पोस्ट में शूट ले सके।
1: मैच के दौरान तो एक दूसरे को बहुत ही शत्रु की तरह से देखा जाता है कि
0: जी
1: ये मेरी टीम पर गोल कर सकता है, मुझे इससे अपनी टीम का बचाव करना है, गोल पोस्ट को रोकना है। जब खिलाड़ी खेल के मैदान से बाहर होते हैं, प्रतिद्वंदी टीम की बात करते हैं, तो व्यवहार किस तरह का होता है?
0: जैसे मैच में कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, किसी के चोट नहीं लगती है, दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में झगड़ा वगैरह नहीं होता है, तो जब मैच खत्म होता है तो मैच के अंदर क्या हुआ वो सब चीज भूल के दोनों टीमों के कोच और दोनों टीमों के खिलाड़ी एज ए परिवार की तरह मिलते हैं। अगर मैच के अंदर कुछ ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया या कुछ ज्यादा माहौल गर्म हो गया तो बहुत सारी बार ऐसा होता है खिलाड़ी ना तो हैंडशेक करता है ना गले मिलता है, वो नाराज होकर चला जाता है। तो ये कम ही होता है, पर ज्यादातर मैच खत्म होने के बाद सब खिलाड़ी आपस में मिल लेते हैं और वो पल ऐसा होता है कि मैच को भूल के अच्छा रिश्ता डेवलप करते हैं।
1: अपनी कमजोरियों को खिलाड़ी और टीम किस तरह से पता लगाती है?
0: जैसे आज मुझे स्टॉपर पे खिलाया और मेरा काम है बॉल रोकना हेड से या पैर से या रनिंग करके, लेकिन आज मुझसे 2 हेड मिस हो गए, 1 हेड पे गोल हो गया, तो कोच मुझे पकड़ लेगा मेरे से हेड क्यों मिस हुआ,

0: कोच उसी पे काम करता है और फिर मैं भी उसी पे ही काम करूंगा, क्या प्रॉब्लम रही जो मेरे हेड मिस हो गए।
1: कई बार एक खिलाड़ी की गलती से पूरी टीम हार जाती है, गोल हो जाते हैं, बाद में किस तरह की बातें आपस में की जाती है?
0: सर ऐसा भी एक किस्सा हुआ था 2009 में, फर्स्ट संतोष ट्रॉफी में हमारा मैच त्रिपुरा के खिलाफ था और हम दोनों टीमें बराबरी पे चल रहे थे। हमें एक पेनाल्टी मिली थी, एक्चुअल में क्या वो पेनाल्टी मिली तो हमारा एक दोस्त था जो खिलाड़ी था, बिना कोच के पूछे उसने पेनाल्टी ली और मारी और आउट चली गई, तो हम वो मैच ड्रा पे रह गए जबकि हम वो जीत जाते हैं क्योंकि हमें लास्ट टाइम मिला था। पर उस समय क्या होता है कि कोच बहुत हाइपर हो जाता है और वो गुस्सा पी लेता है क्योंकि पब्लिक वगैरह सब देख रही होती है, कुछ नहीं बोल पाता, पर जब हमारा चेंजिंग रूम आता है तब वो कहीं ना कहीं अपना जो टेम्परामेंट है वो नॉर्मली खो देता है या नहीं भी खोता है, मतलब वो मतलब उस प्लेयर को कड़ी फटकार लगाता है कि आपको रुकना चाहिए था, पूरी टीम से पूछना चाहिए था, तो ये हो जाता है क्योंकि फुटबॉल ऐसा गेम है ना सर कि बॉडी पूरी गर्म रहती है तो दिमाग जल्दी गर्म हो जाता है।
1: एक आदर्श खिलाड़ी कौन रहे हैं आपके, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मुझे इसकी तरह बनना है?
0: हमारे जो चित्तौड़ के पुराने कोच थे विजय सिंह जी काकसा, जिन्होंने काफी अच्छा नाम कमाया था, और एक नईमुद्दीन शेख थे जो रतलाम DRM रेलवे स्टेशन मास्टर थे, तो मैं इन दोनों जैसा बनना चाहता था क्योंकि इनकी हाइट फिजिक्स भी अच्छी थी और उनका गेम भी अच्छा था और इन्होंने कोचिंग भी की मेरे को।
1: इस समय खेल के साथ में जुड़ाव किस तरह से आपका हो रहा है?
0: प्रोफेशनल फुटबॉल तो मैं 32 साल की ऐसे मैंने अलविदा कह दिया। मैं सुबह जाता हूँ ग्राउंड पर प्रैक्टिस करता हूँ और खुद को फिट रखने के लिए भी खेलता हूँ और बच्चों को समय समय पर कोशिश ये करता हूँ कि जो भी मेरे पास है उनको वो दूर तैयार करूँ और एक ऐसा फुटबॉल खिलाड़ी बनाऊँ ताकि पहले कोच नहीं हुआ करते थे, अभी हम अच्छे लेवल पे खेले तो उसे बता सकते कि क्या क्या कमी है आप में और कैसे सुधार हो गया।
1: खिलाड़ी को खान पान का भी ध्यान रखना होता है?
0: बिल्कुल सर, फुटबॉलर ऑयली चीजें नहीं खा सकता ज्यादा, मतलब कोच अलाउ ही नहीं करेगा, ज्यादा बाजार का नहीं खाने देगा, फास्ट फूड नहीं खाने देता है, एक टाइम आपको दाल चावल लेना ही पड़ेगा, हल्का खाना, इन सब चीजों का कोच बहुत ध्यान रखता है, जूस वगैरह का, फ्रूट का इनका।
1: आज के दौर के युवाओं को कोई सलाह देनी हो क्या देना चाहेंगे?
0: आज के दौर के युवाओं के लिए सर एक सलाह है कि आप कोई भी गेम खेलें पर एक गेम जरूर खेलें, क्योंकि आज सर देखते हैं अपन बीमारियां वगैरह इतनी बढ़ गई है कि अपन 24 घंटे में से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, मेडिसिन ज्यादा खा रहे हैं, वो पैसा वहां लग रहा है, जिम में जा रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, लेकिन अगर युवा अपने लिए और अपने शरीर के लिए सिर्फ 2 घंटा भी निकालें, कोई भी गेम खेलें, तो उससे लॉन्ग टाइम वो फिट रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा और उसका कुछ कन्वेंस है जो बचेगा।
1: शाहिद भाई, आज के युवा युवतियों को खेल के मैदान में क्यों आना चाहिए?
0: सर कंट्री को जरूरत है सबसे पहले, तो अगर युवा ग्राउंड में नहीं आएगा तो हम ओलंपिक में दूसरी जितनी भी ट्रॉफी उनमें मेडल नहीं ला पाएंगे, अगर युवा ही ग्राउंड में नहीं आएगा सर तो देश का नाम कब आगे बढ़ेगा, स्टेट का कब आगे बढ़ेगा, जब खेलने वाला ही कोई नहीं होगा तो स्टेडियम मैदान खाली रहेंगे।
1: खेल कैसे हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है?
0: खेल सर स्वास्थ्य को और दिमाग को दोनों को अच्छा रखता है, रीजन ये अगर आप सुबह भी खेलते हैं शाम को खेलते हैं, सबसे पहले आपका जो भी गेम है, मैं फुटबॉल की नहीं कह रहा हूँ, कोई भी गेम खेला आप, एथलेटिक्स में हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, कुछ भी खेले आप, तो आप खेलोगे, वार्म अप होगे, सबसे पहला तो आपका पसीना निकलेगा, आपके जो भी अंदर की वीकनेस है वो खत्म होगी, फिर खिलाड़ियों से आप मिलोगे, बातचीत करोगे, तो आपका मानसिक तनाव भी कम होगा, तो फिजिकल और मेंटली दोनों आपका स्ट्रांग हो रहा है।
1: आज के दौर के युवाओं को, परिवार के लोगों को कोई सलाह देनी हो खिलाड़ी होने के नाते क्या देना चाहेंगे?
0: तो सबसे पहले तो मैं फैमिली मेंबर्स को सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ग्राउंड की तरफ भेजें, एजुकेशन भी मस्ट है मैं मानता हूँ, 1 घंटा ग्राउंड के लिए भेजें, बाकी आप एजुकेशन के लिए और घर के लिए रखें। अगर आप बच्चे को ग्राउंड की तरफ भेजेंगे और आपकी तरफ से बच्चा फ्रीडम में रहेगा कि नहीं मम्मी पापा ने भेजा है, तो वो कोई ना कोई गेम में इंटरेस्ट ले ही लेगा और वो किसी ना किसी गेम में इंटरेस्ट लेगा तो फिर वो खिलाड़ी बनेगा, तो फिर अपने स्टेट का और कंट्री का नाम रोशन करेगा, उसे ये मन में डर नहीं रहेगा कि मेरे पापा मम्मी कुछ बोलेंगे, वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और जब सर बच्चे को थोड़ी सी भी आजादी मिलती है ना तो वो चाहे जिस गेम में हो वो अपनी जी जान झोंक देता है उसमें।
1: शाहिद भाई, आपकी इन्हीं बातों को हम अंडरलाइन करते हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी फुटबॉल खिलाड़ी शाहिद हुसैन मंसूरी से की गई बातचीत, यह आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का अंशदान था। अब हम आपको सुनवा रहे हैं पर्वतारोही निवेदिता कौर से की गई बातचीत।
3: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम खेल से जुड़ी हुई विभिन्न शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते हैं, इसी क्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं निवेदिता कौर जी और आप पर्वतारोही

0: और आज हम इनसे जानेंगे पर्वतारोहण की चुनौतियों के विषय के बारे में। निवेदिता जी नमस्कार।
1: नमस्ते सर।
0: निवेदिता जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि पर्वतारोहण अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग स्पोर्ट है, तो किस प्रकार से आपका इस फील्ड में आना हुआ?
1: जी सर, 2019 में मुझे पर्वतारोहण के कुछ कोर्सेज के बारे में पता लगा
0: जी।
1: और सबसे पहले मैंने बेसिक कोर्स किया
0: जी।
1: जो कि मैंने मनाली से किया था
0: जी।
1: और उसके बाद मुझे लगा कि ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत हद तक सूट करती है
0: जी।
1: तो इसलिए फिर मैंने उसमें आगे एडवांस कोर्स किए और फिर उसके बाद में सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स किया। तो धीरे धीरे इस तरीके से मैंने कोर्सेज किए और आगे एक्सपेडिशंस भी इस फील्ड में किए
0: जी। हम जानना चाहेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही एडवेंचरस स्पोर्ट्स है और इसमें मतलब जोखिम भी बहुत ज्यादा है।
1: हाँ जी।
0: आपसे यही जानना चाहेंगे कि इतना जोखिम का स्पोर्ट होने के बावजूद आप इस खेल की तरफ आगे बढ़ी हैं या इस फील्ड में आगे बढ़ी हैं, तो क्या आपके मन में विचार रहे उस समय?
1: सर, सबसे पहला विचार यही था कि ये मुझे चैलेंज कर रहा था, जो मेरा कंफर्ट जोन था मुझे उससे बाहर निकलना पड़ा और बाहर निकलने के लिए मैंने मेहनत करी, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ही। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था जिसके कारण मैं इस खेल की तरफ आकर्षित हुई
0: जी। अच्छा, आपने बताया कि इसमें बहुत तरीके के कोर्सेज भी होते हैं।
1: हाँ जी।
0: तो ये है कि एक पर्वतारोहण में आपको कहीं चट्टानों पर भी चढ़ना होता है, कहीं आपको खुले इलाके में भी चलना होता है, जंगली जानवरों का भी खतरा होता है और कई बार कुछ खाइयां होती है, तो इस तरह की जब समस्याएं आती हैं तो इनमें क्या सभी फील्ड के अलग अलग तरह के कोर्सेज होते हैं या किस प्रकार के कोर्सेज इसमें किए जाते हैं?
1: सर, जैसे इसमें मेन कोर्सेज दो तरीके के होते हैं। एक कुछ कोर्सेज हैं जो अपने भारत में एक इंस्टीट्यूट है माउंट आबू में
0: जी,
1: वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग से रिलेटेड केवल कोर्सेज होते हैं, जहाँ पे आप केवल जो पत्थर के पहाड़ हैं आपको उन पे कैसे चढ़ना है, वहाँ पे जा रहे हैं उस एरिया में तो कैसे कैंपिंग करनी है, उसके बारे में सिखाया जाता है। और बाकी इंस्टीट्यूट्स में बेसिक माउंटेनियरिंग के कोर्सेज होते हैं। माउंटेनियरिंग पर्वतारोहण में, जो कि रॉक क्लाइंबिंग है, वो माउंटेनियरिंग का एक भाग है
0: जी।
1: जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे, कहीं बर्फ वाले पहाड़ों में जाएंगे, तो वहां पे आपको पत्थर के पहाड़ भी चढ़ने पड़ेंगे और बर्फीले इलाकों में भी जाना होगा
0: जी जी जी।
1: तो इस तरीके से ये दो तरीके के मेन कोर्सेज होते हैं अपने यहाँ पे।
0: तो आपने क्या दोनों ही तरह के कोर्सेज किए हैं?
1: हाँ जी सर, मैंने दोनों ही तरीके के कोर्सेज किए हैं।
0: तो यहाँ अब एक्सपीडिशंस की बात करते हैं, तो आपने रॉक क्लाइंबिंग में या फिर माउंटेनियरिंग में ऐसी कौन सी दुर्गम स्थान है जो आपने एक्सप्लोर किए हैं?
1: सर, जैसे हम एक्सपीडिशंस में जाते हैं तो जो सबसे अभी तक का सबसे जो ऊंची चोटी मेरी रही है वो 6250 मीटर की मैंने क्लाइंब करी है लेह लद्दाख में
0: जी।
1: तो वो भी एक काफी दुर्गम इलाका है ले, अगर हम यहाँ के कंपैरिजन में देखें, अगर जयपुर और ले की बात करें तो वो पहले ही बहुत ज्यादा दुर्गम हो जाता है। और फिर जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है तो उस इलाके में दुर्गम होने लग जाता है वो
0: जी जी।
1: उनकी एक्सेस मेन इलाकों से कटती जाती है
0: जी। दूसरा ये भी देखा गया है कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की भी कमी आने लगती है।
1: हाँ जी।
0: बॉडी में भी
1: जी।
0: तो क्या इसके लिए कोई विशेष प्रकार से अपने आप को तैयार करना पड़ता है या अपनी बॉडी को उस माहौल में ढालने के लिए किस तरीके के एक्सरसाइजेस करते हैं आप लोग?
1: सर, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें रहता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो भी प्राणायाम है अगर वो हम करते हैं तो हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है और उससे हमारे को ऐसे इलाकों में एडजस्ट होने में हेल्प मिलती है। और दूसरा एक मेन होता है कि जब भी हम हाइट गेन कर रहे हैं तो उस हाइट गेन को हम एकदम से ना करें। अगर मान लीजिए आप अभी 2000 मीटर की ऊंचाई पर हैं, तो एकदम से अगर आप 4000 मीटर की ऊंचाई पर चले जाएंगे, आपने 2000 मीटर गेन कर लिए, तो एकदम से आपकी बॉडी उस एल्टीट्यूड में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो हमें धीरे धीरे जो ऊंचाई होती है तो उसको गेन करना होता है। जैसे जनरली माना जाता है कि 1000 फीट हम एक दिन में गेन करेंगे, तो उस हिसाब से अगर आप धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ेंगे तो आपकी बॉडी एडजस्ट होती जाएगी और एकदम से ऐसे कोई सिम्टम नहीं आएंगे और आप बीमार नहीं होंगे
0: जी। अच्छा, यहाँ पर आपने बताया कि इसमें रेस्क्यू का भी आपने ट्रेनिंग लिया है, तो रेस्क्यू करना और एक क्लाइंबिंग करना, दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी को रेस्क्यू कर रहे होते हैं तो उस समय आपको आपके ऊपर जिम्मेदारी एक और व्यक्ति की भी होती है।
1: हाँ जी।
0: तो यहाँ किन चीजों में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनमें?
1: सर, रेस्क्यू में यह बात आपने बिल्कुल सही कही कि एक और व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, तो सबसे मेन होता है कि सही टाइम पे डिसीजन लेना
0: जी।
1: अगर हम जब ऐसे इलाकों में जाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम कम्युनिकेट कर पाए आपस में। अगर जैसे मान लीजिए मैं रेस्क्यू में जा रही हूँ तो मेरी जो बैकअप टीम है, हो सकता है वो बेस कैंप में होगी, तो आपस में एक जो कम्युनिकेशन रहेगा वो क्लियर होना चाहिए। हमारे पास सही वेदर रिपोर्ट होनी चाहिए। जो रेस्क्यू के लिए जो दूसरी टीम आ रही है, या कई बार हम हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करते हैं, तो उनके साथ कम्युनिकेशन होना, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं।

0: जो रेस्क्यू के टाइम पे रहते हैं।
1: नॉर्मल क्लाइंबिंग के दौरान आपको सिर्फ क्लाइंब करना होता है
0: सर, तब भी रिस्क तो उतना ही रहता है और चैलेंज उतने ही रहते हैं, क्योंकि जब आप क्लाइंब कर रहे हैं तो कई बार आप एक टीम को लीड कर रहे होते हैं, एक्सपेडिशन आप लीड कर रहे हैं, तो बाकी सभी लोग आप पर निर्भर हैं, आपका कोई भी एक डिसीजन उनकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है।
1: जी, तो यहाँ स्थिर दिमाग से भी काम करने की,
0: स्थिर दिमाग से आपको जल्दी डिसीजन लेना है और आगे उसको भविष्य को देखते हुए कि आगे इसका क्या असर होगा उसको
1: तो मतलब ये है कि क्लाइंबिंग में सिर्फ चढ़ना ही नहीं होता, दिमाग को भी चलाना पड़ता है।
0: बिल्कुल सर, जो अगर माउंटेनियरिंग है और इसके साथ में और भी जितने भी एंड्योरेंस स्पोर्ट्स हैं, वो एक टाइम के बाद में आपकी बॉडी तो थकने लग जाती है, तो जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है आप उसी के बल पे चलते हैं, और अगर वो नहीं होता तो कई बार बहुत दिक्कत आ जाती है।
1: जी जी जी, बहुत सही बात आपने कही। अच्छा, एक चीज और भी जब हम देखते हैं तो सिमिलर सी एक चीज होती है, ट्रैकिंग जिसको हम कहते हैं। ट्रैकिंग एक सिंपल पार्ट हो गया माउंटेनियरिंग का।
0: हाँ जी।
1: तो ट्रैकिंग में और माउंटेनियरिंग में, दोनों में अगर हम एक डिफरेंस की बात करें तो वो क्या कह सकते हैं?
0: सबसे मेन बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप ट्रैकिंग या हाइक के लिए जा रहे हो तो आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप माउंटेनियरिंग के पर्पज से जा रहे हैं तो वहां पर आपको ट्रेनिंग की जरूरत रहेगी।
1: जी,
0: अब ट्रैकिंग जैसे अगर अपन जयपुर की ही बात करें तो आसपास जितने भी अरावली में अपने एरियाज हैं, आप वहां पर अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। बस उस एरिया के बारे में आपको एक बार देखना है कि वहां किस तरीके के जंगली जानवर आते हैं, नहीं आते हैं, उनसे कैसे सुरक्षा करनी है, बस उतना ही। लेकिन अगर हम किसी माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन के लिए जा रहे हैं तो आपको वहां का एल्टीट्यूड देखना होगा, वहां पे कुछ टेक्निकल क्लाइंब है तो उसके हिसाब से आपको इक्विपमेंट चाहिए होंगे, उस हिसाब से क्लोथिंग चाहिए होगी, उस हिसाब से ही मेडिकल किट, वो सब चीजें होंगी।
1: जी जी,
0: तो माउंटेनियरिंग एक मोर टेक्निकल की तरफ चला जाता है और ट्रैकिंग या हाइकिंग एक मोर फन वाला साइड हो जाता है, जहां पर आप केवल दोस्तों के साथ में आनंद लेने के लिए जा रहे हैं।
1: जी, आपने अभी बताया कि इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, तो ये इन इक्विपमेंट्स में महत्वपूर्ण जो उपकरण है माउंटेनियरिंग के लिए वो क्या है और किस प्रकार से उनको उपयोग में लेने के समय ध्यान रखा जाना चाहिए?
0: सर, जैसे मेन अगर इक्विपमेंट की बात करें तो रोप होती है हमारे पास, क्लाइंबिंग रोप, उसको लाइफ लाइन ऑफ माउंटेनियर बोलते हैं। कि आप कभी भी जा रहे हैं तो हम रोप अप होके जाते हैं ग्लेशियर में, जबकि जब ग्लेशियर वॉक होता है, ताकि अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है वो क्रेवास में गिर जाए तो उसको बाकी लोग अरेस्ट कर पाए, उसका रेस्क्यू कर पाए। इस तरीके से हमारे पास आइस एक्स होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं भी रास्ता चेक करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए, आप किसी वॉल को क्लाइंब कर रहे हैं उसके लिए। फिर हमारे आइस क्लाइंबिंग बूट्स आ जाते हैं, तो वो हमारे को बहुत ठंड में और उससे प्रोटेक्ट करते हैं, स्नो से प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से कैराबिनर होते हैं हमारे पास, जुमार होता है, जुमार एक असेंडिंग डिवाइस है, उससे अगर जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो हेल्प करता है। क्रैम्पॉन्स होते हैं हमारे को, वो बर्फ में चलने में हमें आसानी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसी तरीके से सर बहुत सारे इक्विपमेंट हो जाते हैं,
1: वो डिपेंड करता है कि आप
0: हम किस तरीके की क्लाइंबिंग
1: जा रहे हैं। आप जा रहे हैं लाइक आप रॉक्स पर चढ़ रहे हैं तो उसमें आपको हुक्स की भी,
0: हाँ जी सर, रॉक पे चढ़ रहे हैं तो हमारे पास रॉक क्लाइंबिंग शूज होंगे, वो शूज अलग तरीके के होते हैं।
1: इक्विपमेंट का डिसीजन तब लिया जाता है जब आप किस तरह की क्लाइंबिंग पर जा रहे हैं।
0: जी सर, जैसे हम कोई भी अब एक्सपेडिशन प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम जगह देखते हैं कि हमें कौन से एरिया में जाना है, फिर उस एरिया में वेदर कंडीशन कब किस मौसम में कैसी रहती हैं, अभी इस साल क्या वेदर प्रेडिक्शन रहेगा वहां पे, फिर उस एरिया की वाइल्ड लाइफ को हम स्टडी करते हैं कि वहां पे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वहां पे स्नो और आइस का क्या टाइप है, रॉक का क्या टाइप है, इस तरीके के, और फिर हमारे पास टीम मेंबर्स कैसे जा रहे हैं, वो एक्सपर्ट हैं या सारे बिगनर्स हैं। इन सब चीजों का डिसाइड करने के बाद में फिर हम देखते हैं कि हमें अब क्या क्या जरूरत रहेगी, हमें कैसे इक्विपमेंट्स ले जाने चाहिए, हमारी क्लोथिंग की क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये सब चीज उसके बाद डिसाइड करते हैं।
1: जी निवेदिता जी, जानना आपसे चाहेंगे, अभी तक आपने 6000 फीट तक की ऊंचाई की आपने लेह लद्दाख में एक्सपीडिशंस पे आप गई हैं, आपने एक्सप्लोर किया है ऐसी जगह को। हर एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसका एक सपना होता है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एज ए माउंटेनियर आप कौन सी एक्सपीडिशंस पे जाना चाहेंगी अपने आने वाले समय में?
0: सर, ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीडिशंस हैं जिन पे मैं जाना चाहूंगी। जैसे आपने बात करी कि हर स्पोर्ट्स पर्सन का सपना होता है कुछ ना कुछ, तो वैसे ही हर माउंटेनियर एक ना एक बार ही सोचता है कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है या उसे क्लाइंब करना है। ऐसे ही अपने 8000 मीटर की लगभग 14 चोटियां हैं, तो इस और भारत में तो बहुत सारे हैं। अगर हम देखें तो एक हिमालय का बहुत बड़ा भाग हमारे पास है।

0: है और इसमें बहुत सारा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जहाँ पे लोगों ने कभी क्लाइंब भी नहीं किया है. तो ऐसी बहुत सारी चोटियां हैं जिन पे मैं जाना चाहूंगी.
1: तो उसके लिए क्या आपकी प्लानिंग्स हैं उन एक्सपेडिशंस पर जाने के लिए? आप किस तरह से अपने आप को तैयार कर रही हैं और प्लान कर रही हैं?
0: जी सर, जैसे अभी अपन माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8000 मीटर के करीब है. तो जैसे अभी मैंने 6000 मीटर तक की पीक क्लाइम कर लिया है, तो अभी मेरा प्लान है कि इस साल मैं कोई 7000 मीटर की पीक करूं ताकि मुझे समझ में आए कि मेरी बॉडी उस एल्टीट्यूड तक कैसे काम कर रही है. फिर ऐसे करके धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्लाइम करते हैं तो सक्सेस के चांस भी बढ़ जाते हैं और सीखने को भी ज्यादा मिलता है. अगर बजाय अगर मान लीजिए मैं डायरेक्ट कोर्स करके मैं डायरेक्ट 8000 मीटर की चोटी पर जा रही हूँ तो हो सकता है मुझे पता ही नहीं होगा मेरी बॉडी वहाँ एडजस्ट करेगी नहीं करेगी और वो अलग तरीके के चैलेंजेस होंगे.
1: जी निवेदिता जी, आपने बहुत सही बात कही. और ये बताइए कि आप एक माउंटेनियर हैं तो हर एक स्पोर्ट्स के अंदर स्पेसिफिक डाइट्स की जरूरत होती है.
0: हाँ जी.
1: तो एक माउंटेनियर के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान होता है या जहां वो एक्सपेडिशन पर जा रहे हैं उस हिसाब से डाइट प्लान किया जाता है?
0: सर, जब एक्सपेडिशन पे जा रहे होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अपन जैसे जैसे एल्टीट्यूड गेन करते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो भी बहुत स्लो हो जाता है. तो वहां पे आप जितना सिंपल फूड लेंगे जिससे जो हमारे को जल्दी डाइजेस्ट हो जाए वो ज्यादा बेहतर रहता है.
1: जी.
0: तो हम लोग ऐसे और मोस्टली ये होता है कि जब आप इतने एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो इतनी सुविधा नहीं होती है कि हम वहाँ पे रोटी सब्जी बना सकें. तो वहाँ पे मोस्टली प्रिफर किया जाता है दाल चावल खाना क्योंकि तो उसमें पूरा प्रोटीन भी आपको मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, सब कुछ आपको एक साथ मिल जाता है और वो आपको पूरा पोषण भी देता है. इसलिए
1: आपने बताया कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं ये एक्सपेडिशन लगभग 10 से 15 दिन या 20 दिन का भी हो सकता
0: हाँ जी,
1: है.
0: बिल्कुल.
1: तो इस दौरान जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पर पहुंचते जाते हैं तो आपकी बॉडी की प्रोटीन की और बाकी सारी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है.
0: हाँ जी.
1: तो क्या उन एल्टीट्यूड से वापस लौटने के बाद में उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए कुछ समय देना पड़ता है?
0: हाँ जी सर, बिल्कुल. अगर आप एक 10 से 15 दिन के एक्सपेडिशन पे जा रहे हैं तो जनरली ये होता है कि आपका 3 से 4 kg वेट लूज हो जाता है.
1: जी जी.
0: तो जब आप नीचे आते हैं तो जरूर आपको रेस्ट की भी जरूरत होती है और एक्स्ट्रा डाइट की भी जरूरत रहती है ताकि जो भी लॉस हुआ है उसको वापस गेन कर सको. तो एक रिकवरी का पीरियड रहता है.
1: जी निवेदिता जी, आपसे बहुत बातें हमने की, जाना आपसे माउंटेनियरिंग के बारे में. चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी श्रोता इस समय हमें सुन रहे हैं अगर वो माउंटेनियरिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: सर, मैं यही बोलना चाहूंगी कि जिसका भी इंटरेस्ट है कि उन्हें माउंटेनियरिंग में जाना है तो कम से कम वो एक बेसिक कोर्स जरूर करें. जो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स होता है उसमें आपको सिखाया जाता है कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी पहाड़ों पे जो चैलेंजिंग होंगी तो आपको उनको कैसे डील करना है. और आप वहां पर जाएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है इस फील्ड में आने के लिए. कई बार ये होता है कि हम बिना कोर्स किए ही एक्सपेडिशंस पे चले जाते हैं तो वो उनके लिए काफी खतरनाक हो जाता है. तो एक बार कोर्स जरूर करें, मैं बस यही सलाह देना चाहूंगी सबको.
1: निवेदिता जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और माउंटेनियरिंग के बारे में जो आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, निश्चय ही सुनने वाले लोगों को इससे फायदा होगा और जो इसमें जाना चाहते हैं उन्हें लाभ होगा. आपको बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए, मौका देने के लिए.
2: अभी आप सुन रहे थे पर्वतारोही निवेदिता कौर से जितेंद्र वर्मा की बातचीत. अब हमें आज्ञा दीजिए. नमस्कार.

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 10:30 बजे हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में गैर फिल्मी गीत और गजलें। सबसे पहले सुनिए ताहिरा सैयद की गाई ये गज़ल।

श्रोताओं इस गज़ल को गया स्वाति नाते करने, और अब जोश मलिहाबादी की लिखी इस गज़ल को गया है शांति वर्मा ने। सुनिए ये गज़ल।

श्रोताओं, आरिफ नक्शबंदी की लिखी इस गज़ल को गाया सीमा कौसिवा ने, और अब सुनिए सलाउद्दीन अहमद की गाई ये गज़ल।

0: फैज की लिखी और सीमा अनिल सहगल की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर रात्रि के 11 बज रहे हैं। अब दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी

0: कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।